सुप्रभात। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और एफएम के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आज दिन बुधवार है। शक संवत 1948 के बैसाख मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 मई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:55 हुए हैं। अपने समस्त श्रोताओं का अभिवादन करते हुए आरंभ करते हैं आज की प्रथम प्रसारण सभा।

0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये 3रा AI संचालित इंटरैक्टिव होलोबॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में होगा भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
0: वंदना कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए ईश्वर की भक्ति में डूब जाएं और सुने ये भजन।

गणेश जी की महिमा निराली है। श्रोताओं, भजन केवल संगीत नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक पवित्र माध्यम है। जब मन भजन में डूबता है तो चिंता, तनाव और नकारात्मकता स्वतः दूर होने लगती है।

भजन हमें भक्ति, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराते हैं। जब मनुष्य जीवन की भागदौड़, चिंता और तनाव से थक जाता है, तब भजन उसके मन को शांति और ऊर्जा प्रदान करते हैं। भजन हमें प्रेम, करुणा और श्रद्धा का संदेश देते हैं।

0: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
1: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: भारतीय संतों और महापुरुषों ने भक्ति का महत्व समय समय पर बताया है। तुलसीदास ने श्री राम के प्रति अपनी भक्ति से रामचरित मानस की रचना की, वहीं मीराबाई ने अपनी भक्ति कृष्ण

0: आशा है कि इन भक्ति गीतों ने आपके मन को शांति, सुकून और नई ऊर्जा से भर दिया होगा और आपको प्रभु के और करीब ले गए होंगे। इसी कामना के साथ कि आपके जीवन में हमेशा सुख, शांति और प्रभु की कृपा बनी रहे, अब दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन बिंदु।
1: समर्पण का स्वरूप क्या होना चाहिए, प्रायः हम इसे समझ नहीं पाते। और मुझे लगता है हनुमान जी की कथा, राम जी की कथाएं हम श्रवण करते रहते हैं, तो हनुमान जी के जीवन चरित्र में एक दर्शन मिलता है कि एक बार हनुमान जी महाराज अयोध्या में राघवेंद्र सरकार के सभा में विराजमान थे और राघवेंद्र सरकार हनुमान जी की तरफ देख रहे थे। और जब हनुमान जी राम जी की तरफ देखते तो हनुमान जी को देखता हुआ देख करके राम जी के नेत्र दूसरी तरफ मुड़ जाते। यह घटना कई दिनों से माता जानकी जी देख रही थीं। एक दिन अंतःपुर में उन्होंने पूछा प्रभु से कि क्या कारण है कि आप हनुमान जी को देखते हो और हनुमान जी जब आपकी तरफ देखते हैं तो आप अपनी नज़र क्यों फेर लेते हो। तो राघवेंद्र सरकार ने कहा उसका इतना ऋण है कि आज तक जीवन में उसने इतने बड़े बड़े काम किए और मेरे लिए किए, फिर भी उसने जीवन में कोई अपेक्षा नहीं रखी। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने उसे कुछ नहीं दिया जिसने मेरे लिए सब कुछ किया। तो जानकी जी ने कहा तो आप उनसे कहिए कि क्या चाहिए आपको। तो राघवेंद्र सरकार ने कहा मैं कई बार पूछा और हनुमान ने कहा कि मेरे समर्पण को द्रव्य से तौलने की, चाहे पद से तौलने की आवश्यकता नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे अंतर मन में यह भाव बार बार उदित होता है कि मुझे हनुमान को कुछ देना चाहिए। तो जानकी जी ने कहा जब वह कुछ नहीं लेते, चाहे आप कुछ नहीं दे पा रहे हो, तो एक सरल सहज उपाय है कि एक पत्र में आप कह दो, लिख दो कि हनुमान मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। अगले दिन सभा लगी, फिर प्रभु आसन पर विराजमान हुए और एक पत्र जानकी जी का कहा मान करके, और एक पत्र में उन्होंने लिखा कि हनुमान तुम्हारे ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता। हनुमान जी आए, हनुमान जी के हाथ में उन्होंने धीरे से वह पत्र दे दिया। हनुमान जी ने पढ़ा कि मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता, तो हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए और हनुमान जी ने कहा प्रभु देखिए आपकी कृपा मेरे समर्पण के दिव्यता को और श्रेष्ठ कर देता है कि प्रभु आप कहते हो कि हनुमान तुम्हारे कारण ही सुग्रीव को किष्किंधा का साम्राज्य मिला और विभीषण को लंका का साम्राज्य मिला, और दूसरे की बात छोड़ दो मुझे अयोध्या का राज्य भी तुम्हारे कारण मिला, लेकिन प्रभु अयोध्या का राज्य, किष्किंधा का राज्य, चाहे लंका का, एक एक राज्य, एक एक पद प्राप्त हुआ, लेकिन नाथ पूर्ण समर्पण का भाव और आपके प्रति समर्पण का भाव मेरा था कि आप मुझे प्राप्त हो गए। कहने का आशय इस हनुमत चरित्र का मात्र इतना है कि जब आपका समर्पण शुद्ध होगा, जीवन में किसी के प्रति, किसी कार्य के प्रति अगर समर्पित हैं आप, समर्पण है, तो निश्चित है उस समर्पण का फल आपको प्राप्त होगा। अगर समर्पण में अशुद्धि है तो आप कोई कार्य कर रहे हो, पूर्ण समर्पित नहीं हो, तो आपको वह फल प्राप्त नहीं हो सकता जिस फल की आप कामना कर रहे हो। बिना मांगे हनुमान जी को जो प्राप्त हुआ, केवल एक समर्पित भक्त के कारण हनुमान जी महाराज चतुर्दिक पूज्य हुए, और मुझे लगता है कि संपूर्ण विश्व में हनुमान जी महाराज की पूजा इसलिए होती है कि जिन्होंने केवल रामानास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोस्मि हम रामे चित्तलदम सदा भवतु मे भो राम मामुद्र, जिन्होंने राम के अलावा कुछ समझा ही नहीं, इतना समर्पण, इतना अद्भुत समर्पण। अगर ऐसा ही हमारे जीवन में भी समर्पण का भाव बने तो मुझे लगता है कि हमारा भी जीवन, उस जीवन में वो प्राप्त हो सकता है कि जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। तो सबसे पहले हम विचार करें कि जिस कार्य के प्रति, चाहे जिस संबंधों के प्रति, जिससे हम कुछ अपेक्षा रखे हुए हैं, क्या हमारा समर्पण दिव्य है, क्या हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं कि नहीं है। आज पूर्ण समर्पण का ही देन है कि राघवेंद्र सरकार हनुमान जी महाराज से पूछते हैं कि तुम्हें बताओ क्या चाहिए। यह समर्पण का स्वरूप अद्भुत हनुमान जी के चरित्र से आपको प्राप्त होता है। तो जीवन में समर्पण का स्वरूप दिव्य रखिए, निश्चित है जो आप चाहते हो आपको प्राप्त होगा।
0: ये था आज का चिंतन बिंदु। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 9:50 पर, हरिहरन होंगे कलाकार। दोपहर 12:55 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में रूना लैला को, और इसी कार्यक्रम में रात्रि 8:15 पर रूना लैला को आप फिर से सुन सकते हैं।

दोपहर स्वास्थ्य कार्यक्रम में आप सुनेंगे सेहत की बातें। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर गणेश यादव, वरिष्ठ परामर्शदाता

रात्रि 8:15 पर आप सुन सकेंगे हिंदी कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे भेंट वार्ता, विषय होगा भारतीय शिक्षा एवं आयाम। वार्ताकार होंगे डॉक्टर ओपी सिंह।

शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रात्रि 10:30 पर होगा, जिसमें आप सुन सकेंगे उस्ताद आमिर खान को।

गाते गुनगुनाते। ये कार्यक्रम होगा प्रातः 10:05 पर। गीतांजलि फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा प्रातः 11:30 पर। दोपहर 12:30 पर आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुन सकेंगे गाने सुहाने।

ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है रामचरितमानस से, संगीत मैं पाठ मानस कांत।

अपने स्वामी के साथ रहकर वन प्रवास के सारे कष्ट सीता जी की कल्पना में उस पीड़ा से कम दुखदायी होंगे जो पति के वियोग में अयोध्या में झेलनी होगी। यदि श्री राम से 14 वर्षों तक अलग उन्हें अयोध्या में रखा गया तो निश्चित ही वो जीवित नहीं रह सकेंगी। भला स्वामी को वनवास का कठिन जीवन और उन्हें राजमहलों का भोग विलास उचित है? सीता जी ने अत्यधिक व्याकुल होकर ये वचन कहे। पति वियोग की वो कल्पना तक नहीं कर सकती। सीता जी की विकलता देख श्री राम का ये विचार दृढ़ हो गया कि हठपूर्वक उन्हें अयोध्या में छोड़ देने से वो जीवित नहीं रह सकेंगी। अतः उन्होंने सीता जी को विषाद भूलकर वन प्रस्थान के लिए तैयार हो जाने की अनुमति दे दी। माता के चरण छूकर श्री राम ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पुत्र को कातर नेत्रों से देखते हुए माता अधीर हो गईं। जब सीता जी ने सास के चरण छुए तो उन्हें हृदय से लगाकर सास ने आशीष दिया, जब तक गंगा जमुना में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे।

0: रामचरितमानस से ये पाठ सुन रहे थे आप मानस गान कार्यक्रम में। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: स्वच्छता का संदेश फैलाओ, हर जगह सफाई लाओ,
5: कूड़ा कचरा सही जगह डालो, स्वच्छता की आदत अपनाओ,
4: साफ सफाई से जीवन सुहाना, स्वस्थ समाज का सपना सजाना,
5: गली मोहल्ला शहर हर क्षेत्र हो चमकदार, स्वच्छता का नियम सबको समझाओ मेरे यार।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ।
7: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में होंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
8: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ताः। भारतं तथा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड इत्येते देशाः मिलित्वा स्वद्विपक्षीय सम्बन्धं हरित प्रौद्योगिकीं नवाचार रणनीतिक सहयोगं च सुदृढीकर्तुं विचार विमर्शान् कृतवन्तः। प्रधानमंत्री श्रीमोदी ह्यः नॉर्वे देशस्य राजधान्यां ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिः सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं संबोधयन् घोषणामेतां कृतवान्।
9: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक, और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
8: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते।
9: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
8: प्रधानमंत्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार सन्धिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति। अस्मिन् अवसरे वदन्तः नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विकव्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमे अन्तिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरम् आगतवान्। भारतस्य समृद्धकला परम्परायाः उत्सवे भव्य सांस्कृतिक संध्यायाः कार्यक्रमे सम्पूर्ण यूरोप्तः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्। लोकसभायाः अध्यक्ष ओम बिरला निगम विधि संशोधन विधेयक 20-26 इत्यस्य कृते संयुक्त समितिं घटितवान्। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता समितेः अध्यक्षरूपेण नियुक्तः वर्तते। समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः विनोद श्रीधर तावडे, सुजीत कुमारः, उज्ज्वल निकाम इत्येतैः सह राज्यसभायाः 9 सदस्याः कमलजीत सेहरावत, बैजयंत पांडा, डॉक्टर निशिकांत दुबे इत्येतैः सह निम्न सदनस्य सदस्याः च सन्ति। भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् सम्पर्कं प्राप्नोति, यद्धि 73.8% किलोमीटर तः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे मार्च मासपर्यन्तं भारतेन व्यावहारिकरूपेण स्वस्य ब्राड्गेज जालस्य पूर्णविद्युत्करणं प्राप्य यूरोपीयसङ्घस्य, युनाइटेड किंग्स, अमेरिका संयुक्त राज्यस्य च प्रमुख

0: रैल् व्यवस्थाभ्यः अग्रे स्थितं वर्तते। मणिपुरस्य अपर प्रमुख वस्त्र वाणिज्य उद्योग सचिवः अनुराग वाजपेयी इत्यनेन उक्तं यत् राज्य सर्वकारः राज्यस्य समृद्धानि वस्त्र हस्तकरघ परम्पराणि प्रवर्तयितुं अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु निर्यातं कर्तुं च कार्यं कुर्वन् अस्ति। IPL इति विंशतिं प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां अद्य सायं सार्धसप्तवादने कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा समाप्त कर इटली पहुंच गए हैं। नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने भाग लिया।
2: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: रोम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में समझौता होने की संभावना है। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया।
3: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के AI संचालित होलोबॉक्स स्थापित किए जा चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार को भारत की 4 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा और जयपुर भी जाएंगे। श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सेना खेल नियंत्रण बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ी डोपिंग जांच में विफल रहे थे। अंकित ने 69वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान और पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। आरोपों को स्वीकार करने के बाद दोनों खिलाड़ियों के प्रतिबंध की अवधि में 1 साल की कमी कर दी गई है। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश भीषण लू की चपेट में है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। बांदा में तापमान लगातार 3rd दिन 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Mr. Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, and President Sergio Mattarella and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. Indian Ambassador Vani Sarraju Rao said, the PM's visit would provide an important opportunity to address issues related to the mobility and welfare of the Indian community. She expressed optimism that the movement of Indian students, currently around 5,000 in Italy, as well as academicians and researchers, is likely to increase in the near future. Before arriving in Rome, the Prime Minister was in Oslo, Norway, where he participated in the 3rd India-Nordic Summit. This is the final leg of his 5-nation tour. Earlier yesterday, India Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland elevated the bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India Nordic summit in the Norwegian capital Oslo.
3: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
4: Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade. Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. The West Bengal government has notified the Annapurna Yojana to provide assured monthly financial assistance of 3,000 rupees to women for the socio-economic upliftment. The scheme introduced by the Department of Women and Child Development and Social Welfare will come into effect from the 1st of next month. Under the scheme, the financial assistance will be transferred directly to the Aadhaar-linked bank accounts of eligible beneficiaries through direct benefit transfer or DBT. Director General of Civil Aviation has directed the inspection of fuel control switches of an Air India Boeing 787-8 aircraft at the original equipment manufacturer facility in the presence of DGCA officers. According to the DGCA, the Air India Boeing 787-8 aircraft VT-ANX was grounded on 2nd of February this year after operating flight AIC-132 from London's Heathrow Airport to Bengaluru. Union Health Minister Jagat Prakash Nadda reaffirmed India's commitment to universal health coverage, digital health innovation and global health solidarity at the 79th World Health Assembly in Geneva. Addressing the assembly themed Reshaping Global Health, a Shared Responsibility, Mr. Nadda highlighted that India has operationalized over 1,85,000 Ayushman Arogya Mandirs across the country, delivering comprehensive primary health care services right at the community level. U.S. Secretary of State Marco Rubio will be on a 4-day visit to India from the 23rd of this month. This will be his first visit to India. The U.S. Department of State announced the visit. State Department spokesman Timmy Pigott said during his travel from the 23rd to 26th of May, Mr. Rubio will visit Kolkata, Agra, Jaipur and New Delhi. Mr. Pigott said he will discuss energy, security, trade and defense cooperation during meetings with senior Indian officials. The U.S. Embassy in New Delhi has said that Mr. Rubio would attend the Quad meetings on the 26th of May. In IPL cricket, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in a high-scoring match in Jaipur last night, keeping the playoff hopes alive. Rajasthan Royals overhauled the massive target of 221 runs with 5 balls to spare and 7 wickets in hand. As the league stage nears its end, 5 teams remain in contention for the lone remaining playoff spot. And that is the end of this news bulletin.
5: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे देशकान, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में होंगे प्रादेशिक समाचार। प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सामूहिक संकल्प को और अधिक सशक्त करेगा ये मंच। कल से करीब 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए पेट्रोल और डीजल के दाम। तेल विपणन कंपनियों ने राज्य में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बताते हुए लोगों से अनावश्यक अतिरिक्त खरीदारी न करने की अपील की। सर्वोच्च न्यायालय ने खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की दी अनुमति। लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने जारी किया भीषण लू का रेड अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जन कल्याण, सुशासन और क्षेत्रीय विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष तौर से चर्चा की गई। बैठक से संबंधित एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने इसे सहकारी संघवाद, समन्वित विकास और राज्यों के मध्य बेहतर तालमेल को नई दिशा देने वाला मंच बताया। श्री योगी ने कहा कि ये मंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सामूहिक संकल्प को और अधिक सशक्त करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कल से लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में पेट्रोल की कीमत 98.40 रुपये प्रति लीटर से लेकर 98.91 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 98.73 रुपये से लेकर 92.21 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। एक रिपोर्ट।
3: यह बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जल डमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। इस बीच प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और LPG की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। तेल विपणन कंपनियों ने स्पष्ट किया कि राज्य में ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त है और किसी प्रकार की घबराहट या अतिरिक्त खरीदारी की जरूरत नहीं है। LPG सिलेंडरों की आपूर्ति भी सामान्य बनी हुई है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
2: प्रदेश सरकार ने कहा है कि प्रदेश में किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। इस समय राज्य में 13.28 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 5.23 लाख मीट्रिक टन DAP सहित कुल 27.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की उपलब्धता है। एक रिपोर्ट।
4: प्रदेश में उर्वरक की उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में 3.13 लाख मीट्रिक टन अधिक है। कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए अनुदान पर सभी प्रकार के उर्वरकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुदानित उर्वरक का दुरुपयोग रोकने के लिए शासन ने किसान पहचान पत्र उपलब्ध कराने वाले किसानों को उनके अभिलेखों के आधार पर ही उर्वरक देने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि उर्वरकों की अत्यधिक खरीद और अनावश्यक प्रयोग से बचें। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
2: इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ओडिशा के भुवनेश्वर में हुए एक कार्यक्रम में कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार देश में किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। श्री चौहान ने कहा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में NEET UG की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए,

0: और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की अनुमति दे दी है। एक रिपोर्ट।
1: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति NV अंजारिया की पीठ ने कहा कि उन क्षेत्रों में कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिया जा सकता है जहां कुत्तों की आबादी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है और जहां कुत्तों के लगातार काटने और आक्रामक हमलों की घटनाओं से जन सुरक्षा खतरे में पड़ रही हो। न्यायालय द्वारा ये आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान के मामले में जारी किया गया है। इस बीच शीर्ष न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थल भेजने और नसबंदी करने के अपने पहले के आदेश को वापस लेने की मांग से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। उन्होंने बछरावा में सांसद निधि से बने बारात घर का उद्घाटन किया। श्री गांधी ने रायबरेली में PSC के 25वीं बटालियन के सामने 66 फीट रोड का भी उद्घाटन किया। कांग्रेस सांसद आज भी अपने संसदीय क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल लखनऊ में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को सही समय पर और उचित मात्रा में बीज उपलब्ध कराए जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि हर हाल में 31 मई तक सभी विक्रय केंद्रों तक बीज पहुंच जाने चाहिए। सभी प्रमाणित बीज किसानों को 50% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वो अनुदान पर बीज प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन करें, जिससे बुआई का कार्य सुगमता और समयबद्धता के साथ संपन्न हो सके। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। प्रदेश के कई जिलों में पारा 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार तीसरे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। रातें भी असामान्य रूप से गर्म हो गई हैं और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। दिन चढ़ते ही सड़कें सूनी हो जा रही हैं और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की तादाद बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेटों, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग और संबंधित सभी राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। IPL क्रिकेट में जयपुर में हुए मुकाबले में कल राजस्थान रॉयल्स की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। कल शाम को हुए मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। इसके बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 220 रन बनाए। जवाबी बल्लेबाजी में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 19 ओवर और 1 गेंद पर 3 विकेट खोकर 225 रन हासिल कर अपनी जीत दर्ज कर ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सामूहिक संकल्प को और अधिक सशक्त करेगा ये मंच। कल से करीब 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए पेट्रोल और डीजल के दाम। तेल विपणन कंपनियों ने राज्य में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बताते हुए लोगों से अनावश्यक अतिरिक्त खरीदारी न करने की अपील की। सर्वोच्च न्यायालय ने खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की दी अनुमति। लावारिस

0: कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने जारी किया भीषण लू का रेड अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सुहानी।

भी कहा क्या जिंदगी खाब है, खाब में झूठ क्या और भला सच है क्या।

0: सच है क्या, सब सच है।
1: ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म जागते रहो से। मुकेश की आवाज, गीतकार थे शैलेंद्र, संगीत सलील चौधरी के थे। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म एक गांव की कहानी से। तलत मोहम्मद की आवाज है, गीतकार हैं शैलेंद्र और सलील चौधरी ने संगीत दिया है।

फिल्म हनीमून से ये गीत आप सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। शैलेंद्र के गीत थे और संगीत दिया था सलील चौधरी ने।

फिल्म दो रास्ते से ये गीत आप सुन रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में। आनंद बख्शी के गीत हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के हैं।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: का
2: अभिनंदन है। तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
1: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
1: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
1: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details, log on to www.ddindia.com।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म महबूब की मेहंदी से। लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

0: मिस्टर एक्स इन बॉम्बे से ये गीत आप सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज़ में, आनंद बख्शी के गीत और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के। ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है, समाचार होंगे दिल्ली केंद्र से।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
2: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
4: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
2: नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
6: India is accelerating towards universal health coverage.
7: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
6: Pandemic preparedness and emergency responses.
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
8: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
9: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
8: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
7: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
10: में जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
2: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
11: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था। था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
12: IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
2: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
13: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुँच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
14: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोक सत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द, नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख, दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
2: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
15: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Later, Italian Prime Minister Giorgia Meloni hosted a dinner in honour of Mr. Modi. After the dinner, PM Modi reached Anantara Palazzo Nayadi Hotel, where a jubilant and cheering Indian diaspora welcomed him. Mr. Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, President Sergio Mattarella, and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus on how to boost India-Italy cooperation, especially focusing on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, FAO, and strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. A correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
3: Prime Minister Narendra Modi will call on the President of Italy, Sergio Mattarella, at the Quirinal Palace today, where he will be accorded a guard of honour. The day's engagements include delegation-level talks, press statements, exchange of memoranda of understanding, bilateral meetings, and a visit to the Food and Agriculture Organization. Prime Minister Modi will also plant a Morus nigra black mulberry tree, a species that symbolically connects India and Italy through its culinary, medicinal, and agricultural significance. This is Suparna Bhatia from Rome.
15: Earlier yesterday, Indian Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland, and Iceland elevated the bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in the Norwegian capital, Oslo.
4: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
15: Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
4: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
15: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership, and India-EU

कार्यक्रम में पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म ताल से। आवाजें अलका याग्निक और उदित नारायण की हैं। गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

इसके पहले आपने ये गीत सुना दौड़ से, फिल्म दौड़ से, गीतकार थे महबूब। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रोजा से।

0: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए महोबा और मुजफ्फरनगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं महोबा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित श्रोतीय का।
1: महोबा जिलाधिकारी गजल भरद्वाज की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता तथा आगामी कार्य योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक के दौरान डीएम ने कहा कि आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि टीकाकरण, जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान कार्ड, मातृ शिशु स्वास्थ्य, संक्रामक रोग नियंत्रण एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। डीएम ने अस्पतालों में साफ सफाई, दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सकों की नियमित उपस्थिति तथा मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की भी गहन समीक्षा की। महोबा में सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी और गाली देने के मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने सांसद और उनके अज्ञात समर्थकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भारी विरोध प्रदर्शन कर सांसद का पुतला फूंका था और जिला मीडिया प्रभारी की तहरीर के बाद यह कार्रवाई हुई। सपा सांसद का वीडियो वायरल होने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए सांसद ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने दावा किया कि वायरल वीडियो पूरी तरह से फर्जी है और एआई तकनीक के जरिए उनके शब्दों से छेड़छाड़ कर उन्हें बदनाम करने की साजिश रची गई है। महोबा जनपद के प्रसिद्ध देसावरी पान को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जिलाधिकारी गजल भरद्वाज ने राठ रोड स्थित एपीओ जैविक बाजार का फीता काटकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विशेष रूप से देसावरी पान से जुड़े नवाचारों को सराहा और पान उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने पर जोर दिया। डीएम ने मयंकता चौरसिया द्वारा स्थापित अच्युतम ऑर्गेनिक एंड हर्बल्स पान प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया। इस प्रतिष्ठान में देसावरी पान से निर्मित मुखवाश, पान लड्डू, पान शरबत, पान चॉकलेट सहित कई आकर्षक उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। डीएम ने नवचारों को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को ब्रांडिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए बाजार में नई पहचान दी जा सकती है। उन्होंने जैविक सब्जियों एवं अन्य उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि सभी एफपीओ एवं स्वयं सहायता समूह अपने उत्पाद यहां विक्रय करेंगे तथा जिनके उत्पादों का जैविक प्रमाणीकरण नहीं हुआ है वे शीघ्र प्रक्रिया पूर्ण करा लें। महोबा के इस जैविक बाजार में अब तक कुल 12 एफपीओ एवं स्वयं सहायता समूहों को दुकानें आवंटित की जा चुकी हैं। यह बाजार नगर पालिका परिषद महोबा द्वारा जिलाधिकारी के नेतृत्व में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में उद्यान विभाग द्वारा स्थापित हाईटेक नर्सरी किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। लगभग 1.25 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस आधुनिक नर्सरी में तैयार किए गए उच्च गुणवत्ता वाले तरबूज और खरबूज के पौधे लगाकर किसान भारी मुनाफा कमा रहे हैं। महोबा के जैतपुर में स्थापित यह हाईटेक नर्सरी किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यहाँ की प्रमुख विशेषताएं और किसानों को होने वाले फायदे इस प्रकार हैं। जिला उद्यान अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि पारंपरिक खेती के मुकाबले तरबूज और खरबूज की बागवानी में कम समय में प्रति एकड़ लाखों रुपए तक का मुनाफा कमाया जा सकता है। हमारे यहाँ ऑटोमेटिक मशीनों और आधुनिक तापमान नियंत्रण प्रणाली से यहाँ हाईब्रिड और रोग मुक्त पौधे तैयार किए गए थे जिससे किसानों को अब अच्छा मुनाफा हुआ है। उन्होंने कहा
2: तरबूज की और खरबूजा की खेती लगभग 1400 हेक्टेयर की जाती है। एक हेक्टेयर में आराम से 3-4 लाख रुपए किसानों को 3-4 महीने मिल जाती है। कुछ किसान ने बताया कि 8-10 किलो के तरबूज तैयार है और किसान बड़े खुश हैं कि यहाँ का जो पौधा है अच्छा है और उत्पादन अच्छा हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना देश के करोड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत पात्र लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। महोबा जिले में कुल 4,25,310 आयुष्मान लाभार्थियों के सापेक्ष अब तक 2,79,612 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। जिलाधिकारी गजल भरद्वाज ने शेष पात्र लाभार्थियों से जल्द अपना आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पात्र लोग जिला अस्पताल के महिला एवं पुरुष आयुष्मान कक्ष सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचकर आयुष्मान मित्र की सहायता से निशुल्क कार्ड बनवा सकते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में CHO, ANM एवं आशा संगनी द्वारा भी यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि आयुष्मान कार्ड बन जाने से जरूरतमंद परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता मिलेगी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।
0: महोबा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मुजफ्फरनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रणवीर सिंह सैनी का।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में इसी महान नुमाइश ग्राउंड के मैदान में एक रोजगार मेले का उद्घाटन किया, जिसमें लगभग 200 कंपनियों ने भाग लिया और भारी संख्या में युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र भी बांटे गए। सांकेतिक रूप से लगभग 10 युवक युवतियों को मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिए। कार्यक्रम में केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी शामिल रहे। श्री चौधरी ने मंच से बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कराए जा रहे देश हित और प्रदेश हित के विकास कार्यों की जमकर सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर को नगर निगम का दर्जा दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने गन्ना किसान, गन्ने का भुगतान, सुगर मिल के साथ साथ किसानों की जमकर तारीफ की। चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया। श्री योगी ने कहा कि वह कभी जातिवाद के पक्षधर नहीं रहे। मुजफ्फरनगर जिले में बीते एक माह से लगातार आंधी तूफान और ओलावृष्टि के कारण कई पेड़ उखड़ कर गिर गए। वहीं ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। विद्युत आपूर्ति भी जनपद में आंधी तूफान से लगातार बाधित रही। उत्तर भारत की पौराणिक तीर्थस्थली मुजफ्फरनगर के सुखतीर्थ स्थित हनुमत धाम के पीठाधीश्वर स्वामी केशवानंद जी महाराज का बीमारी के चलते निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे। उनके निधन से तीर्थ के साधु संतों में शोक की लहर दौड़ गई। स्वामी केशवानंद जी महाराज को हनुमत धाम के प्रांगण में भू समाधि दी गई। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से आए साधु संतों के साथ बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी मौजूद रहे और उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा मुजफ्फरनगर में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भाजपा शासित सभी राज्यों में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। रेलवे के दोहरीकरण, रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यकरण और विद्युत आपूर्ति में बड़े स्तर पर सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। श्री शर्मा ने कहा कि वर्ष 2029 में भाजपा की सरकार बनने के बाद महिलाओं की राजनीति में अधिक भागीदारी देने के लिए महिला आरक्षण से जुड़े बड़े कदम उठाए जाएंगे, जिससे महिलाओं को 50% से अधिक प्रतिनिधित्व मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट विकास की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 22,000 से अधिक वाद प्रकरणों को निस्तारण किया गया। इस दौरान जिला जज ने कहा कि लोक अदालत विवादों को सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित करने का बड़ा माध्यम है। यह त्वरित न्याय को अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। इस दौरान मोटर दुर्घटना के 56 वादों का निस्तारण कर 6,11,00,000 रुपए प्रतिकर प्रदान किया गया। विभिन्न न्यायालयों के 6,190 सामान्य फौजदारी वादों का निस्तारण कर 7,27,000 रुपए का अर्थदंड वसूला गया। 33 दीवानी वादों का निस्तारण किया गया। 138 NIA एक्ट के 31 वादों के निस्तारण में 2,97,00,000 रुपए का अर्थदंड वसूला गया। राजस्व के 15,876 मामलों का निस्तारण कर 4,54,00,000 रुपए का राजस्व वसूला गया। विभिन्न बैंकों के द्वारा 384 बैंक ऋण मसलों का निस्तारण कराकर लगभग 5,62,00,000 रुपए का सेटलमेंट किया गया। पारिवारिक न्यायालयों के द्वारा 64 मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। लोक अदालत के नोडल अधिकारी अपर जिला जज रवि कुमार दिवाकर ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत विवादों को सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित कराने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। मुजफ्फरनगर जिले में इस समय स्व जनगणना का कार्य चल रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि 7 मई से प्रारंभ होकर 21 मई 2026 तक होने वाली स्व जनगणना में जनपद के सभी नागरिक स्वयं की जनगणना पोर्टल पर अपनी सूचनाएं दर्ज कराने का कार्य करें। मुजफ्फरनगर में महिला आरक्षण बिल पास न होने पर विशाल शक्ति प्रदर्शन किया गया। हिंद मजदूर किसान समिति के बैनर तले जुटी हजारों महिलाओं ने पैदल मार्च निकालकर संदेश दे दिया कि अब देश की आधी आबादी अपने हक के लिए जाग चुकी है। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर नारे लगाती ये महिलाएं प्रकाश चौक पहुंची, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा एवं राष्ट्रहित में किए गए आह्वान के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अपने निजी गाड़ी के स्थान पर मेट्रो का उपयोग किया। कपिल देव ने गोरखपुर से लौटते समय निजी वाहन का उपयोग न करते हुए दिल्ली हवाई अड्डे से मोदीपुरम तक मेट्रो एवं रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के माध्यम से यात्रा कर जनमानस को ऊर्जा संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा का प्रेरणादायी संदेश दिया।
0: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है देश गान।

अभी आप सुन रहे थे देश गान, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब उर्दू प्रोग्राम होंगे हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
1: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए।

0: प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं हरिहरन की आवाज में शिव भजन।

0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रातः के 10 बजने को है, थोड़ी ही देर में समाचार होंगे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाते

0: एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी इस यात्रा का मुख्य ध्यान भारत और इटली के बीच सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर रहेगा। इस दौरान विशेष रूप से भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान वर्ष 2025 से 2029 के दौरान संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना की भी समीक्षा की जाएगी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
2: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान की ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान का संचालन रोक दिया गया था। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज परमवीर चक्र से सम्मानित कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि 1947-48 के युद्ध में पीरू सिंह का अदम्य साहस, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान भारतीय सैन्य इतिहास के स्वर्णिम अध्यायों में सदा अमर रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे जल संरक्षण के विषय में। गाने के साथ साथ में जल की भी बात हो जाए, क्यों? जल प्रकृति का अनमोल उपहार है। मानव जीवन, पशु पक्षी, वनस्पति और समूची धरती का अस्तित्व जल पर ही आधारित है, किंतु बढ़ती जनसंख्या, जल का अत्यधिक दोहन और लापरवाही के कारण आज जल संकट गंभीर रूप लेता जा रहा है। ऐसे समय में हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि जल की प्रत्येक बूंद को महत्व को समझें और उसके संरक्षण का संकल्प लें। आइए इसी प्रेरणा के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत, 1942 अ लव स्टोरी।

सोचिए अगर एक दिन धरती की नदियाँ सूख जाएं, तालाब खाली हो जाएं और प्यास बुझाने को पानी ना बचे, तो शायद तब हमें एहसास होगा कि हमने कितनी बड़ी लापरवाही की थी। आइए आज से ही प्रण लें, जल की हर एक बूंद की कीमत समझेंगे। आइए अगला गीत सुनते हैं

तो श्रोताओं, बात कर रहे हैं हम पानी के बारे में। पानी सिर्फ एक ज़रूरत नहीं बल्कि जीवन की सबसे अनमोल धरोहर है। अगर आज हमने जल को नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ कहानियों में नदियां खोजेंगी। इसी संदेश के साथ हम अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म पहला नशा से।

ज़िंदगी की हर धड़कन में पानी है। अगर हम बात करें खेती की, कहीं भी कुछ भी, मतलब सुबह उठने से लेकर शाम के रात के सोने तक अगर जल ना हो तो सोचिए कैसा होगा। इसीलिए जल बचाना बहुत ही आवश्यक है। जल बचाओ, भविष्य बचाओ। आइए ये आवाज़ उठाते हैं।

ज़रूरत है कि हम अपने गांव में, शहर में पानी बचाने के उपाय अपनाएं, घर के नलों को खुला ना छोड़ें, तालाबों और कुओं की साफ़ सफाई हमेशा करते रहें और वर्षा के जल को व्यर्थ बहने से रोकें, उसका संरक्षण करें।

जल केवल संसाधन नहीं है, बल्कि जीवन की आधारशिला है। धरती पर उपलब्ध मीठा जल बहुत ही सीमित मात्रा में है, इसीलिए हम सभी की सभी को ये आवश्यक है कि जल संरक्षण की आदत बना लें। जल बचाते रहें, जल को बचाना बहुत ही आवश्यक है। जल बचाएं और भविष्य सुरक्षित बनाएं, ये संकल्प हम लेके चलिए आगे गीत सुनवाते हैं आपको। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से।

तो श्रोताओं, उम्मीद है कार्यक्रम में आनंद आ रहा होगा आपको। गीतों के साथ साथ में हम बात कर रहे हैं जल संरक्षण के विषय में। जल संरक्षण क्यों आवश्यक है ये तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आने वाले समय में जल की कमी हो जाएगी अगर हम संरक्षण ना करें तो। कैसे कर सकते हैं? ब्रश या शेव करते समय जल खुला ना छोड़ें, बाल्टी से स्नान करें, शावर का कम प्रयोग करें, टपकते नलों और पाइपों की तुरंत मरम्मत कराएं। कई बार हम देखते हैं कि सड़कों पे भी ऐसे ही नल खुले छुड़े छूट जाते हैं, तो अगर बहुत जल्दी ना हो तो हम ज़रूर रुक के उन नलों को बंद करें, या कभी कभी नल नहीं होते हैं, नल टूट जाते हैं, तो उसकी भी मरम्मत कराने के लिए हम कोशिश करें। कपड़े और बर्तन ज़रूरत के अनुसार ही धोएं। आरओ से निकलने वाले बचे पानी का उपयोग पोछा, सफाई या पौधों में कर सकते हैं। आइए सुनते हैं अगला गीत।

जल संरक्षण के लिए ज़रूरी है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। पेड़ वर्षा और भूजल बढ़ाने में मदद करते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। नदियाँ और तालाबों में कूड़ा ना डालें, प्लास्टिक और रसायनों से जल स्रोतों को प्रदूषित ना करें।

और श्रोताओं, एक बहुत जरूरी बात पानी संरक्षण के विषय में, हमें जरूरत है कि हम अपने बच्चों को एजुकेट करें कि पानी बचाना सीखें, स्कूल, गांव और मोहल्लों में जल संरक्षण अभियान चलाएं, शादी समारोहों और कार्यक्रमों में पानी की बर्बादी रोकना बहुत जरूरी है। आइए सुनते हैं अगला गीत।

0: तो श्रोताओं, मस्ती, संगीत और जागरूकता से भरा ये खूबसूरत सफ़र यकीन है आपको पसंद आया होगा। उम्मीद है आज का ये संदेश आपके दिल तक ज़रूर पहुंचा होगा। याद रखिए, पानी सिर्फ ज़रूरत नहीं है, आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। तो आज से, अभी से जल बचाने की आदत अपनाइए। इस कार्यक्रम को अब यहीं समेटते हैं। गाते गुनगुनाते कार्यक्रम में आपसे फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में होंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कोलोसियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
3: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी। नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हिथ्रो हवाई अड्डे से बंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान का संचालन रोक दिया गया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।
5: जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
6: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
7: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
4: लोकरंग के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं सविता त्रिपाठी। आइए सुनते हैं इनके स्वर में लोकगीत।

0: लोकरंग कार्यक्रम जारी रहेगा, लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकरंग, कलाकार हैं सविता त्रिपाठी।

0: अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। कलाकार थी सविता त्रिपाठी। इसी के साथ ही लोक रंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।
1: गीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग्स।

0: और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुरों और संदेशों से सजा एक खास संगीत का सफर, गीतांजलि। आज का हमारा ये छोटा सा संदेश है कि प्लास्टिक को कहें ना और पानी की हर बूंद को बचाएं, कहें हाँ, क्योंकि जिस धरती ने हमें जीवन दिया उसे सुरक्षित रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो आइए खूबसूरत गीतों के साथ दिल में एक छोटी सी जागरूकता भी जगाते हैं। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर नदियाँ चुप हो जाएँ और पेड़ हमसे रूठ जाएं तो ज़िंदगी कितनी अधूरी लगेगी। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लें, कपड़े का बैग अपनाएं और पानी व्यर्थ बहने से बचाएं। इसी से प्यारे से एहसास के साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

पानी सिर्फ एक ज़रूरत ही नहीं, ये आने वाले कल की सबसे बड़ी दौलत भी है श्रोताओं। और प्लास्टिक तो सुविधा देती ही है, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे धरती माँ की सांसें भी छीन लेती है। तो चलिए थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी जिम्मेदारी के साथ ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं और सुनते हैं अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। कहते हैं ना कि छोटे छोटे कदम ही बड़े बड़े बदलाव लाते हैं। जैसे नल खुला ना छोड़ें, घर से अपनी पानी की बोतल साथ लेकर चलें और बाजार जाते समय कपड़ों का थैला साथ में ज़रूर लेकर जाएं। कभी आपने ध्यान दिया होगा श्रोताओं कि जब हम सब्जी लेने जाया करते हैं तो दुकानदार तुरंत प्लास्टिक का बैग निकाल देता है, लेकिन अगर हम वही मुस्कुराकर कहें कि भैया थैला साथ में है, तो बस यहीं से बदलाव शुरू हो जाता है। यकीन मानिए, छोटी छोटी बातें ही बड़ी बड़ी जागरूकता लाती हैं, है ना?

दोस्तों, गर्मी बढ़ती जा रही है और कई शहरों में पानी की कमी भी महसूस होने लगी है। ऐसे में अगर हम एसी या आरओ का बचा हुआ पानी पौधों में डाल देते हैं तो इससे पानी की भी बचत होगी और हरियाली भी बढ़ेगी। तो इसलिए घर से निकलते समय थैला और पानी की बोतल और जिम्मेदारी तीनों साथ रखिए।

श्रोताओं, गीतों के खूबसूरत सफ़र के साथ ये प्यारा सा संदेश और संकल्प यदि आपको याद रहे तो ये हमारा प्रयास सफल हो जाएगा। याद रखिए, पानी बचाइए, प्लास्टिक हटाइए और धरती को मुस्कुराने दीजिए, क्योंकि प्रकृति हमें हर दिन बहुत कुछ देती है और अब हमारी बारी है प्रकृति को कुछ देने की। श्रोताओं, पानी भी बचाना है, प्लास्टिक को भी हटाना है और मिलकर सुंदर भारत बनाना है। तो इसी संदेश और संकल्प के साथ गीतांजलि कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
2: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी।
0: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अकरम आसमा फकीर।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
2: जी,
0: तो विमलेश जी, अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी जी जी, श्रोताओं, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख

0: वर्षावनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षावन से।
1: जी जरूर श्रोताओ, अपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षावन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
0: जी
1: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
0: श्रोताओ, अमेजन वर्षावन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षावन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
1: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षावन से मिलता है।
0: जी
1: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में।
0: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलंबिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
1: और श्रोताओं, जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
0: दूसरा है गोल्डन मंकी। बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
1: और आपने श्रोताओं एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
0: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
1: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओ, अमेजन का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
0: जी
1: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेजन वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी।
0: जी जी जी, एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेजन वर्षा वन ज्यादातर अमेजन नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओं, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेजन नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेजन नदी उफान से भरी रहती है।
0: जी।
1: इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
0: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
1: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेजन नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की जानकारी अमेजन वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है, अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
1: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम द क्रो।
0: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जांच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जांच लेना चाहिए।
2: CIET NCERT presents the series Singing the Poem. Under this series, let us listen to the program The Crow.
3: Hello children.
4: Hello ma'am.
5: Hello ma'am.
3: Hello, hello. How are you all?
4: We are fine ma'am.
5: I am fine ma'am.
6: How are you ma'am?
3: I am good. Thank you so much Vanya. All right. So children, today I am going to share something with you. Are you ready?
4: Yes, ma'am.
5: Okay, ma'am.
3: All right. You all know that pets are special members of our family, isn't it?
4: Yes,
6: pets are so lovely.
3: Right, Soham.
7: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
3: Riddhi, that's very good. But How do you know that your dog loves you?
7: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
3: Wow, that's good. And what about you, Navya?
6: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
3: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
8: Ma'am, when I come home, my cat jumps and sits on my lap.
3: Oh, that's so exciting, isn't it?
4: Yes, ma'am.
3: All right. So, we spoke about our animals. What about birds? Do you like birds?
4: Yes, ma'am.
3: Can you name some birds?
5: Sparrow.
3: Okay, Vanya. Good. That's a beautiful small bird. Okay, Soham, you tell.
6: Peacock. It dances so well. It looks so pretty.
3: Yes, peacock is a colorful bird.
8: Ma'am, parrot.
3: Oh, yes. Parrot is a mimic bird. But, children, you have missed a bird. Do you know which bird is missing?
9: Any guesses?
3: Okay, I'll give you a clue. It calls... Absolutely right. Children, I remember a lovely story of a crow. Would you like to listen?
4: Yes, ma'am.
7: It will be fun.
3: So, I'll narrate the poem. Repeat after me. There once was a crow. He was black.
4: As you know.
3: How to be beautiful. He wanted to know. Colorful feathers. He wanted to grow. He found one peacock feather. He stuck it. In his tail. Then he found another. He picked up. All without fail. He stuck them. In his wings. Put one on his head. I am now beautiful. He danced and said. The other crows. Laughed at him.
10: Oh, what a fool you are. You are beautiful in black. We love you.
4: For what you are.
3: So children, now listen to the same poem in a lovely song.
4: Okay.

0: और एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो दीदी
1: दीदी
0: राजू स्कूल से आ गए तुम?
1: हाँ दीदी।
0: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
1: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
0: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए। क्या ये सच है राजू?
1: दीदी वो तो मैंने।
0: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
1: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है, मगर
0: मगर क्या? अच्छा अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
1: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
0: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
1: भोजन और पानी?
0: हाँ राजू। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक पौधा लगाओ।
1: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा, कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
0: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
1: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा तो राजू बेटा तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी अभी खोदता हूँ, ये खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।
1: जी

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: मालिका का, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ मालिका का, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
2: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
2: हाँ।
0: देखभाल? वो कैसे?
2: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
2: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
2: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा
0: जी?
1: अच्छा अब घर चलें?
0: जी धन्यवाद मालिका का।
2: अरे बेटा
1: चलो बेटा
2: जी।
0: चलिए दादाजी।

0: जी सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यहीं सोया था।
1: अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
0: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
3: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
4: हाँ, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
3: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं? दीदी कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
4: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
3: हाँ दीदी,
4: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
3: दीदी ये तो बहुत ही गलत काम है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी।

बाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
4: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार के गाए गीत से। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल हैं आनंद बख्शी के।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना शराबी फिल्म से इस गीत को। धुन तैयार की थी मदन मोहन ने और शब्द रचना थे राजेंद्र कृष्ण के। और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म है अनपढ़, आवाज़ है लता मंगेशकर की, संगीत से सजाया है मदन मोहन ने और गीत के बोल लिखे हैं राजा मेहंदी अली खान ने।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना महबूब की मेहंदी फिल्म से इस गीत को। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अगला गीत। फिल्म है भीगी रात। धुन तैयार की है रोशन ने, शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी के।

0: इस गीत के साथ ही गाने सुहाने कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत।
1: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
2: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं मेहंदी हसन।

0: सुगम संगीत का कार्यक्रम जारी रहेगा, पर उसके पहले आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
2: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं मेहंदी हसन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत, कलाकार थे मेहंदी हसन। इसी के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: इस गीत के बाद डॉक्टर साहब कार्यक्रम में वापस लौटते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि मौसम बरसात का है और इस समय मच्छर जनित बीमारियां, डेंगू का, एंसेफेलाइटिस का भी खतरा बढ़ गया है, तो इन बीमारियों के क्या लक्षण होते हैं और लक्षण दिखने पर हमें क्या करना चाहिए?
1: देखिए, इस समय जो बरसात का सीजन है, जिसमें कि सही आपने बताया कि मच्छर ज़्यादा, उनका ब्रीडिंग पीरियड यही है, तो मच्छर जनित
0: जी
1: मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेज इसमें ज़्यादा होती है। स्पेशली इसमें डेंगू फीवर आता है। डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, फाइलेरिया है, तो इस तरह की जो बीमारियां हैं जिसको कम्युनिकेबल डिजीज हम लोग कहते हैं संचारी रोग में, तो डेंगू कम्युनिकेबल डिजीज में बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है, जिसके चलते डेथ रेट भी ज़्यादा होता है। अब डेंगू है क्या? डेंगू भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि बॉडी में इंटर करता है। अब इसका लक्षण क्या होता है? जिसका इसका लक्षण होता है जैसे बुखार आना, बॉडी एक हेडेक, आँख में दर्द, सर में दर्द और लेसिट्यूड, वीकनेस, बहुत ज़्यादा वीकनेस। वायरल का और एक लक्षण होता है कि हेडेक इसमें बहुत ज़्यादा होता है। फीवर आपका कंटिन्यूशन में रहेगा, कंटिन्यूड फीवर रहेगा, लेकिन ये सेल्फ इम्यूनिटी, बॉडी के इम्यूनिटी से 5 to 7 days में धीरे धीरे करके फीवर सबसाइड हो जाता है। तो डेंगू में प्रिकॉशंस है, और कोई भी बीमारी का जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है वो बेटर होता है कि क्यूरेटिव स्टेप से या थेरापेटिक स्टेप से। अगर प्रिवेंटिव आप करते हैं, अब जैसे प्रिवेंशन है कि हमको डेंगू ना हो, तो उसके लिए स्वच्छता की बात आती है, साफ़ सफाई। आप स्वयं साफ सफाई रहें, आप हैंड वॉश करें, अपना रूम को साफ सफाई करें, रूम के अगल बगल नाले वगैरह हैं उनको भी साफ सफाई करें, क्योंकि ये जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है मच्छर के काटने से, देखिए सबसे अगर हमारा बड़ा दुश्मन जो है अभी समझिए कि मच्छर है
0: जी।
1: वो मच्छर जो अलग अलग प्रजाति का है वो अलग अलग बीमारी करता है। अब देखिए मच्छर जो है मॉस्किटो में, जो अभी जो डेंगू है उस वो जो है एडिज एजेप्टी से होता है, उसी तरह से मलेरिया बीमारी है उसको भी मच्छर ही का आता है, वो एनोफिलिस से होता है, उसी तरह से अदर जो होता है वो क्यूलेक्स से होता है
0: जी।
1: उसमें भी आपका जैसे येलो फीवर हुआ एवं अन्य बीमारियां, ये संचारी रोग को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही नहीं, अदर डिपार्टमेंट को भी इसमें आगे आना पड़ेगा, जिसमें स्वच्छता पर ध्यान दे, नाली नाले पर उस सबको सफाई करे, स्कूल वाले को भी ध्यान देना पड़ेगा, बच्चों को अवेयरनेस करें कि ये बीमारी कैसे फैलता है, ये बीमारी के विषय में बताएं, चूँकि प्रिवेंशन जो है इज बेटर। अगर प्रिवेंटिव है तो आपको बीमारी नहीं होगी, अगर प्रिवेंशन नहीं रहेगा तो बीमारी होगी, जिसमें परेशानी होगी और फेटलिटी रेट भी बढ़ जाएगा।
0: जी डॉक्टर साहब, आपने भी बताया कि अलग अलग तरह के मच्छर होते हैं।

0: का इंडिकेशन क्या है कि WBC का काउंट बढ़ा रहेगा। दूसरा चीज एलाइजा हम लोग कराते हैं, एलाइजा की स्पेसिफिक होता है उस वायरस के लिए या उस बैक्टीरिया के लिए जो कि स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। हमारे बॉडी में जो रेजिस्टेंस पावर है एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी तैयार किया जाता है, तो एलाइजा ये डिटेक्ट करके बताता है कि ये वायरस का अलग अलग सबका कीट आता है और वो कीट के माध्यम से एलाइजा टेस्ट करते हैं। और थर्ड टेस्ट जो होता है RT-PCR हम लोग कहते हैं उसको, रियल टाइम PCR माने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पैथोलॉजिकल जांच है, मोर स्पेसिफिक है, जिसके द्वारा ये बता दिया जाता है कि ये कौन सा वायरस आपको इन्फेक्शन किया। और नंबर फोर्थ जो होता है उसका कल्चर करवाते हैं, जिसको अलग अलग कल्चर मीडिया होता है, उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग कल्चर करके और कॉलोनी से हम लोग का जो स्टडी करके बताते हैं कि ये स्पेसिफिक वायरस आपको इन्फेक्शन किया है, जिसके चलते ये बीमारी हुई है, जिसका ये सब लक्षण दिखाई पड़ रहा है।
1: जी डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब अगला सवाल है, आपने टीवी और लेप्रेसी भी जो दोनों संक्रामक बीमारियां ही हैं और इन कार्यक्रम को भी आप देख चुके हैं, तो हमारे श्रोताओं को ये बताने का अनुरोध है कि इनका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस तरह से होता है और इस संक्रमण से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए।
0: देखिए, मैं टीवी और लेप्रोसी को एक साथ लेकर बता रहा हूँ। मेनली जो टीवी और लेप्रोसी की बात हुई, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर एयरबॉर्न है, दैट इज द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। टीबी का जो होता है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से टीबी होता है। तो टीबी का अगर हम लोग डिफिनेशन देखें तो ये बैक्टीरिया से होता है। इट इज टीबी इज एक्यूट डिजीज कॉज बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसका लक्षण क्या होता है टीबी का, जैसे कि भूख नहीं लगना, फीवर होना, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं, कफ 2 सप्ताह से ज़्यादा होना, वेट लॉस होना, है ना, कभी कभी बलगम में ब्लड आना, जिसको हेमोप्टेसिस कहते हैं। अगर समाज में लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा, अगर किसी तरह का आपको खांसी हो रही है तो आप इमीडिएटली आप कोई भी स्वास्थ्य केंद्र में चले जाएं, हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या CSC हो या जिला अस्पताल पर, तो आप वहाँ पर जाएं, आपका जांच कराया जाएगा। देखिए, पहले ये था कि टीबी का हमें प्रॉपर जांच नहीं हो पाती थी, बहुत सारे मिस कर जाते थे, तो हम लोग क्लिनिकल बेसिस पर टीबी का ट्रीटमेंट करते थे। आज हमारे पास ऐसी सुविधाएँ हैं, इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएँ, इतनी अच्छी जाँच है, जो कि टीबी का अगर कुछ भी बैक्टीरिया अगर हमारा लंग्स को इन्फेक्टेड किए होगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट से 100% ठीक हो जाएगा। समाज में अभी भी अंधविश्वास है कि टीबी और लेप्रोसी ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमारा प्रॉपर डोज में प्रॉपर समय तक आप अगर टीबी का और लेप्रोसी का ट्रीटमेंट ले लेंगे तो सही हो गया। अगर ज़्यादा सा भी बुखार और खांसी आ रहा तो आप जांच कराएं। अब ये टीबी भी दो तरह का होता है, एक तो कहते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो लंग्स में होता है, दूसरा का एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, जो कि लंग्स के अलावे शरीर के किसी भी पार्ट में ये टीबी हो सकता है। अब ये होता है करते क्या है, हम लोग आए उसको एक्सरे कराए, ब्लड टेस्ट कराए, ये तो प्राइमरी शुरू से हो रहा है। लेकिन तीसरा चीज़ हमारे पास जो फैसिलिटीज आई है उसको हम लोग कहते हैं CV-NUT और TRUE-NUT। CV-NUT जो है कार्टेज बेस जो है एनालिसिस, जो PCR हमने बताया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसके द्वारा वो उसका स्प्यूटम का ले करके हम लोग उस मशीन में डालते हैं और वो आपको पकड़ के बता देगा कि आपको टीबी हुआ, एक चीज। दूसरा चीज ये बताएगा कि जो दवाई है, जो नॉर्मल दवाई चल रही है टीबी की, जो 4 दवाई है, ये 4 दवाई आपके लिए सुटेबल है कि नहीं। हो सकता हो मेरे लिए सुटेबल हो, आपके लिए सुटेबल नहीं है, तो वो मशीन ये भी बता देगा कि ये 4 दवाई आपके लिए सुटेबल नहीं है, ये आपको दवाई चेंज करना पड़ेगा। तो ये मशीन ही बता देता है, मैं हम लोग कहते हैं CV-NUT। तो ये फैसिलिटी हमारे पास नहीं था, तो डॉक्टर को बहुत सुविधा हो गया कि भाई हमको ये भी बता दे रहा है कि ये दवाई आपके लिए सुटेबल नहीं है, तो ड्रग चेंज करते हैं, तो उसको हम लोग ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का, जो ये 4 नॉर्मल दवाई अगर उसके लिए सुटेबल नहीं है तो उसको हम लोग कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। उसके लिए भी ड्रग्स है हमारे पास। और एक चीज और बताया जाए कि जो भी दवाई है वो मुफ्त में लोगों को दिया जाता है, उपचार भी मुफ्त में है, दवाइयाँ भी मुफ्त में है। कुछ ऐसी दवाई हैं जो कि प्राइवेट में आपको मिलेगा ही नहीं, सरकार अपने पास रिजर्व रखी हुई है। किसके लिए? ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए। ड्रग रेजिस्टेंट की टीबी

0: की जो दवाई है वो आपको मेडिकल हॉल पे कहीं नहीं मिलेगा, वो जब भी मिलेगा तो सरकारी
1: सरकारी
0: अस्पताल
1: अस्पताल
0: में ही मिलेगा, इसलिए कि उसका मिसयूज ना हो। अगर मिसयूज होता है तो ही दवाई फिर रेजिस्टेंट हो जाता है उस ऑर्गेनिज्म, इसलिए ये चीज़ हुआ। तो टीबी का आप प्रॉपर इलाज कराइए, ये लक्षण देख के जांच कराइए, जांच के बाद आपको जो दवाई मिल रहा है प्रॉपर ढंग से दवाई अगर आप खाते हैं तो आप 100% ठीक। अब आई लेप्रोसी की बात, लेप्रोसी भी इन्फेक्शस है, ये भी ट्रांसमिसिबल डिजीज है, ये भी संचारी रोग में आता है, तो इसका हमें तीन तरह से पकड़ते हैं।
1: जी
0: इसके लिए बहुत अधिक जांच की जरूरत नहीं पड़ती है। नंबर वन कि स्किन का कलर अगर नॉर्मल से हटकर हो तो उसको हटकर उसको कहते हैं हाइपोपिगमेंटेड पैच। ये शुरू होता है स्मॉल लीजन से, स्मॉल हाइपोपिगमेंटेड पैच। पैच कैसा रहेगा? पिगमेंटेशन जो
1: छोट
0: है नॉर्मल से कम होगा।
1: कम जी
0: दूसरा लॉस ऑफ सेंसेशन, अगर उसको आप देखेंगे प्रिक करके देखेंगे तो उसको पेन का महसूस
1: असर
0: नहीं
1: नहीं
0: होगा,
1: होगा जी।
0: ठंडा गर्म महसूस नहीं होगा। दूसरा लक्षण ये कार्डिनल साइंस है। तीसरा क्या है कि जहाँ पर लीजेंस रहेगा उसके सराउंडिंग में जो नर्व होता है वो मोटा हो जाएगा,
1: जी
0: थिक और इन्फ्लेम्ड हो जाता है। ये तीन लक्षण पर हमें
1: लेप्रोसी
0: लेप्रोसी का 100% डायग्नोसिस होता है। इसके लिए स्पेसिफिक कोई भी जांच की जरूरत नहीं है। जहां पर अगर कन्फ्यूजन होता है एक ही जांच कराते हैं, उसको स्किन स्लिट स्मियर कहते हैं, वहां के स्क्रैप करके और माइक्रोस्लाइड में रख करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो माइक्रोबैक्टीरियम लेपरी मिलता है,
1: जी
0: तो ये डायग्नोसिस हो गया। ट्रीटमेंट भी आपका दो तरह का, सुविधाएं के लिए चूंकि समाज में लोगों को ईजी बनाया जाए कि लेप्रोसी का डिवीज़न दो तरह से करते हैं, एक को पीबी कहते हैं एक तो एमपी कहते हैं। पीबी का मतलब 6 महीना इलाज और
1: जी
0: एमपी का मतलब कि 1 साल का इलाज। उसका भी एक क्राइटेरिया है कि अगर शरीर में इस तरह का कोई लीजन्स 5 मिल रहा है उसको पीबी कहते हैं, और अगर 5 से ज़्यादा है नर्व इन्वॉल्व रहे तो उसको एमपी कहते हैं। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ लोगों को कि अगर लेप्रोसी है ट्यूबरक्लोसिस है तो आप सरकारी अस्पताल पर आएँ, जाँच कराएँ, फिजिशियन और क्लिनिशियन आपको देख करके बताएंगे और दवा प्रिस्क्राइब करेंगे, आप प्रॉपर खाइए आप सही हो
1: जी
0: जाइएगा।
1: डॉक्टर साहब
0: और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि ये दोनों बीमारी या जो भी कम्युनिकेबल, ये हेरिडिटरी नहीं होता है, अनुवांशिक नहीं है कि आपके फादर मदर को था तो आपको हो गया, आपको है तो आपको मदर को। कम्युनिकेबल डिजीज में अनुवांशिक नहीं
1: नहीं,
0: होता
1: तो
0: ये
1: एक तरह
0: चीज़,
1: से ये मिथ है या भ्रांतियां हैं
0: मिथ
1: जो
0: है, ये
1: लोगों के
0: मिथ
1: अंदर
0: है जो
1: है
0: अभी
1: कि
0: भी कहीं कहीं गांव में ये चीज़ है, ये मिथ है, ये बैक्टीरियल वायरल डिजीज होता है और आपका ट्रीटमेंट चलेगा तो सही हो जाएगा।
1: और डॉक्टर साहब वायरल बुखार भी देखने को मिल रहा है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या वायरल फीवर भी एक
0: जी
1: संचारी
0: वो भी
1: रोग है?
0: संक्रमण है, वो भी संक्रमण होते हो तो वो भी वो या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। मान लिया आपको वायरल वायरल फीवर है, वायरल इन्फेक्शन है, हम मैं आपके बगल में बैठा हूँ, आपने खांसा छींका या स्पीच भी कर रहे हैं
1: जी
0: तो उससे क्या हुआ, बाहर निकला बैक्टीरिया या वायरस, वो इन्वायरमेंट में घूम रहा पार्टिकल से ये एडजस्ट करके हम स्वस्थ हैं, वो हमारे ये लंग्स में चला गया और वहाँ इन्फेक्शन कर दिया और वो वायरल फीवर हमको भी हो गया, तो हमसे अगर अदर मेंबर्स हमारे घर में पत्नी हैं बच्चे हैं फिर उनको फैलाएगा
1: तो
0: वायरल।
1: इससे बचने के क्या
0: इससे
1: उपाय
0: बचने का
1: होगा?
0: उपाय है कि अगर वायरल फीवर है तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना लें
1: जी
0: कि ताकि ठीक है आप हमारे हैं तो थोड़ा सा क्लोजनेस नहीं होता। देखिए इन्फेक्शन का भी अलग अलग तरीका है कि अगर तो अगर 10 mm तक वो बैक्टीरिया का साइज या वायरस का साइज है तब तो वो नाक और मुंह में फिल्टर हो जाता है, वो
1: जी
0: अंदर जाएगा ही नहीं, लेकिन उससे अगर कम है 5 mm का है तो वो लंग्स में जा करके इन्फेक्शन करा।
1: इन्फेक्शन करे
0: और दूसरा कि डिस्टेंस बना ले, डिस्टेंस इन देंस अगर 60 सेंटीमीटर से ऊपर डिस्टेंस बना लेते हैं तो वो आपको नहीं फैलाएगा, अगर वो बाहर निकला भी इन्वायरमेंट में घूम रहा इधर उधर जा रहा लेकिन आपको इन्फेक्शन नहीं
1: नहीं
0: बनाए,
1: फैले।
0: तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना ले, थोड़ा प्रिकॉशन ले ले, अगर बलगम आ रहा है तो एक जगह बलगम फेंके जहाँ तहाँ ना थूके, है
1: जी
0: ना, साफ सफाई पर ध्यान दे, नाला वगैरह में मच्छर जो पनपते हैं वहाँ पर थोड़ा सा क्रोसन ऑयल या पेट्रोल जला हुआ छिड़क दे ताकि आप सेफ,
1: जी डॉक्टर
0: बस
1: साहब, डॉक्टर साहब
0: प्रिकॉशंस।
1: अभी आप साफ सफाई की ही बात कर रहे थे, तो हम जानना चाहते हैं संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए स्वच्छता का कितना बड़ा
0: बहुत
1: हाथ?
0: बड़ा रोल है स्वच्छता का, देखिए स्वच्छता का बहुत बड़ा रोल इसलिए है कि जो भी बैक्टीरिया या वायरस का जो जन्म स्थान है वो गंदगी से ही हो, इन्वायरमेंट में है, लेकिन अगर जहाँ पर गंदगी है तो तो वहां पर सेप्रोफाइट्स है, उसको भोजन मिलता है, वहीं पर जन्म लेगा, वहीं पर जन्म लेगा तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, वहीं से फैलेगा, फैलने का रूट भी एयर मिल गया, वाटर मिल गया, फूड मटेरियल्स मिल गया। तो अगर गंदगी हमारे लिए, जैसे आप अपने से साफ सुथरा रहे भाई, हाथ का साफ रखना, शरीर का साफ रखना, डेली स्नान करना, अगल बगल अपना रूम का साफ सफाई रखना, तो इससे क्या होता है कि हम कोई भी बीमारी से बच सकते हैं जो ट्रांसमिशन। दूसरी चीज कि खाने पर भी ध्यान दीजिए, जो है जो भी चीज सब्जी या फ्रूट्स है वो ताजा होनी चाहिए। अगर वो बासी होता है या रोटी है, चावल या दाल है, तो उसमें चांसेस है कि बैक्टीरिया वायरस हो सकता है, इन्फेक्टेड कर सकता है, वो अगर आप खा लिए तो आपको इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो ना बासी ये सब चीज ना लें, ताजा ना लें। रोड पर जो पकौड़ी और ये सब्जियां ये सब चीज देते हैं, बेचते हैं, उससे भी परहेज करना चाहिए, ताकि इन्फेक्शन है उसको तो पता नहीं है, डस्ट आ जा रहा है, बैक्टीरिया जा रहा है, उस पर मच्छर है, मच्छी है, ये कर रहा, तो उससे भी इन्फेक्शन होगा और हो जाएगी।
1: डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में बारी है एक और हम गीत लें, तो आपकी पसंद का कोई गीत या कोई आपको याद आ रहा हो?
0: पुरानी गाना सुना दीजिए, बहुत अच्छा। लता मंगेशकर
1: जी, डॉक्टर साहब आइए सुनते हैं लता जी का ये गीत।

0: इस गीत के बाद डॉक्टर साहब हम कार्यक्रम में वापस लौटते हैं और डॉक्टर साहब डेंगू, एंसेफलाइटिस, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे संचारी रोग जटिल हो पाए, इनसे हमारे जीवन को खतरा ना हो, तो मरीजों को और परिजनों को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए?
1: समाज के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको जरा सा भी लक्षण दिखाई पड़े,
0: जी
1: खांसी है, बुखार है, भूख नहीं लग रहा है, तो आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर आएं और अपनी जांच कराएं। आपकी जांच भी मुफ्त रहेगी, दवा भी मुफ्त रहेगी, और प्रिकॉशंस लें, जो प्रिकॉशंस बताएं कि अपना स्वच्छ रहें, खान पान पर भी ध्यान दें, बासी चावल दाल रोटी ये ना खाएं, रोड की सामान जो है वो सब चीज़ ना खाएं, गंदगी अगल बगल नाला वगैरह है तो उस पर भी आप ब्रीडिंग के लिए मच्छरों से बचें, और रात में अगर सोएं तो फूल कपड़ा पहने ताकि वो अगर मच्छर
0: आपको ना
1: काटने
0: काटें।
1: उठने
0: जी
1: से बचें, और कभी कभी रिपेलेंट भी लगाया जाता है वायल के रूप में, तो उसको शरीर में आप लगाएं ताकि मच्छर आपको ना काटे, जिससे कि ये जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है वो ना हो।
0: डॉक्टर साहब, संचारी रोग की रोकथाम के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए?
1: संचारी रोग के रोकथाम के लिए एक तो प्रिकॉशनरी ये सब चीज़ बताया गया है कि ये सब चीज़ आपको बचना है। दूसरी चीज़ है कि आप जब भी लक्षण दिखाई पड़े तो इमीडिएटली आप आ जाएं, इधर उधर क्विक से ना इलाज लें, दवा दुकान से मांग कर दवा ना लें, आप प्रॉपर टाइम में आ जाएं, क्योंकि उसकी जब कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर जाती है तो ठीक होने में भी समय लगता है और बहुत परेशानी हो जाती है बाद में।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। डॉक्टर साहब, चलते चलते हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को संचारी रोग के लिए कोई संदेश आप देना चाहते
1: जी,
0: हैं।
1: मैं समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो हैं स्वच्छता से रहें,
0: जी
1: स्वच्छता स्वास्थ्य से रिलेटेड है। आप अगर ठीक से स्वच्छता नहीं बरतेंगे तो आपको बीमारियां कई तरह की होगी। खान पान पर ध्यान दें, टाइम से सोएं, और समय से थोड़ा हल्का फुल्का समय निकाल के थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह भी करें, और ये जो बीमारी के विषय में जो बताया गया है, जो बीच में मिसकंसेप्शन है कि बीमारी ठीक नहीं होने वाली है, तो उसको हटा दें दिमाग से। आपको अगर किसी तरह की कोई परेशानियां हैं तो आप छिपाएं नहीं, अधिक
0: जी
1: से अधिक छिपाएं नहीं, स्वास्थ्य केंद्र पर आएं, या हमारे जो ये प्रोग्राम चल रहा है जिसमें कि हमारे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, आशा, ANM ये जाती हैं आपको, तो उनको बताएं, जो भी चीज़ है छिपाएं नहीं, आगे बढ़ें और ये बीमारी के विषय में ज़रूर बताएं ताकि आपका इलाज प्रॉपर हो सके।
0: जी डॉक्टर साहब, तो श्रोताओं अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर गणेश यादव जी से। डॉक्टर गणेश यादव जिला अस्पताल में वरिष्ठ परामर्शदाता हैं। इतनी अच्छी जानकारी के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य मुद्दे से जुड़े इस विशेष कार्यक्रम के एक नए अंक में हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सेहत की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ परामर्शदाता जिला अस्पताल गोरखपुर के विशेषज्ञ डॉक्टर गणेश यादव और मनोज कुमार यादव की भेंट वार्ता। विषय था संचारी रोगों के कारण, लक्षण एवं उपचार। इसी के साथ ही ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
3: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। ग्राम भरथना जनपद सिद्धार्थनगर से राकेश चौरसिया अपनी पुत्री निशा चौरसिया के लापता होने की सूचना दे रहे हैं, जो 1 जनवरी सन 2004 से लापता हैं। इनकी उम्र 22 वर्ष है, रंग गोरा, चेहरा गोल है, कद 5 फीट 4 इंच है। इन्होंने सफ़ेद रंग के सूट और काला पजामा पहन रखा है, साथ में हवाई चप्पल पहनी हुई है। इनके संबंध में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। नंबर नोट करें, 7571050992। कृपया एक बार नंबर फिर से, 7571050992। 7571050992। ग्राम पांडेपुर जनाड़ी जनपद बलिया से स्वर्गीय रमाशंकर की पुत्री सविता 13 सितंबर सन 2025 से गायब हैं। इनकी उम्र 17 वर्ष है, कद 4 फीट, रंग साफ है। इन्होंने गुलाबी रंग का फ्रॉक और प्लाजो पहना हुआ है। इनके संबंध में कोई भी सूचना मिलने पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 8081647608। नंबर एक बार फिर से, 8081647608। कृपया एक और नंबर नोट करें, 8468072689। नंबर एक बार फिर से, 8468072689 पर संपर्क करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुईं। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। खेती किसानी कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर ज्ञान प्रकाश और कृष्णचंद्र की बातचीत। विषय है पशुओं में बच्चेदानी बाहर आने की समस्या।
2: डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, आप उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी बासडीह बलिया में हैं। आपके हमारे यह कार्यक्रम में स्वागत बा। डॉक्टर साहब, खेती और पशुपालन एक दूसरे से बिल्कुल लगल जुड़ल बा, दोनों के अलग नहीं कल जा सकेला। एक समय रहल जब सज्जी कम हुए खेती के जौन बा जानवरन से होत रहल, लेकिन अब जौन बा युग जमाना बदल गेल, ओकरे जगह पे तमाम जौन बा कृषि यंत्र आ गए। फिर भी पशुअन का महत्व अपने जगह पे बरकरार बा। आज के समय में लोगों के पास दुधारू जानवर ज़्यादा बाँटें। दुधारू पशुओं में एक समस्या अक्सर देखले में आवला कि उनकर बच्चेदानी जौन बा कबो कबो बाहर आ जाला। हम आपसे जानल चाहब कि एकरे पीछे का कारण बा।
3: हम अपने पशुपालक भाई के नमस्कार करत बानी। पशुपालन में सबसे बड़ी समस्या दुधारू पशुओं में जो उन बच्चेदानी के बाहर निकरब बा। एकर कई कारण हो। एक तो मतलब पैतृक जौन बा बनावट ओकर एनाटॉमिकल जौन शरीर के बनावट बा वह कारण से भी निकलला। दूसरा हार्मोन जौन शरीर में कंट्रोल कराला रास्ता वगैरह के वह नाते भी निकलला। और तीसरा कारण ये होला कि कहीं जौन बा आप गलती से अगर सांड से या भैंसा से क्रॉस करौले बाटी उसे इन्फेक्शन वगैरह आवा था।
2: अच्छा,
3: तो बार बार जौन बा वो बाहर फेंकाला, मैंने जौन भी फॉरेन बॉडी या मतलब जौन बाहरी तत्व होला ओके बार बार बाहर निकाले कोशिश करता कराला है हमें
2: जी,
3: जिससे हमारे पशु दुधारू पशुओं में सबसे ज़्यादा नुकसान होला। और आगे चल के यह हमें इतना इन्फेक्शन हो जाला बाहर निकलने से बच्चेदानी के कि आगे रुकले में, जैसे अगली बार जब आप गाभिन कर रही हैं तो रुकले में सबसे बड़ी समस्या हो।
2: कई बार बच्चा देत समय भी जौन बा बच्चेदानी बाहर आ जाला।
3: बच्चा देत के समय तो बच्चेदानी बाहर ना वाला ओकरे कुछ क्षण 10-15 मिनट या आधा घंटा के बाद बच्चेदानी बाहर आ जाला। एकर

0: मुख्य कारण जौन आपके बतौली हैं, या तो शरीर के बनावट ऐसा हो कि जौन हड्डी वो हो कि बार बार थोड़ा सा रास्ता उ फैलल हो जौन नाते बाहर निकलल करल हो, या इन्फेक्शन वगैरह से हो, या हार्मोन में प्रोजेस्टान के कमी हो। तो प्रोजेस्टान के कमी होला तो अनाते भी बार बार, तो बार बार जब आवे लगला तो रास्ता जौन बा फैल जाला, ऐसे फिर रोकब ओकरे लिए आवश्यक।
1: तो ऐसा समस्या अगर आवत बा अपने पशुओं में तो तुरंत में पंच भाई का उपाय करें?
0: हम अपने पशुपालक भाई से सबसे पहले निवेदन ये करब कि जब भी अगर बच्चेदानी बाहर आवता तो जवन भी उनके लगे एंटीसेप्टिक उपलब्ध हो के धो के या थोड़ा साफ कपड़ा से सुखा के ओके तो अंदर कह दें। और दूसरा उपाय ये है कि खूंटा के तरफ हमेशा थोड़ा सा नीचा रखें, जो बच्चेदानी वगैरह जौन ऊपर भाग बा वो आगे की तरफ भाग जा, पीछे की तरफ दबाव कम रहे।
1: मतलब जौन उनके पशुओं के बांधे के जगह बा खूंटा के तरफ थोड़ा खाल रखें।
0: हाँ, थोड़ा सा तरसिरवा जौने कहे ना हमारे ये गोरखपुर में तरसिरवाह रखें, जौने खूंटा और नीचे रहे और पीछे और ऊँच रहे।
1: जी अच्छा, ये समस्या सारा पशुओं में ही हो सकेला जो दुधारू पशु बांटने?
0: नहीं, सब में ना होला। आपके बता देने कि तीन चार कारण हैं कि एक तो जौन बा ओकर बनावट बच्चेदानी के, और वो दूसरा ये है कि हमें हार्मोन के प्रोजेस्टान के कमी
1: जी,
0: और तीसरा ये कारण है कि इन्फेक्शन वगैरह कहीं जौन बा संक्रमण हो गई वह नाते हो लो।
1: अच्छा, आप सब एक का जौन बा उपाय बताओ जला।
0: हमके उपाय जैसे हमें कई कारण, एक चीज़ और बा कि हार्मोन वगैरह जैसे अगर बार बार फेंकता तो वह समय हार्मोन प्रोजेस्टान का है कि गर्मी में जब पशु आवाला तो इस्ट्रोजन हार्मोन के ज़्यादा अधिकता होले।
1: जी
0: जब पशु जौन बा रुक जाला वह हमें का मैंने कॉन्सेप्शन मतलब ये कि दोनों के मादा और नर के जौन बा दोनों के जब स्पर्म और अंडा जौन बा मिल जाले तो ओकरे बाद जौन बा प्रोजेस्टान के मात्रा बढ़ जाले, ओवरी जौन बा वह हमें जौन बा एकदम कांस्ट मतलब वो जो है फिर फैलती नहीं, वो अपने के कांस्टेंट हो जाले।
1: जी
0: ऐसे तो हार्मोन के उपलब्धता, या अगर यह तरह के स्थित बा तो बियाइले के जैसे ये मान लें कि एक अनुमानतः बियाइले के 20 दिन या 25 दिन पहले से मार्केट में पोषक तत्व का एकर इतना मने भरमार आ गई बा कि जितने में जौने में जौन पोषक तत्व आपके ज्यादा हो और हार्मोन हो ओके प्रयोग करे चाहिए।
1: अच्छा, एक चीज़ हम आपसे ये जानना चाह कि मान लें कि कौन पशु में समस्या आ गई, जैसे ना आपकी कहलें कि जौन बा बनावट के हिसाब बनावट में अगर कुछ गड़बड़ी बा तो का एक सुधारल जा सकेला?
0: नहीं, बनावट में तो ना सुधारल जा सके। बनावट वाले स्थिति में जहाँ मतलब ओकर फैलर रास्ता हो के सुधार के कौन बहुत थोड़ा बहुत सुधार तो कैल जा सकाला, जैसे ताकत का मैंने प्रोटीन और जितने वो बाटे हैं सब कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस वगैरह दे के उसे कम कैल जा सकाला।
1: जी जी, आप शुरू शुरू में कह लें कि कुछ पैतृक कारण भी होला, ये कैसे प्रभावित करेला?
0: नहीं, पैतृक कारण वही मतलब है जो ये मतलब ओकर बनावट हो।
1: जी,
0: बनावट के आधार पे ही मान लीजिए पैतृक कारण में कि ओकर रास्ता पहले से ही फैलल बा या माह तारीख अगर फैलल रहा तो हमें कोनो ओके सुधार के गुंजाइश और ना।
1: अच्छा, मान ली कोनो पशु के बच्चेदानी बाहर आ रहा बा तो का जौन ओकर होखे वाला बच्चा बमन भी समस्या आ सके?
0: नहीं, कोनो दिक्कत नहीं।
1: अच्छा, तो डॉक्टरी हिसाब से जौन बा एकर का इलाज बा?
0: तो आपके बतौनी अगर यह तरह के स्थित हो पहले तो आप जौन बा पीछे ऊँच कह दी आगे खाल कह दी हार्मोन के इंजेक्शन आप ओकरे साथ ही जौन बा कैल्शियम फास्फोरस या मैंगनीज और जितना पोषक तत्व हैं ओकर जौन बा इंजेक्शन के रूप में या मुँह के द्वारा उपलब्ध कराई। और थोड़ा सा देख रेख ही करें हमारे पशुपालक भाई कि जैसे बाहर निकलल बा तीना कि उसे थोड़ा सा अपने देख रेख में रखें कि अगर मैंने फिर निकला था तो ओकर फिर जौन बा हो सके सुधार हो सके।
1: अच्छा, ऐसा पशुओं के खान पान पर भी कुछ अलग से ध्यान रखे के पड़ी?
0: जी, हमेशा एक नाते आपके कहली हैं कि कम से कम वैसे तो पशुपालक के जब मतलब बच्चा धारण कैले हो तो शरीर के मेंटेनेंस करे खातिर 1 किलो दाना
1: जी
0: तो वैसे दिया जाला सब पशु के, लेकिन अगर गर्भधारण कहके अंतिम अवस्था में आता 5 के ऊपर जाता तो फिर दाना के मात्रा और पोषक तत्व मिनरल मिक्सचर वगैरह और जितना बा ई आप बढ़ा के आप दें।
1: अच्छा, मतलब एक तरह से उनके जौन बा आहार होके के चाहिए।
0: होके के चाहिए।
1: अच्छा, ऐसा जौन पशु बा ओके पशुशाला में सज्जी पशुओं के साथ में बांधल जा सकेला क्योंकि अलगे कहीं बांधे के चाहिए?
0: अलग बांधे के चाहिए। पशुपालक भाई मैंने पशुशाला में अगर ज़्यादा पशु बांटे एक से अधिक हैं दो से तो उसको अलग बांधने से ही फायदा आपके हुई कि कम से कम वह समय अगर निकले तो दूसरे का रगड़ वगैरह से ज़्यादा बच्चेदानी जो है प्रभावित ना हो।
1: जी जी। अच्छा, एकर कौन ऐसा अवस्था है कि वो अवस्था में पशुओं में समस्या ज़्यादा हो सकेला?
0: अच्छा, अवस्था के मतलब ये कि जैसा उम्र बढ़ाला ब्यात बढ़े ले।
1: जी।
2: खेती किसानी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर ज्ञान प्रकाश और कृष्णचंद्र की बातचीत। विषय था पशुओं में बच्चेदानी बाहर आने की समस्या। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: afternoon. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome in a short while from now to boost economic cooperation. Prime Minister Modi and Giorgia Meloni outlined roadmap for India-Italy strategic partnership, highlight several economic initiatives in a joint article. DRDO completes trials of drone-launched unmanned precision-guided missile. Defence Minister terms it a strategic milestone. Supreme Court rejects petition challenging Centre's decision to undertake caste enumeration. Severe heatwave grips north and central India. Temperature breaches 44 degree mark at several places. And in IPL cricket, host Kolkata Knight Riders to take on Mumbai Indians at Eden Gardens. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome in a short while from now to discuss ways to boost India-Italy cooperation. With a focus on strengthening India-Italy relations, major pacts may be announced later in the day. Both leaders will exchange perspectives on a wide range of subjects. A series of programs will be held in Rome to mark the importance of bilateral relations between the two countries. PM Modi's visit will also focus specially on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, or IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025 to 2029 will also be reviewed during the meeting. In a social media post before the talks, Prime Minister Modi expressed hope that the talks will focus on strengthening India-Italy relations. Mr. Modi said that upon landing in Rome, he had the opportunity to meet Prime Minister Meloni over dinner, followed by a visit to the iconic Colosseum. He said both leaders exchanged perspectives on a wide range of subjects. The Prime Minister added that today's talks will continue the conversation on boosting India-Italy friendship. Prime Minister will be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. India-Italy ties have expanded with unprecedented momentum in recent years and have now reached a decisive stage. In a joint article written by Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni, the two leaders highlighted that relations between the two countries have evolved from a cordial friendship into a special strategic partnership rooted in the values of freedom, democracy, and a shared vision for the future. The leaders noted that at a time when the global order is undergoing profound changes, the India-Italy partnership is being guided by regular exchanges at the highest political and institutional levels. They said the partnership is acquiring a new dimension by combining the economic dynamism, societal creativity, and centuries-old civilizational wisdom of both nations. The two leaders said their cooperation reflects a shared understanding that prosperity and security in the 21st century will depend on the ability of nations to innovate, manage energy transitions, and strengthen strategic sovereignty. Defense Minister Rajnath Singh today held a meeting with his South Korean counterpart, Ahn Jung-bak, in Seoul. During the meeting, they discussed ways to further deepen India-South Korea defense, defense industry, and strategic cooperation with a shared commitment towards regional peace, stability, and technological collaboration. In a social media post, Mr. Singh said, "It was a highly productive meeting as India and South Korea exchanged agreements on promoting defense cyber cooperation." The MOU was exchanged between the National Defense College of India, the Korea National Defense University, and the UN Peacekeeping Corporation. The minister said that he is looking forward to strengthening the special strategic partnership between the two nations. India has taken another important step towards strengthening its indigenous defense capabilities under the Atmanirbhar Bharat initiative. The Defense Research and Development Organization, DRDO, has successfully completed the final development trials of the Unmanned Aerial Vehicle Launched Precision-Guided Missile, V-3, marking a significant achievement for the country's defense sector. Defense Minister Rajnath Singh has complimented DRDO and termed it a strategic milestone achieved towards Atmanirbharta in defense. More from our correspondent.
1: The trials were conducted in both air-to-ground and air-to-air modes at the DRDO test range near Kurnool in Andhra Pradesh. During the tests, the missile system was operated through an advanced integrated ground control system designed to automate launch and operational readiness. The trials successfully demonstrated the missile's precision strike capability, reliability and effectiveness in varied combat scenarios. The missile was developed by Research Center Imarat Hyderabad in collaboration with other DRDO laboratories. Developed entirely within the country, the project highlights the growing strength of India's domestic defense manufacturing ecosystem with the participation of MSMEs and private industries under the Atmanirbhar Bharat initiative. For production, DRDO has partnered with Bharat Dynamics Limited and Adani Defense Systems and Technologies Limited. The missile system was integrated on UAVs developed by New Space Research and Technologies Bengaluru for the trial. The successful completion of the test has cleared the way for serial production of the missile system, further strengthening India's indigenous defense capabilities. Allu Murali, Akashvani News, Vijayawada.
0: The Supreme Court today dismissed a petition challenging the center's decision to undertake caste enumeration as part of the upcoming census, saying the issue falls within the policy domain of the government. A bench headed by Chief Justice Suryakant observed that the government needs to know the number of people belonging to backward classes to frame welfare measures for them. The bench said there was nothing wrong in collecting such data and declined to interfere in the matter. The investigations into the recent incidents of fire reported in trains have revealed the possible involvement of anti-social elements in several cases. Sources said that the railway has taken these incidents seriously and the Railway Protection Force is carrying out intensive investigations into the matter. In an incident near Amarpura station in Rajasthan, an attempt was made by an unidentified individual to set fire to linen materials inside a coach, which led to the outbreak of fire. In a separate case in Howrah, a piece of cloth soaked in petrol was recovered from the bathroom of a train that caught fire. Similarly, in Kota, Rajasthan, the initial flames in the Rajdhani Express were also reported to have originated from the bathroom area. In Sasaram, Bihar, the incident took place in an empty train and coach with no power generator present. Union Consumer Affairs Minister Prahlad Joshi has said that the government is dedicated to reducing the regulatory burdens by enhancing marketplace fairness through smart regulation and responsive governance. Addressing a function virtually on World Metrology Day 2026, Mr. Joshi stressed the need to make legal metrology a cornerstone of consumer confidence and industry accuracy that strengthens the quality of the standard. He said Prime Minister Narendra Modi has envisioned that the quality of Indian products must meet the global standards and be environmentally sustainable. This is Akashwari giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneair.gov.in and download the News on AIR app. The India Meteorological Department, or IMD, has forecast heat wave to severe heat wave conditions over northwest and central India during the week. According to IMD, heat wave conditions are likely to prevail over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Odisha, Chhattisgarh, Rajasthan, Telangana and Uttarakhand for the next 4 days. Meanwhile, Assam, Meghalaya, Keralam, Mahe, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Andaman and Nicobar Islands are expected to receive heavy rainfall until tomorrow. The Met Department has predicted thunderstorms and lightning over Bihar, Himachal Pradesh, interior Karnataka, Jharkhand, Lakshadweep and coastal Karnataka for the next 2 days. Most districts of Rajasthan are currently in the grip of intense heat and heat wave conditions. The Meteorological Center has issued an orange alert for heat wave conditions in 2 districts of the state today, while a yellow alert has been issued for 14 districts. Our correspondent reports that the scorching sun has affected normal life.
2: Severe heat and hot winds are troubling people across the state. Along with the days, the nights are also extremely warm. In most districts, day temperatures are being recorded between 42 and 46 degrees Celsius, while night temperatures are running from 26 to 31 degrees Celsius. The Met Center has predicted that the heat wave conditions are likely to continue for next 3 days. Meanwhile, Health Minister Gajendra Singh Khimsar has directed directed to ensure all necessary arrangements in hospitals for heat wave management. Instructions have been issued to reserve separate beds for heat stroke patients, ensure the availability of essential medicines, and arrange shared and drinking water facilities in hospitals. Jitendra Dwivedi, Akashvani News, Jaipur.
0: Punjab and Haryana are reeling under severe heat wave conditions with maximum temperatures ranging between 40 and 47 degrees Celsius across both states. The Meteorological Department has already issued an orange alert for the region. A report.
3: Director of the Chandigarh-based Met Department, Surinder Pal, told Akashvani that the weather will remain dry and temperatures would increase in the coming 3-4 days. Western districts in both the states would experience more heat wave conditions. In Punjab, these districts will be Amritsar, Firozpur, Tarn Taran, Mansa, Sangrur, Bhatinda, and Muktsar. And in Haryana, Hisar, Rohtak, Jhajjar, Bhiwani, Gurugram, and Faridabad would feel the maximum heat. In the last 24 hours, Faridkot in Punjab sizzled at 47.3 degrees Celsius. And Rohtak felt the heat at 46.9 degrees Celsius in Haryana. Rajesh Bali, Akashvani News, Jalandhar.
0: In Bangladesh, an assistant security protocol officer at the Assistant High Commission of India in Chattogram has been found dead at the mission premises in the Kulshi area. Police said the incident occurred yesterday morning. The deceased has been identified as a 35-year-old Narinder, a resident of Haryana in India, who was serving at the mission. The Assistant High Commission of India is in touch with the family to arrange the repatriation of the mortal remains. Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin held talks in Beijing today, focusing on bilateral relations and key global issues, including Iran, the Ukraine conflict, and the international trade. China's foreign ministry said the talks would deepen the strategic partnership between Beijing and Moscow and enhance coordination through forums such as the United Nations, SCO, and BRICS. Both nations also highlighted the growing cooperation in trade, energy and security, with bilateral trade surpassing $200 billion. The meeting came shortly after U.S. President Donald Trump visited China for discussions with Xi on regional and global developments. U.S. President Donald Trump will attend the G7 summit in France next month amid growing tensions between Washington and several European allies over the Iran conflict. According to a White House official, the summit to be held from June 15 to 17 in Avion-les-Bains in southeastern France will focus on issues including artificial intelligence, trade, critical minerals, immigration and global security. In Congo, the death toll due to Ebola outbreak has risen to 136. Health Minister Roger Kamba informed this amid the spread of deadly virus that has gripped the eastern part of the country. According to Congolese health authorities, the country has recorded 543 suspected cases and 32 confirmed infections, while neighboring Uganda has reported 2 confirmed cases. On to sports. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders will take on Mumbai Indians at the iconic Eden Gardens in Kolkata. The match will begin at 7:30 p.m. Yesterday, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in a high-scoring match in Jaipur last night, keeping their playoff hopes alive. Rajasthan Royals overhauled the massive target of 221 runs with 5 balls to spare. Benchmark domestic equity indices were trading marginally lower in the afternoon session. The Sensex dropped 101 points to 75,100, while the Nifty dipped 24 points to 23,594 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome in a short while from now to boost economic cooperation. Prime Minister Modi and Giorgia Meloni outlined roadmap for India-Italy strategic partnership, highlight several economic initiatives in a joint article. DRDO completes trials of drone-launched unmanned precision-guided missile. Defence Minister terms it a strategic milestone. Supreme Court rejects petition challenging Centre's decision to undertake caste enumeration. Severe heatwave grips north and central India. Temperature breaches 44 degree mark at several places. And in IPL cricket, hosts Kolkata Knight Riders to take on Mumbai Indians at Eden Gardens. And with that, we end the midday news.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम MP3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। यह समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल यूएलपीजीएम V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
6: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास डीआरडीओ की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूएलपीजीएम V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तर कन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
7: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य है अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के दो जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
8: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
4: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
3: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
4: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप

से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4 बज रहे हैं। हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे हम अपने सायंकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। साथ ही विविध भारती का कार्यक्रम जारी रहेगा। इसी के साथ हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में श्रोताओं, आज लीजिए सुनिए जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर, जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी, जिसे पंकज उधास ने गाया, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद, 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
1: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
2: जो वो बहुत प्यारा जमाना था, और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया। और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी, खुश हुआ जी।
1: क्या बात है सर, बातें हो रही हैं जयपुर के जमाने की, और आपने बताया कि न केवल आपने नाटक किए बल्कि वहां एक कंपोजिशन वाला मामला भी लगातार चलता रहा और अलग अलग कार्यक्रमों की अपनी योजना भी चलती रही, तो एक तरह से आपका वो रचनात्मक उत्कर्ष का पूरा दौर था। जयपुर के बाद आप यात्रा जीवन की आपको कहां ले गई?
2: जयपुर के बाद मेरा ट्रांसफर जो है 5 साल पूरे हो जाने के बाद
1: जी
2: अल्मोड़ा हुआ।
1: अरे गजब, पहाड़ों पर।
2: पहाड़ों पर। और मेरे जीवन का वो सबसे कष्टप्रद, मतलब यूं नहीं
1: जी,
2: मतलब मुझे अल्मोड़ा स्टेशन शुरू होने वाला था उस वक्त।
1: अच्छा।
2: तब तक शुरू नहीं हुआ था
1: जी।
2: जो शुरुआती स्टाफ भेजा जाता है ना, तो उनमें से मैं, प्रोग्राम की तरफ से मैं था, फिर इंजीनियर्स थे, तो सेंटर तब

0: शुरू नहीं हुआ था, हमको जाना था तो। लेकिन मैं मैदान पे रह कर इतना आदी था, और होमसिक तो मैंने बताया था शुरू से
1: जी
0: था,
1: जी जी
0: तो वो पहाड़ों की जिंदगी मेरे लिए बहुत कठिन थी मतलब,
1: हाँ
0: और परिवार भी था, बच्चे बच्ची छोटी थी तब। तो अब लगता है कि यार मूर्खता की, तुम जल्दी चले आए वहां से। अच्छा था
1: जी
0: वो एक अलग अनुभव था।
1: जी
0: तो एक तो यह कि स्टेशन शुरू नहीं हुआ था, काम भी उतना नहीं था, आपको सिर्फ जाना है और प्लानिंग करनी है और कब होगा ये सब तय होना है सारा कुछ। लेकिन वो वहां चलते चले जाओ, चलते चले जाओ,
1: हाँ
0: उतरते जाओ, चढ़ते जाओ, तो ये सब था। और जो आदमी पहली बार गया हो
1: हाँ
0: तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, जो
1: बहुत
0: घूमने
1: मुश्किल
0: जाओ
1: है
0: तो अलग बात है,
1: जी।
0: लेकिन आपको रहना हो, और जो कभी रहा ना हो, कभी
1: हाँ
0: रहा ना हो,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: वो उसके लिए हो, तो वो कठिन दौर था। लेकिन वो गुजरा, और मैं 1.5 साल के बाद ही वापस आ गया वहां से, और उसके बाद फिर बॉम्बे आया।
1: अच्छा,
0: हाँ, 86 में।
1: क्या बात है। तो ये तो पंत जी का शहर था, पंत जी का इलाका था,
0: हाँ।
1: तो वो तमाम चीजें
0: और
1: वो
0: वो भी
1: सब।
0: सब भी देखा हमने, वो पंत जी, अज्ञेय जी वहां पे
1: हाँ
0: रहे, और रविशंकर जी का वहां पे वो था, है ना।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: यस,
0: ये सब
1: उदय
0: भी,
1: शंकर जी का
0: उदय
1: था
0: शंकर, सॉरी, उदय
1: जी
0: शंकर जी का, तो वो सब भी देखा, घूमा फिरा भी, सब अच्छा भी लगा वो सब,
1: जी
0: कि ये सब कुछ। लेकिन मैं तो हैरान होता था कि यहाँ ये लोग कैसे
1: रहते
0: रहेंगे। उस वक्त
1: कैसे।
0: वाकई हैरान होता था मैं, कि
1: जी
0: जो लगता था कि जिंदगी तो मैदान में ही है, पहाड़ों में कैसे।
1: बिल्कुल,
0: तो ये था।
1: मुंबई 80 के दशक की मुंबई बहुत ही अलग तरह का मामला था। आप जैसे जयपुर शहर से आ रहे थे, क्योंकि वहां के पले बढ़े हैं, पैदाइश नागपुर के, तो मुंबई आपके लिए एक बहुत बड़ा दायरा था, बहुत बड़ा क्षितिज था। पहला अनुभव क्या था मुंबई का
0: नहीं, पहला अनुभव तो यही था कि एक तो ये सपनों की नगरी थी,
1: जी?
0: फिल्मों में देखा ही देखा था और सब कुछ था। आज तो खैर हालत ही खराब है, उस वक्त ये 86 में जब हम आए आए थे तो अच्छी खासी भीड़ तो मुंबई में हमेशा रही है,
1: बिल्कुल
0: ये
1: बिल्कुल
0: भीड़ भाड़ वाला शहर है, तो हर सपना देखने वाला यहाँ आता है और काम ढूंढने वाला यहाँ आता है। तो फिर यहाँ आने के बाद वो बसों का सफर, लोकल ट्रेनों का सफर, एक
1: जी।
0: अलग ही दुनिया थी। लेकिन था कि कुछ लगा था कि बॉम्बे में कुछ होगा और अच्छा लगेगा, और वो धीरे धीरे जिंदगी ढलती चली गई उस हिसाब से। हम शुरू में एंटॉपिल में रहे, गवर्नमेंट कॉलोनी वहाँ पे थे, तो 11 11 महीने का जो किराया होता है उस
1: हाँ
0: पर, वो उस पैटर्न पे रहे, और अलॉट होने का तो सॉल्यूट था, हम तो फ्रेश थे एकदम,
1: बिल्कुल,
0: है
1: और तब तो
0: ना।
1: लंबी लाइनें
0: हाँ,
1: हुआ
0: वो
1: करती
0: लंबी
1: थी
0: लाइनिंग हुआ करती थी। तो जीजेस कॉलोनी जो एंटॉपिल की थी वहाँ रहे, और फिर वहाँ से बस पकड़ना, फिर इधर आना, एंटॉपिल से किंग सर्कल आना, वहां से पैदल,
1: जी।
0: फिर ट्रेन पकड़ना, फिर चर्च गेट, तो ये सब सिलसिला चलता रहा। लेकिन थोड़ा उस वक्त शुरुआत में लगा, लेकिन फिर औरों की तरह से फिर हमको भी वो जिस दिशा में उतरना उस दिशा में खड़े होने की आदत हो गई
1: हाँ,
0: ट्रेन
1: मुंबई शहर आपको अपने हिसाब से
0: में।
1: ढाल लेता
0: तो फिर
1: है
0: वो लोग अपने आप वो आपको उतार
1: जी।
0: देते हैं। तो ट्रेन में ये हुआ कि उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाओ,
1: जी,
0: उतार देंगे लोग,
1: लोग उतार
0: तो ये
1: देंगे
0: उतार, तो
1: जी।
0: ये।
1: तो मुंबई शहर में एक बड़ा आकाश आपको मिला, और जाहिर है कि उस समय तक तो कवि सम्मेलन भी हो रहे थे, रेडियो भी चल रहा था, तो जिंदगी किस तरह से बदली और यहां लिखने पढ़ने का दौर किस तरह से आगे बढ़ा?
0: यहां जो जिंदगी बदली वो मेरी उस वक्त गजल गायकी पीक
1: चरम
0: पर
1: पर
0: थी,
1: थी
0: चरम
1: जी
0: पर थी। फिल्म संगीत जितनी पॉपुलर थी, मतलब
1: जी
0: जगजीत सिंह, पंकज दास, मेहंदी हसन, गुलाम अली, ये सब सुपर हीरो हुआ करते थे, मतलब अनूप जलोटा, इनके कैसेट जो है घरों घरों में चलते थे, बजाए जाते थे, मोहल्लों में मतलब चलते थे, शादियों फंक्शनों में भी ये उस वक्त पीछे
1: बजाया करते थे
0: बजाया
1: उसको
0: करते थे लोग, तो इतनी पॉपुलर, नॉन फिल्म म्यूजिक कहना चाहिए। तो वो दौर था जिस वक्त मैं बॉम्बे में एंटर हुआ था, और नेचुरली जो गजल का शायर होगा उसकी पहली ख्वाहिश होगी कि जगजीत सिंह तक किस तरह से पहुंचो, और
1: बिल्कुल।
0: वो उन तक मेरे शब्द भी पहुंचे। तो यहाँ आने के बाद तो ये सिलसिला चलता रहा, और लेकिन जगजीत सिंह साहब से पहले मेरी भूपेंद्र जी से बात हुई।
1: अच्छा, अरे वाह वाह, मुझे ये पता है, क्योंकि अब हमने साथ में काम किया है और मैं आपके करीब भी रहा हूं, कि भूपिंदर सिंह की आवाज से आपको बेपनाह प्यार रहा है,
0: बहुत प्यार रहा,
1: बल्कि
0: बहुत
1: हमने उनको
0: प्यार।
1: बुलाने की बहुत भरसक कोशिश की थी। आपकी इच्छा ये थी कि वो इंटरव्यू मैं लूं,
0: जी,
1: तब
0: सही
1: मैं था
0: सही।
1: नहीं शहर में।
0: तो भूपी जी मतलब पहले थे जिन्होंने मेरी एल्बम में जो कोई चीज, और जैसे मैं जयपुर में आकाशवाणी में, युवाणी में जब अपनी आवाज पहली बार मैंने रिकॉर्ड की,
1: जी
0: तो घर में जिस ढंग से मैंने खुशी का इजहार किया था, और अपने आप की आवाज को आकाशवाणी में सुनकर जो
1: जी
0: खुशी हुई थी, तो वो खुशी मुझे यहाँ पे भूपेंद्र सिंह की आवाज में अपनी गजल सुन के हुई थी।
1: क्या बात है,
0: तो
1: क्या
0: वो किसी गजल सिंगर ने, और मेरे फेवरेट गजल सिंगर ने या गायक ने जो इतना बड़ा सिंगर है, तो ये हुआ। नहीं उसके बाद फिर जगजीत जी से बात हुई, तो मैं मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा आ जाओ। वो
1: पेडर रोड,
0: हाँ, पुष्प मिलन 25 उनका एड्रेस था,
1: जी
0: तो मैं गया। और उस समय का वक्त था, तो मैं बताना चाहूँगा अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को, कि बड़ा आदमी ऐसे ही नहीं बनता है।
1: जी
0: जगजीत सिंह साहब रोज सुबह उनका वो रियाज का वक्त होता था, इतने बड़े आर्टिस्ट जो थे वो ऐसे ही नहीं थे,
1: जी
0: रोज रियाज करना उनका काम था जब बॉम्बे में होते थे।
1: जी
0: तो वो तानपुरा चल रहा है और वो सब कुछ, और मिलने जुलने वाले भी अगर आते हैं तो बीच में आते हैं और बातचीत होती है, और वो उनका सिलसिला फिर रियाज पे। तो ये
1: जी
0: तो मैं पहली बार गया तो वो तानपुरा चल ही रहा था, वो अपने बैठे हुए थे और फिर उन्होंने वो गजल देखी। मेरी खुशकिस्मती कि वरना अक्सर होता है कि इतने बड़े लोग, आपका मिलना ही बड़ी बात थी उनसे,
1: जी
0: हाँ, वो उनका मिल जाना। फिर उन्होंने कहा कि गजल देखे, तो सरसरी निगाह से जब उन्होंने देखी, तो ये मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने पहली ही उसमें कहा ये मैं कर रहा हूँ।
1: वाह वाह
0: वरना अक्सर
1: वाह,
0: होता है कि रख के जाओ, देखता हूँ, मैं करता हूँ, सोचता हूँ, बताता
1: जी
0: हूँ,
1: जी
0: है ना।
1: जी जी
0: लेकिन उस वक्त उन्होंने उसी वक्त कह दिया ये मैं कर रहा हूँ।
1: वो कौन सी गजल थी? घर से निकले थे,
0: नहीं, ये जो जिंदगी की
1: ये
0: किताब
1: जो
0: है,
1: जिंदगी की किताब है। वाह वाह वाह
0: तो ये वो
1: वाह।
0: पहली गजल थी जो जगजीत जी ने गाई।
1: और भूपी जी ने क्या गाया था?
0: वो हैरानी होगी कि उस वक्त पंकज जी वगैरह सब ये शराब और हल्की फुल्की गजलों का दौर था। भूपी जी ने कहा कि यार मुझे गजलें बहुत हैं, मुझे हल्की फुल्की गजल चाहिए।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: हाँ
0: तो मैंने पहली गजल जो डिमांड पे लिखी, डिमांड पे,
1: हाँ हाँ
0: वो ये गजल थी, और जिसको मैं न कहीं पढ़ाता हूँ न सुनाता हूँ,
1: जी
0: और वो गजल जो मैंने कभी आज तक छुई नहीं,
1: अच्छा,
0: वो गजल शराब पड़ती
1: ओ हो,
0: तो वो गजल, लेकिन उनको पसंद आई, उन्होंने गाई और चलिए।
1: जी। ये जो जिंदगी की किताब है, ये भी आपकी पहचान के साथ पूरी तरह से जुड़ गई है, और ये कहना चाहिए कि एक तरह से आपकी प्रतिनिधि गजल है। तो जगजीत साहब ने तो सुनाई, वो भी हम सुनेंगे, लेकिन हम आपसे भी सुनना चाहते हैं इसको।
0: ये गजल है जिसकी धुन मैंने खुद ने नहीं बनाई,
1: जी
0: तो मैं जगजीत जी की आवाज में जो धुन है, कंपोज है, तो
1: वही
0: उसको,
1: आप
0: हाँ, वो पढ़ देता हूँ।
1: जरूर जरूर।

0: क्या बात है। जगजीत जी ने जब इसे गाया और ये कैसेट रिलीज हुआ तो जाहिर है कि एक बहुत ही ख्वाब पूरा होने जैसी बात
1: बिल्कुल
0: थी
1: सही,
0: और
1: बिल्कुल
0: ये
1: सही।
0: बहुत लोकप्रिय हुआ। आपके जहन में क्या चल रहा था?
1: नहीं, मेरे लिए तो एक सपना सच होना जैसा तो वही बात है। और फिर जिस ढंग से इन्होंने गाया,
0: जी
1: और
0: जी
1: ये कंसर्ट्स में भी अक्सर गाया करते थे,
0: खूब
1: और सोशल मीडिया तो अब आया है, लेकिन कभी कभी मैं देख लेता हूँ और लोग बताते हैं इस गजल की जो लिसनिंग हुई है, जो व्यूअरशिप है, और वो नहीं है कि पूछ, मतलब मैं तो खूब है।
0: बिल्कुल
1: और उसमें जो
0: बिल्कुल
1: कमेंट्स हैं लोगों के, ये गजल वो गजल, और ये जगजीत जी ने बहुत अच्छी गाई है, और ये वो शायरी बहुत अच्छी है, सब कुछ है, और पूरे दुनिया से, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, यहाँ यहाँ से कमेंट्स हैं उस गजल पे। तो ये गजल जिसने मुझे दुनिया भर में पहुंचा दिया, यूं कह लीजिए मुझे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपको फोन करें तो आपकी
1: जी
0: रिंगटोन में भी ये गजल
1: जी जी
0: बजती
1: जी
0: है।
1: जी
0: जगजीत जी ने गा लिया, भूपी जी ने गा लिया, पंकज जी ने भी उस दौर में गा लिया था
1: पंकज जी उसके बाद
0: जी।
1: ये गजल जगजीत जी ने गाई, उससे पहले पंकज जी, हाँ नहीं, पंकज जी पहले ये गजल थी, वो जो यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होना, तो पंकज जी से भी जब मिला तो खुश हुए। और ये गजल पहली नजर में सबको ही अलग लग जाती है कि ये होने से डरता है ना। तो इस गजल से जुड़ा एक और भी किस्सा कि ये गजल जब आई तो मतलब उस पूरे एल्बम में ये अलग सी गजल थी, लोगों ने बहुत पसंद की सब
0: नबील
1: जगह।
0: था,
1: हाँ,
0: नबील था
1: नबील, नबील,
0: जी।
1: तो इसकी खूब लोगों ने प्रशंसा की, पसंद किया, सब कुछ किया। तो इससे जुड़े दो किस्से हैं। तो
0: जी
1: एक तो ये कि उन दिनों दूरदर्शन पर भी, जब ये पूरा कमर्शियल नहीं हुआ था, तो बड़ा अच्छा सुबह कार्यक्रम आता था वो गजल का, जिसमें सुरेश वाडकर, हरिहरन, पंकज जी, कभी कभी जगजीत जी, छाया जी, बहुत अच्छा नाम था, दूरदर्शन पर आता था गजल का, आरोही। हाँ,
0: आरोही
1: तो ये गजल पंकज जी ने गाई उसमें, आरोही में।
0: जी
1: अच्छा, उन दिनों पता नहीं क्यों या नहीं हुआ, तो इसमें राइटर का नाम, शायर का नाम नहीं था,
0: अरे
1: नीचे
0: बाप रे।
1: नहीं था, तो उन्होंने गा दी गजल। तो ये गजल घर घर में सुनी, मतलब उस वक्त दूरदर्शन ही था।
0: तो आपके संपर्क से गाई या उन्हें यह गजल कहीं मिली?
1: नहीं, ये तो रिकॉर्ड होने के बाद की बात है,
0: अच्छा है, ओके।
1: एल्बम आने के बाद में, उसके बाद
0: आरोही
1: इन दो
0: में
1: घंटे
0: गाया।
1: रहा, तो ये एल्बम तो हो गया था, लोग पसंद भी कर चुके सब कुछ, तो ये दूरदर्शन पे ये गजल दिखाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी। और उस वक्त दूरदर्शन ही था जिसमें लोग अच्छे सीरियल देखते थे, अच्छे प्रोग्राम देखते थे, आरोही बहुत पॉपुलर था, तो ये चल रहा था और लोग सुन रहे। तो मेरा एक जयपुर का दोस्त है, तो अपने परिवार में बैठ के जैसे सुनता है, तो ये जब गजल आई तो उसने कहा, यार ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं।
0: आपके अपने दोस्त ने
1: हाँ,
0: ये बात
1: ये मेरे
0: कही।
1: उस, और तब तक हमारा संपर्क भी नहीं था, वो है बॉम्बे में वो, लेकिन हम
0: जी
1: बहुत अरसे से नहीं मिले थे। तो
0: जी जी
1: ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं, है ना।
0: ओहो
1: तो वो कल्पना नहीं कर सकता था कि ये हिंदुस्तान का शायर है और
0: जी
1: ये यही की गजल है। तो ये उसने मुझे बाद में बताया जब हम मिले और सब कुछ। तो उसका नाम है अजय कार्तिक, जो ये जो है जिंदगी का राइटर था,
0: हाँ,
1: सीरियल है
0: बिल्कुल
1: ना,
0: बिल्कुल,
1: और
0: बड़ा नाम है अजय
1: हाँ,
0: कार्तिक जी।
1: तो वो तो जब बाद में मिले तो उसने कहा कि ये यार ये गजल तो हम सुन रहे थे और हमने, मेरा ये कमेंट था।
0: जी
1: अच्छा, दूसरी बात ये कि ये गजल पंकज दास साहब ने सूरत, उनमें एक शेख अबू आदम आदम वाला को, एक शायर रहे हैं गुजराती के, बड़े
0: जी
1: शायर रहे हैं, तो उनकी पुण्यतिथि पर सूरत में कंसर्ट था। हाँ, तो वो पंकज जी वहाँ पे, उन्होंने कंसर्ट किया वहाँ, गाने गए। मजरू सुल्तानपुरी वहाँ पे चीफ गेस्ट थे, तो मजरू साहब बैठे थे सामने, तो पंकज जी ने ये गजल सुनाई, तो फिर ये जब शेर सुनाया तो फिर मजरू साहब ऑडियंस में बोलते हैं, हाँ पंकज फिर सुनाओ। तो जब जो कहते हैं ना, फिर सुनाओ फिर सुनाओ, तो शायद मुशायरा हो या म्यूजिक का हो, तो ये लगता है कुछ गलत तो नहीं हो गया,
0: हाँ बिल्कुल
1: कुछ तलफ़ुज़ गलत हो गया, या कुछ मिसरा गलत हो गया, या कुछ मैंने कुछ कमजारा तो नहीं कर बोल दिया या सुना दिया। हाँ, ये सुर का इधर उधर नहीं, फिर सुनाओ, फिर एक बार फिर, उन्होंने 3 बार ये सुना। और हाँ, वाह, तो ये होगा। फिर जब ग्रीन रूम में आए बजरू साहब, उनसे मिले, तो बोले कि ये किसकी गजल थी ये, तो उन्होंने बताया कि ये उस वक्त मैं नौजवान हुआ करता था,
0: जी।
1: तो नौजवान शायर बॉम्बे के राजेश रेड्डी, तो ये बहुत अच्छी गजल है, अलग गजल है, उसको मेरी तरफ से मुबारकबाद देना।
0: वाह वाह वाह
1: तो ये
0: वाह,
1: मजरूह
0: मजरू जैसे
1: सुल्तानपुरी साहब का
0: बड़े
1: आशीर्वाद था,
0: शायर की
1: है
0: बात है
1: ना।
0: ये,
1: तो इस गजल से जुड़ी एक दो बातें हैं, तो ये मैं शेयर करना चाह रहा
0: क्या
1: था।
0: बात है। पंकज जी की आवाज में ये गजल सुनते हैं हम।
1: जी।

0: मुंबई के अपने सफर के बारे में कुछ और बातें बताइए।
1: मुंबई में फिर सफर तो मेरा ज्यादातर तो शायरी का ही रहा
0: जी,
1: और जगजीत जी वाला मैं सिलसिला एक और बहुत महत्वपूर्ण इंसिडेंट है वो सुनाता हूँ। उससे पहले एक मेरी शायरी और मुशायरों में कैसी वो एक सिलसिला शुरू हुआ, बड़ा सिलसिला जो है
0: जी,
1: तो नेहरू सेंटर का एक ऑल इंडिया मुशायरा होता है सालाना।
0: बिल्कुल, बहुत ही मशहूर
1: मशहूर
0: जी।
1: आज तो वो दौर नहीं है लेकिन एक जमाना था, मतलब उसके

0: और सुनने वालों में दिलीप कुमार,
1: बाप रे
0: अजीत एक्टर
1: जी,
0: और भी और कई तो फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोग थे। तो वो दौर था जब बिहार जो नेहरू सेंटर
1: अलग ही होता था,
0: अलग ही हुआ करता था
1: जी,
0: हॉल खचाखच भरा हुआ। तो और मेरा पहला बड़ा मुशायरा मुंबई का,
1: क्या बात है,
0: मेरा पहला मुशायरा, तो बड़ा मुशायरा तो निदा साहब ने मुझे उसकी ओपनिंग के लिए, बल्कि यूं कह लीजिए,
1: अरे बाप
0: तो
1: रे,
0: शुरुआत के एक दो इशारों में।
1: और निदा साहब की अपनी अदा थी, वो बहुत रेफरेंसेस के साथ बुलाया करते थे।
0: तो उन्होंने मुझे माइक पर बुलाया कि मेरा पहला मुशायरा और ये ऑडियंस, ये लोग
1: जी
0: है ना, भरपूर ऑडियंस, पूरा हॉल। तो मैंने गजल पढ़ी, तो वो गजल जब पढ़ता गया तो सब हर शेर को दोबारा पढ़ना पड़ा, ये सब कुछ हुआ। और जब मैं पढ़ के आया हूँ तो मुमताज राशिद और जफर गोरखपुरी,
1: हाँ हाँ
0: तो उस वक्त दाद देने का एक ये भी होता था, ये बड़े लोग जो दाद देते थे, जफर गोरखपुरी साहब मेरे बराबर में बैठे थे, मैं होता है। तो मतलब अगर किसी को बहुत अच्छा लगा, ये प्यार हुआ ना, तो मुशायरा तो हो गया।
1: अरे हाँ, अब
0: मतलब
1: तो
0: ये
1: शुरुआत कर रहे थे जबकि,
0: हाँ,
1: जी
0: मुशायरा तो हो गया,
1: अरे बाप
0: मतलब
1: रे, बहुत बड़ी बात है
0: ये बड़ी बात थी।
1: जी
0: तो मैंने कहा था कि उधर नीरज जी का वो हार पहनाना, माला पहनाना,
1: जी
0: तो ये तो हो गया, मुशायरा तो हो गया। और ये ऐसे सुने, फिर अजीत साहब ने मुझे हैदराबाद बुलाया
1: गजब
0: अपने घर पर,
1: जी,
0: उनसे वहां से मिलना हुआ, सुना सुनाना हुआ। तो ये हुआ, ये गजल मैं सुन जो बता रहा हूं जिसके बारे में,
1: जी
0: ये गजल जगजीत सिंह साहब को बहुत पसंद थी,
1: हाँ हाँ
0: और जगजीत सिंह साहब ने इसको धुन भी बनाई, रिकॉर्ड भी किया, उनका
1: हाँ
0: आखिरी एल्बम था ये।
1: ओहो,
0: और वो एल्बम रिलीज होने से पहले वो नहीं रहे
1: चले गए
0: दुनिया में,
1: जी
0: वो
1: जी
0: चले गए।
1: जी
0: वो एल्बम रिलीज नहीं हुआ, चित्रा जी पता नहीं कब करेंगे नहीं करेंगे।
1: जी
0: तो ये गजल उन्होंने गाई भी और सुनाई भी। लेकिन इस गजल से मैं एक और जो जगजीत जी के साथ जुड़ा, मैं बता रहा हूँ कि मेरी दूसरी किताब पहली उड़ान
1: जी
0: और दूसरी आसमान से आगे।
1: बिल्कुल
0: तो जब आसमान से आगे की किताब के लोकार्पण की बात हुई, और मैं चाह रहा था, तो मैं उनको अपने चाह रहा था कि जगजीत जी इसका इसका वो करें, हाँ, तो मैं
1: बिल्कुल
0: उनको इनवाइट करने गया और बोला कि मैं चाह रहा हूँ कि आप करें, तो इसके लिए अलग से प्रोग्राम क्यों करते हो, मेरा कंसर्ट है केयर का जो है नेहरू सेंटर में, तो उसमें कर देते हैं, तुम उसको किताब लेके आ जाना, फिर अपन कर लेंगे। तो मैं चला गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो हुआ वो ऐसा होगा।
1: जी जी जी
0: तो किताब लेके रैपर वैपर सबके रिबन में सब लेके भी चला गया। तो मैं मिला वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ऑडियंस में बैठो, मैं तुम्हें बुलाऊंगा और वहाँ उसको कर देंगे उसमें सब ठीक है। तो मैं बैठ गया, फिर उन्होंने वो गजल गाई, दूसरी गजल, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। तो जगजीत जी ने ये गजल गाई, और उसके बाद श्रोताओं से कहा कि ये गजल जो मैंने अभी गाई, ये हमारे प्यारे शायर राजेश रेड्डी की लिखी हुई है, और आज इत्तेफाक है कि वो हमारे ऑडियंस में मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो ऊपर आए, और आज उनकी किताब का भी वो है, वो लेके आए किताब। तो फिर मैं ऊपर गया और वो नमस्ते और तक क्लैपिंग वगैरह सब कुछ हुआ। तो जगजीत जी ने वो उसका
1: रिबन
0: कर दिया,
1: खोला,
0: रिबन खोला, ऑडियंस के सामने ये सब हो गया, और तालियां वालियाँ सब हो गई, और मैं स्टेज से उतरने लगा।
1: जी
0: तो बोले नहीं राजेश रुक गए, तो मैं आया, तो उनका कंसर्ट है, देखिए स्टेज है
1: हाँ
0: पूरा,
1: बाकायदा, और
0: हाँ
1: पूरा हॉल
0: पूरा
1: भरा हुआ
0: हॉल
1: है,
0: है, म्यूजिक का पूरा सेटिंग है, वो गा रहे हैं, वो बीच में उन्होंने बुलाया हुआ है। फिर वो उन्होंने कहा कि भाई एक माइक इधर लगाइए,
1: अरे बाप
0: स्टैंडिंग
1: रे,
0: माइक दीजिए, हाँ, तो ये इसकी म्यूजिक कोई उम्मीद नहीं, कल्पना नहीं, और तो वो दिया उन्होंने कि, तो अब वो गजल पढ़िए, जाने कितनी उड़ान बाकी है।
1: अरे बाप रे,
0: वो उससे पहले महफिलों में गा चुके थे, मतलब
1: जी
0: उनको
1: जी
0: पसंद थी गजल, तो सारे, तो वो गजल पढ़ी, जाने की उड़ान बाकी। तो बात वहीं खत्म हुई, मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी।
1: जी
0: हो ये रहा है कि मैं, मतलब मैंने पढ़ा शुरुआत की, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए।
1: अरे गजब,
0: ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ,
1: जी जी
0: आज
1: जी
0: तक किसी शायर के साथ नहीं हुआ
1: गजब गजब,
0: ऐसा विमोचन और ऐसी ऐसा सम्मान, ऐसा प्यार। तो मैं पढ़ रहा हूं और वो उसे गा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं वो उसे गा रहे हैं,
1: अद्भुत
0: ये
1: अद्भुत,
0: अद्भुत अद्भुत। तो और जब घर पे मैंने श्रीमती जी को बताया कि ऐसा हुआ, तो वो मुझे क्यों नहीं लगे आप, मुझे
1: अरे
0: क्यों नहीं
1: बाप
0: लगे,
1: रे यार, ये
0: और
1: तो बड़ा
0: आपको
1: मिस
0: मालूम
1: हुआ
0: था कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, तो मुझे बता दी। तो ये था उनका प्यार,
1: वाह
0: ये था उनका शायर को सम्मान देने का तरीका। तो इस गजल के साथ ये जुड़ाव है, इसलिए मैंने बताया था।
1: क्या बात है, ये आपसे सुनेंगे
0: हाँ जान

0: जाने कितनी उड़ान। और ये शेर खास तौर से यूनुस,
1: स्वागत है।
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन,
1: वाह वाह,
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, अब तो बस

0: कल यहाँ उनके जिनके मुंह में
1: जबान बाकी है।
0: जबान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी
1: क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार।
0: है।
1: विविध भारती के आपके इस दौर की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत प्यारा वक्त आपने विविध भारती में 2 बार गुजारा है। और मुझे याद है कि आपके जमाने में जो कार्यक्रम आपने शुरू किए, उसमें सरगम के सितारे उजाले,
0: उनकी
1: उनकी
0: यादों के
1: यादों के मंथन जैसे कार्यक्रम थे। मुझे लगता है कुछ और भी कार्यक्रम, गुलदस्ता एक कार्यक्रम था जो आपने शुरू किया है। सखी
0: सखी
1: सहेली आपके
0: सहेली।
1: दौर में शुरू हुआ है, तो ये तमाम चीजें हैं, इस दौर को याद कीजिए।
0: नहीं, वो मेरे पूरे करियर का पीक भी था और स्वर्णिम दौर था हर तरह से।
1: जी
0: मतलब ये नहीं कि मेरी आखिरी वो पोस्टिंग थी कहना चाहिए, या मेरा करियर का आखिरी पीरियड था, उस लिहाज से नहीं। मेरे क्रिएटिव एक्सप्रेशन का भी और लोगों से जुड़ाव का भी और चीज़ों को एक्सप्लोर करने का भी वो बेस्ट पीरियड था। और उस टीम का जवाब नहीं जिसने
1: बिल्कुल
0: मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीज़ों को संवारने और उसको साकार करने का अवसर दिया, जिसमें मैं बार बार नाम लूंगा, तो सबसे पहले यूनुस,
1: अरे राकेश जोशी जी,
0: राकेश जोशी, उस वक्त हमारे जो साथी लोग थे, लोकेंद्र जी, महेंद्र मोदी, ममता, कांचन प्रकाश संगीत, कमलेश और शेट्टी जी जो हमारे मैनेजर हुआ करते थे एक तरह
1: सब
0: से।
1: चीजों को
0: हाँ,
1: संभालते
0: सबको संभालते थे।
1: थे।
0: तो एक अच्छी टीम थी
1: जी
0: जो हर तरह से, जो जिस चीज का एक्सपर्ट था वो था, और
1: बिल्कुल,
0: वो अपने को भरपूर सहयोग के साथ, भरपूर इन्वॉल्वमेंट के साथ, भरपूर पोटेंशियलिटी के साथ, मतलब
1: जी
0: हर आदमी ने अपना बेस्ट दिया।
1: बिल्कुल। और हर
0: ऐसा कम
1: रोज आप
0: होता
1: एक
0: है,
1: नई चुनौती
0: ऐसा
1: सामने
0: कम
1: रखते
0: होता
1: थे।
0: है।
1: जी
0: तो मैं हमने तो ऐसे ऐसे वो दौर देखा और किया है कि कोई बड़ी हस्ती है उसके
1: नौशाद
0: साथ
1: साहब आ
0: कहीं।
1: रहे हैं,
0: हाँ
1: खयाम साहब आ
0: हाँ
1: रहे हैं।
0: खय्याम साहब आ गए, लक्ष्मीकांत कहले, प्यारेलाल जी आए,
1: जी
0: आनंद जी आए, है
1: बिल्कुल
0: ना, अनु मलिक भी आए, कौन कौन नहीं आया यहाँ पे, तो
1: बिल्कुल,
0: सारे। और संगीतकारों में भी बड़े बड़े लोग, है
1: रवि जी
0: ना।
1: आए,
0: हाँ,
1: बिल्कुल
0: खय्याम साहब,
1: खयाम साहब आए, और
0: हाँ
1: बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो
0: हाँ हाँ तो
1: रहा
0: बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े इंटरव्यूज,
1: है। मुझे याद है कि
0: हमारे
1: खयाम
0: मेहमान।
1: साहब, नौशाद साहब आए हैं,
0: हाँ
1: और हम उनको छोड़ने नीचे गाड़ी तक गए हैं,
0: हाँ
1: और वहीं 1 घंटे बात हो रही
0: हाँ उनको
1: है।
0: वो नौशाद साहब तो ऐसे थे कि वो उनको बोलने का बहुत वो था, वो
1: जी
0: अच्छा भी बोलते थे और इतना था उनके पास बोलने का,
1: बिल्कुल
0: और उनको शौक भी था, तो बहुत अच्छी बातें करते थे और देर तक बातें करते थे। कैफी आजमी साहब, तो मतलब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों के भी हमने ये भी सोच किया कि इनको हमको जाया नहीं करना है कि 1 घंटे में बांध लिया, 2 घंटे में बांध लिया उनको, कभी सरगम के सितारे, कभी हमारे मेहमान, कभी इसमें उसमें, जितना हम
1: ज्यादा
0: उनके
1: कर
0: ले
1: सकते
0: सकते
1: थे।
0: हैं उनका श्रोताओं के लिए, क्योंकि ये लोग बार बार नहीं मिलते हैं, ये लोग
1: जी
0: अब कहाँ आएंगे अब इस दुनिया
1: बिल्कुल,
0: में। तो इनका जो है वो है, जो विविध भारती के पास है वो किसी के पास नहीं
1: किसी
0: है,
1: के पास नहीं।
0: किसी के पास नहीं है। वो आर्काइवल रिकॉर्डिंग और स्टेशंस पे है,
1: जी
0: लेकिन इस तरह की जो रिकॉर्डिंग्स जो हैं, इतनी लाइवली रिकॉर्डिंग्स जो हैं, वो संस्मरणात्मक रिकॉर्डिंग है सारी की सारी। या
1: बिल्कुल
0: गानों पे बातें हो रही हैं, या गाने कैसे बने उस पर बातें हो रही है
1: जी,
0: ना, आपका फेवरेट क्या है, आप वो सारा कुछ, मतलब पूरी उनकी यात्रा,
1: एक से बढ़ के एक
0: एक से
1: चीजें
0: बढ़कर
1: हैं,
0: एक
1: एक से
0: प्रोग्राम जो
1: बढ़
0: है
1: के एक हैं।
0: वो हुए। प्लस कहीं कहीं कोई चला गया अचानक, तो उसके लिए छुट्टी भी हो तो सब लोग एक फोन पर, पूरी टीम विविध भारती की स्टूडियो में हाजिर
1: और
0: और
1: ट्रिब्यूट
0: पूरा
1: हो रहा
0: प्रोग्राम
1: है।
0: शुरू हो गया। तो ये
1: जी
0: सब वो एक अनुभव जो है वो विविध भारती में हुआ और कहीं नहीं
1: जी
0: हो सका।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो विविध भारती में वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा हमेशा रहा, कि चाहे मौजूदा कलाकार हों, चाहे ट्रिब्यूट्स हों, जी जान के साथ लोगों ने काम किया। एक चीज, जो क्रिकेट का आपका शौक, उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा। एक बहुत जुनून रहा है आपको क्रिकेट का। मुझे याद है कि वर्ल्ड कप हो रहा है, तो आपने स्पेशल प्रोग्राम शुरू कर दिया था, और मैंने वो चुनौती निभाई थी कि रोज सुबह एक बुलेटिन देना
0: नहीं, क्रिकेट का शौक बहुत अरसे से रहा और शायद ये हमारा राष्ट्रीय खेल शुरू से रहा है,
1: जी।
0: तो थोड़ा बहुत खेला भी, लेकिन देखने का शौक जो है वो, ये तो वो जमाना था, वो दीवानगी का वो आलम था कि इसके लिए मैंने ऑफिस से छुट्टी तक ली है मैच देखने के लिए,
1: जी
0: तो ये भी हुआ है। और खासतौर से जब हम वर्ल्ड कप जीते 83 में, तो
1: बिल्कुल
0: उसके बाद तो कोई कमाल ही हो गया मतलब। और जब जयपुर में आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूट था, स्पोर्ट्स भी था, देखता था,
1: जी
0: तो पाकिस्तान इंडिया का मैच, इंडिया इंग्लैंड का मैच, ये सब देखा और आनंद आया।
1: बिल्कुल, विविध भारती के दौर में भी क्रिकेट पर हमने बहुत कार्यक्रम किए आपके दौर में, और मंथन किया जब पाकिस्तान गई थी इंडिया की टीम, और ऐतिहासिक दौरा था, दिलीप साहब को रिकॉर्ड किया उस जमाने में, और उन्होंने शुभकामनाएं भेजी इंडिया की टीम को, तो एक जुनून उससे मैं वाकिफ हूँ।

0: एक जरूरी बात रह गई है और वो है रेखा जी से आपकी मुलाकात की बात।
1: रेखा से, रेखा का यूं है कि वो हम लोग एमए में साथ थे,
0: जी
1: एमए हिंदी लिटरेचर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो एक ही क्लास में थे और हम दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। मैं जैसे मैंने बताया, हमारे पिताजी पीएनटी डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सरकारी मुलाजिम के बेटे बेटा, वो उस तरह से परिवार में पला बड़ा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम लोग बहुत समृद्ध थे। लेकिन जो रेखा की जो फैमिली है वो सिंधी कम्युनिटी है, वो लालवानी रहे हैं
0: जी
1: मतलब, तो वो बिजनेस में थे जापान में, हमारे फादर इन लॉ, दोनों ब्रदर इन लॉ हांगकॉन्ग मनीला, तो वो उनका बैकग्राउंड ही अलग था, मतलब उनका आर्थिक स्तर भी बहुत अलग था,
0: जी
1: तो कोई संभावना नहीं थी उसकी, लेकिन वो जो होता है वो होता है। तो जब उस वक्त मेरी थोड़ी बहुत पहचान गीतकार के रूप में, थोड़े पत्रकार के रूप में सब होने लगी थी, लिखने वाले के, तो और अट्रैक्शन भी हो ही गया था, और हम लोगों में मिलना जुलना सब कुछ है। लेकिन शादी तक की बात, ये उनका साहस था,
0: जी
1: प्रपोज तो नेचुरली मैंने ही किया था, लेकिन मैं, हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था और विलोम था एक तरह से, तो उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाई, उनका ठीक है। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है,
0: जी
1: तो घर में बता के तो उन्होंने कहा कि संभव नहीं है
0: ओके
1: घर में, तो वहां तो राजी होने का सवाल ही नहीं उठता कि वो मान जाए। तो अच्छा, उस वक्त हमारे इन लॉ, फादर इन लॉ जापान में रह रहे थे, ये हमारी जो सास है मदर इन लॉ जो है वो उनके साथ ये रह रही थी, सब कुछ, दोनों भाई बाहर थे, तो घर का कोई पुरुष यहाँ मौजूद नहीं था, और माँ को भी ये बताने की और इस हालत में वो उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे समाज में शादी करते हैं।
0: अरे बाप रे।
1: तो आर्य समाज में तय हुआ शादी, हम मेरे कोई निकट के मित्र 5-7, और उस वक्त भी मतलब मैं, क्योंकि अपने कॉलेज के ज़माने से अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से, लिखने पढ़ने और थिएटर का जो माहौल था, तो अपने लेक्चरर्स का चहेता बन गया था, मतलब ये था, तो
0: जी
1: वो सब
0: जी
1: आगे आगे करते थे, तो मेरे 2-3 जो लेक्चरर्स थे वो शादी में आए,
0: अरे वाह,
1: आर्य समाज की शादी में,
0: क्या बात है।
1: तो वो उन्होंने संभाला और सब कुछ हुआ। अच्छा हुआ ये कि मैं शादी के बाद वो अपने घर चली गई, मैं अपने
0: अरे
1: घर चला आया,
0: जी,
1: तो उन्होंने कहा कि अब मैं बता सकती हूं
0: हाँ
1: कि हम, मैंने शादी कर ली है,
0: हाँ
1: और तो अब तो
0: कुछ हो नहीं
1: मुमकिन ही
0: सकता
1: होंगी
0: था।
1: नहीं कि सबकी, तो हमारे जो लेक्चरर्स थे तो
0: हाँ
1: नेचुरली वहां से रेजिस्टेंस होना था कि नहीं, तुम्हारे पिताजी को बुलाते हैं, वो करते हैं, तो उन्होंने वो दौड़े दौड़े जापान से लौट के आए,
0: हाँ
1: फिर उन्होंने सब बता दिया सब कुछ, तो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, हम उनसे बात करेंगे, उनको बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे लग नहीं रहा कि मानेंगे,
0: हाँ
1: तो मुझे यहाँ से ले जाओ,
0: अरे बाप रे।
1: ये इनकी हिम्मत बता रहा हूँ मैं अब, तो
0: हाँ।
1: मुझे ले जाओ यहाँ से। तो मैं अपने 2 लेक्चरर्स के साथ घर गया हूँ उनके, और
0: गजब।
1: हाँ, और हमारे फादर इन लॉ जो मौजूद थे, तो
0: हाँ
1: हाँ, ये बैठी चाय वाय पी सब कुछ कुछ, तो उन्होंने वही कहा कि थोड़ा हमें वक्त दीजिए ना,
0: हाँ
1: हम ढंग से करते हैं, इस करेंगे
0: हाँ
1: उसको, लेकिन ये फिर मुझे अलग ले गई, बोले नहीं
0: ये नहीं हो रहा
1: ये नहीं
0: है।
1: होने देंगे,
0: हाँ
1: मैं भी चलूंगी,
0: गजब,
1: मैं भी चलूंगी। तो
0: बाप रे।
1: फिर उन्हीं के साथ हम लोग बाहर आ गए और हम लोग निकल आए, और फिर मैंने अपने घर वालों को भी तब बताया जब
0: जी,
1: उनको लेके आया कि मेरी शादी हो गई है,
0: और
1: और उन्होंने
0: ये
1: कहा हाँ। तो इस तरह से ये पूरी कहानी हुई, और इसके पीछे मेरी तो जो है सो है,
0: हाँ
1: सारा साहस इनका है,
0: क्या बात है
1: ये उस जमाने में।
0: जी, शानदार शानदार। तो ये अद्भुत कहानी रही है और ये हमारे सुनने वालों के साथ शेयर हुई, तो ये भी एक दिलचस्प है। सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती हैं जिनमें आगे की गुंजाइश छूट जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, 2 एपिसोड में उनको समेटना बड़ा मुश्किल था। आगे फिर मिलेंगे और कुछ बहुत सारी बातें आपके साथ की जाएंगी।
1: जरूर।
0: चलते चलते आपसे कुछ सुनना चाहेंगे।
1: मैं 2-3 शेर सुनाता हूं,
0: जी जरूर इरशाद।
1: ये रोजमर्रा का सच हम सबके साथ। किसी दिन जिंदगानी में
0: किसी दिन
1: करिश्मा
0: जिंदगानी,
1: क्यों नहीं होता,
0: वाह
1: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता,
0: वाह वाह वाह वाह वाह
1: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता।
0: वाह वाह,
1: मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, मेरी एक जिंदगी के
0: कितने
1: हिस्सेदार हैं लेकिन किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता।
0: वाह वाह वाह,
1: मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। और दो छोटी छोटी बहर के शेर
0: इरशाद।
1: एक तो ये शेर के,
0: एक आंसू
1: कोरे कागज पर गिरा।
0: वाह,
1: एक आंसू
0: कोरे कागज,
1: कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या
1: एक आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया,
0: क्या बात है।
1: और ये शेर आखिर में, गम छुपाना,
0: गम छुपाना
1: कोई मजाक नहीं, गम छुपाना कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात।
1: गम छुपाना कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है,
0: क्या बात है क्या बात है। सर इतनी सारी बातें हुई, मैं चाहता हूं कि एक ऐसी गजल सुनाएं जो आपके इस पूरे रचनात्मक सफर की रिप्रेजेंटेटिव हो, जो आपके मन की हो, जिसे आप जरूर सुनाना चाहें।
1: यूनुस, ये गजल मैं इसलिए खास महसूस करता हूं अपने क्रिएटिव सफर की, कि रामपुर की एक बहुत मशहूर लाइब्रेरी है, रजा लाइब्रेरी।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो उसमें रिसर्च का नामी गिरामी लोग तो आए, बहुत अच्छी महफिल थी, तो उसमें ये गजल जो मैंने पढ़ी
0: जी,
1: तो इतना प्यार मिला, तरह मुशायरा था जो मेरा पहला अनुभव था।
0: जी जी,
1: मतलब किसी लाइन
0: होता है।
1: लेकिन ये गजल मुझे वहां दो बार पढ़नी पड़ी,
0: क्या बात है,
1: इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला, तो वो हासिल मुशायरा साबित हो गई।
0: वाह,
1: तो इसलिए मेरे लिए वो जो है बड़ी यादगार गजल रही, तो मैं वो उसके कुछ शेर पढ़ देता हूँ।
0: इरशाद इरशाद।

0: और ये शेर मैं जो खास सुनाना चाह रहा हूं,
1: इरशाद
0: इसमें एक लफ्ज है, शब्द है शराब।
1: जी,
0: एक होता है शराब और
1: और
0: एक
1: ये
0: होता है
1: होता है
0: सराब, जिसे
1: शराब।
0: मृग मरीचि का
1: जी
0: मिराज जिसे उर्दू इंग्लिश में
1: यस,
0: बोलते हैं, कि रेगिस्तान में पानी जैसा होता है, दिखता है, होता नहीं
1: होता
0: है
1: नहीं,
0: ना मरुस्थल में।
1: आग का धोखा है।
0: हाँ, पानी का धोखा, आग का धोखा, वो सब रहे। तो ये जो इस्तेमाल किया उस पर पूरी जो महफिल थी उसने प्यार दिया। अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम, अब तो शराब ही से।

0: कहाँ से हम।
1: क्या बात है,
0: थैंक
1: क्या बात
0: यू
1: है।
0: थैंक यू।
1: तो आगे की बातचीत के लिए प्यास बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी बातें की।
0: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस, और पूरे विविध भारती परिवार को मेरी तरफ से धन्यवाद, आभार, और अपने पूरे परिवार में फिर एक बार अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए और पुराने श्रोताओं से मिलने के लिए, मिलाने के लिए मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया। ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने को हैं आरंभ होती है आज की सायंकालीन सभा। सभा की शुरुआत में सुनिए हिंदी में समाचार जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और इटली द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इटली के रोम में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी में तकनीक और नवाचार मुख्य केंद्र हैं।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि श्री मेलोनी के नेतृत्व में दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा और ऊर्जा मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की सभ्यता बहुत पुरानी है।
2: रोम को विश्व में इटर्नल सिटी के रूप में जाना जाता है। भारत में मेरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी काशी उसको भी अनादि और शाश्वत नगर माना जाता है। जब दो सभ्यताएं मिलती हैं तो बातचीत केवल एजेंडा तक सीमित नहीं होती। इसमें इतिहास की गहराई, भविष्य की दृष्टि और मित्रता की सहजता तीनों साथ दिखाई देते हैं।
1: हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली

0: साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तर पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसिजन्स गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह आत्मनिर्भर भारत की पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। उन्होंने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक रणनीतिक उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एक जनहित याचिका का जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्ति में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। सरकार ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल में कश्मीरी लड़ाकों द्वारा सेना के वाहन पर हमले के बाद सैनिकों के मारे जाने की सोशल मीडिया की खबरों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तंत्र जांच इकाई ने बताया कि क्षेत्र में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरे टीम के परिणाम पर निर्भर है। मौसम विभाग ने इस सप्ताह उत्तर पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में लू की आशंका व्यक्त की है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड में लू चल सकती है, जबकि असम, मेघालय, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

हेलो नमस्ते सत श्री अकाल और आदाब दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुलभ हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम युवाणी। योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की एक संपूर्ण पद्धति भी है। आज के आधुनिक और व्यस्त जीवन में तनाव, चिंता और विभिन्न बीमारियाँ जैसे तेजी से बढ़ रही हैं, ऐसे समय में योग शरीर, मन और आत्मा को संतुलित रखने का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम बन गया है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को योग को अपनाने के लिए जीवन का एक हिस्सा भी बनाना है। योग का इतिहास जो है वो हजारों वर्ष पुराना है। भारत के ऋषि मुनियों ने ध्यान और साधना के माध्यम से योग की परंपरा को विकसित किया। आज योग की महत्वता पूरी दुनिया में स्वीकार की जा चुकी है। प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जिससे लोगों में योग के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। योग करने से शरीर मजबूत और स्वस्थ बनता है। नियमित योग अभ्यास से मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी बीमारियों से बचा होता है। योग ध्यान मानसिक तनाव को भी कम करता है और मन को शांति भी प्रदान करता है। योग से व्यक्ति की एकाग्रता, आत्मविश्वास और कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। आज के युग में विद्यार्थी भी योग से बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है और पढ़ाई में ध्यान भी केंद्रित करने में सहायता मिलती है। इसके अलावा योग सकारात्मक सोच विकसित करता है और व्यक्ति को अनुशासित भी बनाता है। वृद्ध लोगों के लिए भी योग अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि इससे शरीर में लचीलापन बना रहता है और ऊर्जा का संचार सामान्य रहता है। योग जो है वो स्वस्थ और सुखी जीवन जीने की एक कुंजी है। यह हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। यदि हम नियमित रूप से योग को अपनाएं तो हम अनेक बीमारियों से बच सकते हैं और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को योग को अपनाकर यह संदेश जो है अपने जीवन में उतारना चाहिए। मिलते हैं गाने के बाद, तो कहीं मत जाइए और सुनते रहिए युवाणी।

0: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
1: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
3: को तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
4: दिमाग चार्ज कर अपना।
5: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
4: देखा
3: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
5: अब क्या करोगे?
3: फ्री वाईफाई है ना?
4: बुद्धू सुधर जा।
5: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
3: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
1: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
7: वेलकम बैक, मैं हूं सुलभ और आप सुन रहे हैं युवाणी। विश्व मधुमक्खी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को मधुमक्खियों के महत्व के प्रति जागरूक करना और उनके संरक्षण के प्रति प्रेरित भी करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 में इस दिवस को आधिकारिक मान्यता दी थी। मधुमक्खियां केवल शहद उत्पाद के लिए ही नहीं बल्कि पर्यावरण संतुलन और कृषि उत्पादन के लिए भी अत्यंत आवश्यक हैं। मधुमक्खियाँ प्रकृति के महत्वपूर्ण होती हैं। वे फूलों को से रस एकत्रित करते समय पराग कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं, जिससे पौधों में फल और बीज बनने की प्रक्रिया पूरी होती है। दुनिया की लगभग 75% फसलें किसी न किसी रूप में पराग पर ही निर्भर करती हैं। यदि मधुमक्खियाँ न रहें तो कृषि उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है और खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। मधुमक्खियों से प्राप्त शहद स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभकारी होता है। इसके अलावा मोम, रॉयल जैसी अन्य उत्पाद भी, औषधियाँ भी सौंदर्य प्रसादनों में उपयोग किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मधुमक्खियाँ पालन रोजगार और आय का एक अच्छा साधन बन रहा है। इससे किसी न किसी रूप में किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है और आत्मनिर्भरता भी बढ़ती है। आज के समय में मधुमक्खियों का अस्तित्व कई खतरों से घिरा हुआ है। रासायनिक कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, जंगलों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण उनकी संख्या लगातार कम हो रही है। यह स्थिति मानव जीवन और पर्यावरण दोनों के लिए चिंता का विषय है, इसीलिए हमें मधुमक्खियों के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। मधुमक्खियों की का संरक्षण जो है मानव जीवन, कृषि और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ही अत्यंत आवश्यक है। विश्व मधुमक्खी दिवस हमें यह संदेश देता है कि यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। मिलते हैं गाने के बाद, तो कहीं मत जाइए और सुनते रहिए युवाणी।

वेलकम बैक, मैं हूं सुलभ और आप सुन रहे हैं युववाणी। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की जयंती प्रत्येक वर्ष 20 मई को मनाई जाती है। वे छायावाद युग के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उनकी कविताओं में प्रकृति, सौंदर्य, मानवता और राष्ट्र प्रेम की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हिंदी साहित्य को नई दिशा देने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को कुसनी में हुआ था। उनका बचपन हिमालय की सुंदर वादियों के बीच बीता, जिसका प्रभाव उनकी रचनाओं में साफ साफ दिखाई देता है। प्रकृति के प्रति उनका गहरा लगाव उनकी कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता है। उन्होंने बचपन से ही साहित्य में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। पंत जी छायावादी प्रमुख के कवि थे। उनकी भाषा अत्यंत ही मधुर, कोमल और भावपूर्ण थी। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में पल्लव, गुंजन, युगांत, चिदंबरम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उनकी रचनाओं में प्रकृति के सौंदर्य के साथ साथ सामाजिक चेतना और मानवीय संवेदना भी देखने को मिलती है। सुमित्रा नंदन पंत केवल कवि ही नहीं बल्कि एक महान विचारक भी थे। उन्होंने समाज में समानता, शांति और मानवता का संदेश दिया। उनकी कविताएं लोगों को सकारात्मक सोच और प्रकृति से प्रेम करना सिखाती हैं। हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा पद्म विभूषण जैसे सम्मान से भी सम्मानित किया गया। मिलते हैं गाने के बाद, तो कहीं मत जाइए और सुनते रहिए युववाणी।

वेलकम बैक, मैं हूं सुलभ और आप सुन रहे हैं युवाणी। दोस्तों, हमारा कल का प्रश्न था कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। प्रश्न एक बार और सुन लें कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, और जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मिलते हैं गाने के बाद, तो कहीं मचाइए और सुनते रहिए युवाणी।

वेलकम बैक, मैं हूं सुलभ और आप सुन रहे हैं युवाणी। दोस्तों, हमारा आज का लास्ट सेगमेंट, हमारा आज का सवाल है कि सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है। प्रश्न एक बार और सुन लें कि सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है, और इसी के साथ जवाब। इजाज़त है मुझे, तब तक के लिए नमस्कार।

युववाणी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
1: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
1: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
0: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
1: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
0: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
3: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: जय हिंद भैया। देखा नारा लगल, यही के साथ है अपनी बैठकी के शुरुआत भइल। भैया आज के समय कहीं भी चार गो पंच भाई बैठे ना तो जरूर चर्चा होला कि भैया देखा आदमी के दिनचर्या इतना प्रभावित हो गल बा जौना के वजह से तमाम तरह का दिक्कत हो रहा बा। केहू कहला भैया देखा हमारे ठेहुनी में दर्द होता, केहू कहता भैया हमारे पीठी में दर्द होता, केहू के कोनो समस्या बा। तो जौन मनई के दिनचर्या बा भैया वो बिगड़ चुकल बा। अगर आदमी नियमित दिनचर्या के अपनावे तो बिल्कुल स्वस्थ रह सकेला। लेकिन सवाल ये उठेला कि भैया जौन हमन के दिनचर्या बा वो कैसन होके, एक बारे में जानकारी जरूरी है। आज यही विषय पर जौन बा पंच भाई जानकारी सुने वैद्य दिवाकर मिश्र से।
5: पंच भाई अपने गाँवी में आज भी जे पुरनिया लोग बा ऊ लोग जौन बा कहीं बैठेला कोनो बात हो गई तो लड़का लोग उनका कहलें कि गट्टा पकड़ ली छोड़ा के दिखा था तब जानब तोरे अंदर ताकत बा। और सही बात बा जौन पूर्णिया लोग रहें उनके अंदर जौन ताकत रहा आज के युवा पीढ़ी के अंदर वो बात नहीं देखे के मिलेला। ओकरे पीछे कारण ये रहा कि उनका खान पान भी दूसर रहा। वो लोग ये बात के चर्चा भी करें, लोग स्वीकार भी कर लें कि मनई जितने बढ़िया बढ़िया खाता उतने तमाम तरह के दिक्कत हो रहा बा। लोगन के दिनचर्या में भी काफ़ी बदलाव आयल। पहले लोग मेहनत करत रहें, अब देखी खेती बाड़ी के कितना काम मशीन से हो जा रहा बा। जौना के वजह से लोगन के जौन बा मेहनत का मौका कम मिलता, या लोग मेहनत कर नहीं चाहत हुए या मेहनत लोग करत नहीं हुए, दूसर चीज में लोग व्यस्त हो गए हुए, जौने के सीधा सीधा असर हमन के स्वास्थ्य पे दिखा पड़ रहा बा। सवाल ये उठेला कि जौन बदलत माहौल बा ओमहन हमन के दिनचर्या कैसन होके, यही कुल विषय पर चर्चा खातिर आज अपने बैठकी में मौजूद बाटते हैं वैद्य दिवाकर मिश्रा जी। आप गोरखपुर के मशहूर वैद्य बानी। सबसे पहले मिश्रा जी आपके हमरे यह कार्यक्रम में स्वागत बा।
6: धन्यवाद।
5: और हम चर्चा का शुरुआत सवेरे से करब जब हमन के दिन के शुरुआत हो खेला।
6: जी जी।
5: हम आपसे ये जानल चाहब कि मनई कई लोग एकदम सवेरे जग जालें, कई लोग कुछ देर में जगल हैं, दरअसल जगले के सही समय का हवे, कब हमन के सवेरे सवेरे जगे के चाहिए।
6: सही मायने में यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे से अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं
5: जी जी,
6: तो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम उठें तो तुरंत बिस्तर न छोड़ें।
5: जी जी।
6: हम जो भी हमारे आराध्य हैं, जिसको भी हम मानते हैं, जिस भी धर्म के व्यक्ति हम हैं, जिसको भी हम आप चाहें, उसका ध्यान जरूर करें और उनसे आप अपनी ऊर्जा लीजिए उनसे।
5: जी जी।
6: और वह जो ऊर्जा होगी वह आपको पूरे दिन के लिए स्वस्थ रखेगी।
5: जैसे 4:30 बजे नींद खुल गई, आप कहें तुरंत बिस्तर से ना उठें।
6: हाँ, तुरंत
5: कितना देर तक जो बिस्तर पे
6: कम से कम 5 मिनट
5: जी जी
6: बिस्तर न छोड़ा जाए। और उसके बाद ध्यान दिया जाए, जैसे 2 नाड़ियाँ हमारी चलती हैं तो हमें अगर हाथ लगाएंगे तो हमें पता होगा कि कौन सी नाड़ी हमारी चल रही है, दायां या बायां।
5: जी जी।
6: तो जिधर की चल रही हो तो सर पहला कदम हम उसको नीचे रखें।
5: जी जी।
6: तो अगर वहां से हम शुरुआत करते हैं, वहीं से अगर हम अपनी दिनचर्या पर ध्यान रखते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा।
5: जी जी।
6: और हमारी सोच और हमारे काम करने की जो प्रक्रिया है वह हमारी हमेशा सात्विकता के साथ होगी।
5: उसके बाद में क्या करें?
6: उसके बाद आप ये देख लें कि हमें उठ के कम से कम हम पैर के बल बैठ जाएं नीचे जमीन पे।
5: जी जी।
6: और हम एक गिलास गुनगुना पानी
5: उकड़ू
6: बैठ के रात का रखा हुआ पानी
5: जी
6: पीतल के बर्तन में रख दिया जाए और उस पानी को सवेरे पी लिया जाए
5: बिना दतुअन कुल्ला
6: खेले, कुछ भी नहीं किए, क्योंकि हमारे मुंह की जो गंदगी होती है उसके माध्यम से वो हमारे अंदर चली जाती है
5: जी जी,
6: और वो हमारे पेट के माध्यम से हमारे यूरिन हमारे रक्त के साथ वो बाहर निकल जाती है वो चीज
5: जी जी।
6: ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, इससे गैस्ट्रिक वगैरह की समस्या लगभग जो है 70% खत्म हो जाएगी।
5: जी उकड़ू नहीं बैठ पाता ऊ का करे,
6: उसके लिए कोई ऐसा बंधन नहीं है, वो आप चारपाई पे बैठे हैं वहाँ भी आप पी सकते हैं पानी, लेकिन पानी की प्रक्रिया होनी चाहिए।
5: दतुअन कुल्ला कब करें?
6: दतुअन सुबह उठते ही, जब ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ रहे हैं तो अगर आप टहलने की आपकी आदत है, और होना चाहिए, ये हमारी दिनचर्या में शामिल होना चाहिए
5: जी जी,
6: और प्रयास करें अगर हम बाहर नहीं निकल सकते हैं तो अपने घर पे ही, अपने दरवाजे पे, अपने छत पे, अगर घास की सुविधा है तो घास पे हम पैदल चलें 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो आपके पास समय है, उसके बाद आप उस अपने उसमें शामिल करके इसको, और उसके साथ अगर आप ये दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरे शरीर का जो हर अंग उससे मजबूत होगा।
5: आप चर्चा कह ली है कि जौनबा जगले के बाद कुछ देर के बाद वो पानी पिए उकड़ू बैठ के,
6: उकड़ू बैठ
5: बिना दतुअन कुल्ला कह ली, दतुअन कुल्ला हम पूछ ली कि वो कब करी है?
6: दतुअन कुल्ला उसके बाद दतुअन कुल्ला करें अपना, जहाँ पहले पहले तो फ्रेश हो
5: जी,
6: लेकिन अपना दिनचर्या जो शुरू होती है पहला काम है आपका अपने शरीर को शुद्ध करना
5: जी जी।
6: शुद्ध कैसे होगा? जब आप उससे फारिग होके आ जाएंगे तभी शरीर हमारा शुद्ध होगा, और उस शुद्ध होने के बाद ही हम ब्रश करेंगे
5: जी जी।
6: ये ध्यान रखा जाए कि आज जितने भी पेस्ट बने हुए हैं
5: जी जी,
6: बिना फ्लोराइड के कोई पेस्ट है नहीं
5: जी,
6: और उस लार को ही हम पहले ही शुरुआत में जैसे ही हम पेस्ट करते हैं वैसे ही लार हमारा अशुद्ध हो जाता है लार्वा
5: जी जी,
6: और वह हमारे शरीर के अंदर भी जाता है, हम कितना भी बचावें लेकिन वो कुछ न कुछ हिस्सा तो जाता ही जाता है वो शरीर के अंदर। इसको ध्यान रखना चाहिए कि पेस्ट हम वो करें कि जो ज्यादा से ज्यादा जिसमें ये हिदायत हो कि हम इसमें ज्यादा फ्लोराइड है नहीं, तमाम ऐसे पेस्ट
5: या जोन हर्बल हो,
6: और हर्बल पेस्ट में अब ऐसे पेस्ट आ चुके हैं जिसमें जो है ये सब चीजें नहीं मिलाई गई हैं, फ्लोराइड की मात्रा बहुत कम है
5: जी जी। पहले लोग जोन बा नीबी के दतुअन ले लें कूचे बड़ा देर तक वो क्या करें, वो कहाँ तक उचित बा?
6: दतुअन अब लोग लेना नहीं चाहते हैं और वो उपलब्ध भी नहीं है
5: जी जी।
6: पेस्ट सबसे आसान है आज के समय में, और वह ज्यादा सुविधाजनक ढंग से मिल भी जाता है
5: जी,
6: आज वह आसान हो गया है, लेकिन इतना जरूर होना चाहिए कि हम एक फिटकरी के पानी से हम जरूर कुल्ला कर लें जब पेस्ट कर लेते हैं तो
5: जी जी।
6: अगर हम फिटकरी के पानी से पेस्ट कुल्ला कर लेते हैं तो कुछ हद तक हम सुरक्षित हो जाते हैं
5: जी जी,
6: तो ये हमें अपना लेना चाहिए इसको।
5: आप फिटकरी के पानी जो बतौली है ना, कितना पानी में कितना फिटकरी मिला ले?
6: एक गिलास पानी में जरा सा चुटकी से फिटकरी डालिए, डाला जाए
5: जी जी,
6: चुटकी भर ज्यादा नहीं
5: जी,
6: वो भी एकदम पाउडर।
5: अच्छा, जगले के कितना देर के बाद हमन के नाश्ता जोन बा करे के चाहिए?
6: नाश्ता कम से कम उठने के बाद 2 घंटे का समय तो होना ही चाहिए
5: जी जी।
6: 2 घंटे के बाद ही आप नाश्ता के लिए आप अपना तैयारी करिए
5: जी जी,
6: और नाश्ते में सबसे पहले अगर आप नाश्ते को सही ढंग से करना चाहते हैं तो उसमें ड्राई फ्रूट्स हैं
5: जी जी,
6: जिसमें आपका जो किशमिश सबसे मुफीद है
5: जी,
6: किशमिश को रात में भिगो दिया जाए, और उसको किशमिश है, छुहारा है, बादाम है, अखरोट है, ये सब चीज़ें भिगो के और सवेरे के टाइम नाश्ते में अगर सक्षम है तो ये सब लें
5: जी जी,
6: नहीं सक्षम है तो चना भिगो दिया जाए
5: जी,
6: चना भिगो दिया जाए, उसमें मूंग भिगो दिया जाए, और चना और मूंग दोनों को नाश्ते में लिया जाए।
5: अच्छा, भिगोले के पीछे का कारण बा? जौन आप ड्राई फ्रूट बतौली हैं क्योंकि भिगा के तब सुबह उपयोग कर जाए,
6: ऐसे ऐसे तत्व हैं उसके अंदर, जब हम भिगो देते हैं तो वो सारे तत्व हमारे बाहर निकल जाते हैं
5: जी,
6: और हमको वो चीज़ हम ले लेते हैं जो हमारे शरीर को आवश्यक है
5: जी,
6: जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखे
5: जी, जी।
6: इसलिए भिगोना आवश्यक होता है।
5: मान लें आप कह लें कि जेकर पहुँचान नहीं बा वो चना का उपयोग करें, रोज लोगन के लिए होना संभव है कि चना का उपयोग करें, या मान लें कहूँ कि अगर कोनो समस्या वालों कह लें गेहूँ कि भाई प्रोटीन बढ़ गए बा दर्द होता तो ऐसा आदमी रोज अगर चना ले तो ओकरे लिए भी नुकसान करी?
6: अब ये तो शारीरिक हो गया कि शारीरिक क्षमता आपकी क्या है, क्या आप ले सकते हैं, जैसे अब शुगर हो गया तो तमाम चीज उसमें परहेज है
5: जी जी।
6: हर आदमी हर चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि आज बीमारियां इतनी ज्यादा हो चुकी हैं और वह खाली हमारे दिनचर्या की देन है
5: जी जी।
6: बीमारी का
5: जी।
6: हम ब्रह्म मुहूर्त में उठना नहीं चाहते हैं, हमारी दिनचर्या शुरू होती है 9 से 10 बजे के बाद से
5: जी जी।
6: ऐसी कंडीशन में ऐसी स्थिति में यह तो मान के चलें कि कभी भी वो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा
5: जी। अच्छा, हम देख ली कि कई लोगों का आदत होला कि राति में वो देर के सोवल और सवेरे जौन बा बहुत देर तक सोल ला अक्सर दिन जौन बा निकलला के बाद जौन बा जगल है जे दिन निकलला के बाद जगता ओकरे सेहत पर जौन बा एकर का प्रभाव पड़े ओकरे दिनचर्या के।
6: बात पित्त कफ तीन चीज हमारे शरीर को व्यवस्थित करता है, यही तीन हमारी बीमारी का कारण है, यही तीन हमको स्वस्थ भी रखता है
5: जी।
6: तो इन तीनों पे प्रभाव पड़ता है जब हम देर में उठते हैं और देर में सोते हैं तो उसका प्रभाव हमारे इन तीनों चीजों पर पड़ता है
5: जी जी।
6: और वहीं से हमारे शरीर में बीमारियां पनपनी शुरू हो जाती है।
5: आप शुरू में चर्चा कर ली कि जगले के बाद 2 घंटा के बाद जोन बा नाश्ता हमन के ले लेके चाहिए। नाश्ता कैला के कितना देर के बाद में जोन बा भोजन लिहल जरूरी हो खेला।
6: देखिए किसी चीज को खाने के बाद कम से कम 3 घंटे का समय होना चाहिए, 3 घंटे बाद ही कुछ लेना चाहिए
5: जी जी।
6: क्योंकि हमारी पाचन प्रणाली 3 घंटे तक उस चीज को पचाती है
5: जी,
6: और 3 घंटे के अंदर हम कुछ लेते हैं तो दोबारा वही काम पूरे शरीर को करना पड़ता है
5: जी जी।
6: तो वह उसकी जो क्षमता है शरीर की, लीवर का, किडनी का है, लंग्स का है, ये पैंक्रियाज का है, ये सारी चीजें जो होती हैं हमारी सक्रिय रहती हैं, इसको भी थोड़ी देर के लिए आराम चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर हम बराबर लेते जा रहे हैं कोई चीज तो यह रेगुलर हरदम इसको काम करना पड़ेगा
5: जी जी।
6: और जब यह हमेशा काम करेगा तो यह हमारे शरीर की एनर्जी को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा।
5: अच्छा, जो दोपहरिया का भोजन बा कहा जाला कि उमन जितना ज्यादा से ज्यादा चीज के समावेश हो सके वो के करे के चाहिए, यह विषय में आपका कहा।
6: देखिए दोपहर के भोजन में सबसे बड़ी है कि दोपहर के भोजन में जितना भी हो सलाद की मात्रा तो निश्चित रूप से रखा जाए
5: जी जी।
6: और उसकी मात्रा ज्यादा हो भोजन में, अगर जो हमारी भूख वह भूख अगर 4 रोटी की है तो हम 3 रोटी ही खाएं
5: जी जी,
6: और सलाद की मात्रा बढ़ा दें।
5: दोपहरिया का भोजन हो गए, ओकरे बाद साझी के भी जौन बा लोग कुछ ले लें, कहले कि भाई खैला में देर हो जाए तो साझी के भूख भी लग जाला, तो साझी के बेरा नाश्ता में कौन चीज का उपयोग कर जाए जौन कि हमन के सेहत खातिर उपयोगी होके।
6: प्रयास तो ये करना चाहिए, थोड़ा सा हमने ले लिया मूंगफली का दाना
5: जी,
6: हमने ये ले लिया मखाना
5: जी,
6: गरी थोड़ा सा रोस्ट करके इसको हम लोग खाएं नाश्ते में, सब शाम के नाश्ते में
5: जी जी।
6: तो इससे हमको शरीर को हमारे एनर्जी भी मिलेगी और हमें कोई नुकसान नहीं करेगा ये कोई चीज।
5: ये जितना कुल आप बतौली हैं कि साझी का नाश्ता में लिहल जा, हमें जहाँ तक जानकारी बा अपने गाँव में केहू के ये चीजन से कोनो वास्ता नहीं रहला। लोग खाही पी वाला चीज जोन बा ले लें अपने गाँव में, तो जोन खाए पी वाला उनके घर में बा उमहन से कौन चीज उपयोग करें,
6: हमें जोन भी उनके लगे उपलब्ध बा वो चीज ले लें वो स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि ये गांव का आदमी अच्छी तरह समझता है कि उनकी दिनचर्या एक निर्धारित होती है, और वह अगर अपने हिसाब से जो उनकी क्षमता है उस हिसाब से लेना चाहें तो आप वह जो है नाश्ते में, शाम के नाश्ते में भी कुछ न कुछ ऐसी चीज़ ले लें जिससे उनको शरीर को एनर्जी मिलने हो
5: जी जी।
6: उसमें कुछ भी हो सकता है, रोटी भी हो सकती है, उसमें कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो दलिया जैसी चीज़ हो सकती है, ऐसी चीज़ों को ले सकते हैं वो।
5: अच्छा, ई कहा जाला कि जो राती के भोजन बा राती के भोजन हल्का लेवे के चाहिए, इहो लोग कहले कि दिन डूबले के बाद प्रोटीन के जोन बा उपयोग नहीं करे के चाहिए, एकरे पीछे का कारण बा जैसे प्रोटीन को उपयोग कहा नहीं करे के चाहिए।
6: दरअसल जो हमारी पाचन प्रणाली है रात के समय में धीमी पड़ जाती है
5: जी जी।
6: तो हम जब गरिष्ठ भोजन करते हैं तो पाचन सही ढंग से हो नहीं पाता उसका
5: जी।
6: और प्रयास ये करना चाहिए चाहे दिन का भोजन हो चाहे रात का भोजन हो, हम एक जैसे अगर चावल खा रहे हैं तो चावल ही लें
5: जी जी,
6: रोटी खा रहे हैं तो रोटी ही लें,
5: मतलब एक के गो अन्न लिया जाए,
6: एक अन्न लिया जाए ले लिया जाए तो एक अन्न लेने से लाभ ये होगा, पचाने की प्रक्रिया है एक रफ्तार से काम करेगी वो
5: जी जी।
6: अगर हम उसको कई तरह के भोजन करते हैं, अगर कई ले लेते हैं चावल अलग है क्योंकि उसको पचने में ज्यादा टाइम लगता है, एक को पचने में कम टाइम लगता है
5: जी जी।
6: इस स्थिति में शरीर की पाचन क्रिया है वो हमारी दूषित हो जाती है।
5: वैद्य जी बताएं कि राती का जो भोजन बा वो के कब तक ले लिया जाए।
6: रात का भोजन 8 से 10 बजे के बीच में ले लिया जाए
5: जी जी।
6: इस समय लेने से आपको पर्याप्त समय मिल जाता है सोने का, जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर शिथिल हो जाता है
5: जी,
6: लेकिन अंदर तो काम चलता रहता है
5: जी,
6: पाचन क्रिया तो वो तो अपना नेचुरल ढंग से प्राकृतिक ढंग से चलता है वो, हमारे उसमें हमारा कोई रोल नहीं है।
5: अच्छा, कुछ लोग ये कहा कि भाई खैला के बाद हम बैठ नहीं पहला तुरंत भाई हमें बिस्तर चाहिए, और कुछ लोग कहा कि खैले के तुरंत बाद बिस्तर पर नहीं जाए के चाहिए, दोनों में का सही है।
6: खाने के बाद कम से कम 1 घंटा मान के चलिए
5: जी,
6: 1 घंटे के बाद ही बिस्तर पर जाना चाहिए और प्रयास करना चाहिए खाना खाने के बाद एक तो टहल लीजिए थोड़ी देर पहले टहलने के बाद आइए और वज्रासन पे बैठ जाइए, उससे हमारी पाचन प्रणाली दुरुस्त हो जाएगी और जो भोजन हमारा पचना चाहिए समय से पचना है उसी समय से भोजन पचना शुरू हो जाएगा।
5: अच्छा, कई लोग ऐसा बाटे हैं कि अभी खाना आवा था ओकरे पहले गटर गटर कई गिलास पानी पी जा ले, पानी भी पियला का कुछ नियम बा?
6: पानी पीने का नियम यह है कि आधे घंटे पहले पानी आप पी सकते हैं थोड़ा बहुत
5: जी,
6: खाना खाने के पहले। खाना खाने के बाद बीच में अगर कोई ऐसी चीज खा रहे हैं कि जो हमारे गले में फंस रहा है या तो आप उसको निगलने के लिए पानी पी सकते हैं
5: जी जी।
6: बाकी खाना खाने के बाद आप आधे घंटे के बाद आप पानी पीजिए
5: जी जी।
6: और ये भी नियम है कि अगर आपको फल खाना है तो आप 2 बजे के अंदर फल का उपयोग कर लीजिए
5: जी।
6: 2 बजे के बाद फल किसी मजबूरी में खाइए वो अलग बात है, अपने दिनचर्या में मत शामिल करिए उसको
5: जी।
6: सुबह के टाइम अगर आप स्वस्थ हैं तो केले का इस्तेमाल जरूर करिए नाश्ते में। चना, मूंग की दाल ये सब आप अगर सेवन करते हैं तो इससे आपको एक अच्छी एनर्जी मिलेगी और जो ये हमारा जो फास्ट फूड है हमारे लिए जहर का काम कर रहा है
5: जी जी। आपके कहने का मतलब यह कि जौन भी कुछ लें साफ सफाई का ध्यान रखें, घर का बनल चीज लें वो ज्यादा बढ़िया रही।
6: दूसरे
5: राती के कई लोग खैला के बाद बड़ा देर तक जगा लें, केहू टीवी देखा था, केहू कुछ करा था, कई कई घंटा तक लोग जगा लें, कितना लोग 2 बजे तक जगत आटे, कितना लोग 3 बजे तक जगत आटे, जे देर तक जगा था ओकर सेहत के ऊपर का जौन असर पड़ेला?
6: देखिए वो हर तरह से जैसे आदमी डिप्रेशन में आ जाता है ऐसी स्थिति में और उसका जो मानसिक स्थिति है मानसिक संतुलन वो धीरे धीरे करके बिगड़ता जाता है और आजकल यह बीमारी सबसे ज़्यादा है। रात में देर तक जगने से अपनी दिनचर्या को सही नहीं रख पाते हैं।
5: एक आदमी के स्वस्थ रहला खातिर कितना घंटा का नींद लिहल जरूरी हो खेला?
6: कम से कम 6 घंटा
5: जी,
6: कम से कम 6 घंटा व्यक्ति सोवे।
5: मिश्रा जी, हमन के दिनचर्या कैसन होके ताकि हमन के स्वस्थ रह सकी, आप हमरे एक कार्यक्रम में एली और हमरे पंच भाई लोगों के इतना निमन और गह गह जानकारी देली, एकरे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
7: हाँ भैया लोगन, देखा भेंटवार्ता सुनल गई हमारी दिनचर्या कैसी हो जानकारी देते रहे हैं दिवाकर मिश्र, इनसे बतौलें भैया क्रिश्चन जी, तो इनके धन्यवाद। अब भैया आइन लगे हाथ जौन बा गीत गौन ही हो जा, सुनल जा गीत।

हाँ ये देखा गीत गौने सुने के मिलल। उम्मीद बा कि अपन पंच भाई उनके पुरहर मन मनसाइन भैल हुई। यही गीत गौने के साथे अपने चलने का जून भी हो गेल, चलल जाए। पंचो जय हिंद।

ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में हिंदी और भोजपुरी में क्षेत्रीय समाचार हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथे हम वेद प्रकाश पाठक। देश आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी रक्षा क्षमता के मजबूत कैले के दिशा में एगो औरियो महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कैले हो। रक्षा अनुसंधान आ विकास संगठन DRDO अनमैंड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल UL PGM V3 के अंतिम विकास परीक्षा के सफलता के साथे पूरा कैले बा।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह UL PGM V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षण के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के दिशा में एगो रणनीतिक उपलब्धि बतौले हम हैं। सर्वोच्च न्यायालय जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना करौले के केंद्र सरकार के फैसला के चुनौती देवे वाली याचिका के आज खारिज कर दिहलस। अदालत कहले हवे कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आवेला। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के अध्यक्षता वाली पीठ कहले हवे कि पिछड़ा वर्ग खातिर कल्याणकारी उपाय करे बदे सरकार के उनकर संख्या जानल जरूरी बा। पीठ कहलस कि एह तरह का आंकड़ा इकट्ठा कैले में कौनो बुराई नहीं हो। सर्वोच्च न्यायालय काली जन सुरक्षा के देखत रेबीज से संक्रमित लाइलाज बीमारी से ग्रसित चाहे ढेरे खतरनाक कुत्तन के मौत का इंजेक्शन दिहल गैले के अनुमति दे दिहलस। एगो रिपोर्ट।
2: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति NV अंजारिया की पीठ ने कहा कि उन क्षेत्रों में कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिया जा सकता है जहां कुत्तों की आबादी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है और जहां कुत्तों के लगातार काटने और आक्रामक हमलों की घटनाओं से जन सुरक्षा खतरे में पड़ रही हो। न्यायालय द्वारा ये आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान के मामले में जारी किया गया है। समाचार तनवीर फातिमा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव के लेके गठित संयुक्त संसदीय समिति कहले हवे कि लोकसभा, विधानसभा आ स्थानीय निकाय चुनाव एक के साथे करौले से करीब 7 लाख करोड़ रुपया के बचत हो सकेला। समिति के अध्यक्ष आ लोकसभा सांसद PP चौधरी काली संजा गुजरात के गांधीनगर में पत्रकार लोगों से बतियावती जानकारी दिलें। वहां के कहलें कि यह कदम से देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% तक लेकर बढ़ोतरी हो सकेला।
3: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरे तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
0: प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी बा। ऐसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सतही एकरे लगे के कई जिलन के साथे साथे पश्चिमी जिलनों में जनजीवन पुरहर तरीका से प्रभावित बा। मौसम विभाग 22 मई ले राज्य में कुछ जगहिन पर भीषण लू का रेड अलर्ट जारी कैले हो। विभाग के मुताबिक एह दौरान रतियों में उमस पड़ले क अनेसा बा। एगो रिपोर्ट।
4: कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। रातें भी असामान्य रूप से गर्म हो गई हैं और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। दिन चढ़ते ही सड़कें सूनी हो जा रही हैं और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की तादाद बढ़ गई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: भीषण गर्मी आ उमस के देखत प्रदेश के कुछ जिलन में स्कूलन में छुट्टी घोषित कर दिहल गई बा। एह बीचे मौसम विभाग प्रदेश के पूर्वी या पश्चिमी इलाकन में मौसम शुष्क रहले के साथ ही तेज सतही बेयरियो चलले क संभावना जतौले हो। समाचार पूरा भइल, नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैंड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल UL PGM V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने UL PGM V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक रणनीतिक उपलब्धि बताया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया। अदालत ने कहा है कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों से जुड़े कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कल जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित, लाइलाज बीमारी से ग्रसित या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की अनुमति दे दी। एक रिपोर्ट।
2: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति NV अंजारिया की पीठ ने कहा कि उन क्षेत्रों में कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिया जा सकता है जहां कुत्तों की आबादी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है और जहां कुत्तों के लगातार काटने और आक्रामक हमलों की घटनाओं से जन सुरक्षा खतरे में पड़ रही हो। न्यायालय द्वारा ये आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान के मामले में जारी किया गया है। समाचार से तन्वीर फातिमा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद PP चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस कदम से देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
3: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और का इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, सबको का अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सहित आसपास के कई जिलों समेत पश्चिमी जिलों में भी जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। मौसम विभाग ने 22 मई तक राज्य में कुछ स्थानों पर भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक इस अवधि में रात में भी उमस भरी गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
4: कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। रातें भी असामान्य रूप से गर्म हो गई हैं और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। दिन चढ़ते ही सड़कें सूनी हो जा रही हैं और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की तादाद बढ़ गई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: भीषण गर्मी और उमस को देखते हुए प्रदेश के कुछ जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में मौसम के शुष्क रहने के साथ साथ तेज सतही हवाएं चलने की भी संभावना जताई है। समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।

मीडियम वेव 330.97 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती बारी।

0: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
1: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
0: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
1: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
5: पंचों जय जवान जय किसान। भैया देखा, नारा लगल बैठकी की शुरुआत हो गई। पंच भाई भैया हमेशा यह जुगाड़ में रहा है कि कुछ ऐसा काम कर जाए जौने से भैया आमदनी अपन बढ़े। अब कुछ फसल भैया ऐसा बानी कि जौने के बाजारी में हरदम बढ़िया दाम मिलेला और हरदम भैया ओकर मांग भी रहे।
6: बारह महीना भैया ओकर जरूरत रहला और जौन बा वो हर कई तरह से हेल्दी भी होला, स्वास्थ्य खातिर बहुत अच्छा।
5: अब भैया देखा मनई के भैया अगर खाना बनावे के तो हल्दी के जरूरत पड़ेला, बिना हल्दी के काम नहीं चला। केहू के चोट लग गई तो जौन बा हल्दी या दूध पियावल जाला। यही तरह से भैया अदरक के जौन बा तमाम उपयोग बा औषधीय उपयोग जौन बा हल्दी और अदरक के होखेला। लेकिन अगर केहू खेती कर जाता है एकर फसल के रूप में के उगावल चाहता तो हल्दी और अदरक के खेती कैसे कल जा सकेला, आज यही विषय पर अपन किसान भाई जानकारी सुने डॉक्टर अजीत कुमार श्रीवास्तव से और इनसे बत कही कर रहा हूँ देवता प्रसाद पांडे।
7: आज अपने बीच डॉक्टर अजीत कुमार श्रीवास्तव जी अपने बैठकी में आयल हैं। किसान भाई, आप लोगों के अदरक और हल्दी के खेती के बारे में एक कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी दी है, हम आपके परिचय करवा दें कि डॉक्टर अजीत कुमार श्रीवास्तव महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र चौक माफी पीपीगंज गोरखपुर में वैज्ञानिक उद्यान हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके स्वागत है और एक साथ ही हम जानना चाहब कि अपने दैनिक जीवन में अदरक और हल्दी के का उपयोग है और उसकर महत्ता का है, एक बारे में किसान भाई लोग उनके बताओ।
8: हल्दी हमारे देश की अति प्राचीन एवं धार्मिक रीति रिवाजों में प्रयोग की जाने वाली बहुपयोगी मसाला फसल है, जिसको भारतीय केसर के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न रूपों में जैसे स्वाद, महक तथा रंगों के रूप में किया जाता है। इसका उत्पत्ति स्थान दक्षिण एशिया में भारत माना जाता है। हल्दी के साथ साथ हम अदरक की बात करते हैं तो अदरक एक मुख्य व्यावसायिक नकदी फसल है। अदरक को शुद्ध फसल के रूप में तथा छायादार स्थानों पर बागवानी वृक्षों के साथ उगाया जाता है। भारतवर्ष में अदरक घर घर में प्रयोग की जाने वाली आम मसाला फसल है। भारत में उगाई जाने वाली अदरक की गुणवत्ता विश्व में सर्वोत्तम मानी जाती है। इसे हरे ताजे एवं सूखे सौंठ के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह गरम प्रवृत्ति का मसाला है जो कफ एवं गले की समस्या में लाभप्रद है। इसके साथ ही साथ हम हल्दी को भी बताना चाहेंगे। हल्दी में कैंसर प्रतिरोधी एवं वायरल प्रतिरोधी गुण होने के कारण इसका दवा व्यवसाय में प्रयोग किया जाता है।
7: आपके कहने का मतलब भैल कि हल्दी और अदरक अपने धार्मिक जीवन से लेके अपने रोग व्याध के दूर करे खातिर तक जौन है एकर इस्तेमाल होला, एकर प्रयोग होला। ए लिए हम समझत हैं कि अपने दैनिक जीवन में एकर उपयोगिता काफ़ी है। हम एकरे बार आपसे जानल चाहब कि एकर खेती कैसने जलवायु में हो सकेले, का अपने पूर्वांचल में भी एकर खेती हो सकेले?
8: इसकी खेती के लिए अपने पूर्वांचल का जो मौसम है वो उपयुक्त है। अदरक की खेती के लिए उचित जल निकास वाली दोमट व बलुई दोमट मृदा, जिसका की पीएच मान 6.5 से 7 के मध्य हो, भारी या चिकनी दोमट भूमि अदरक और हल्दी की खेती के लिए अनुपयुक्त होती है।
7: अच्छा, यानी कि मटियार जमीन होके वो हमें एकर खेती नहीं हो सकेले, दोमट या बलुई दोमट खेती हो अगर जब माटी है तो हमें एकर जौन है खेती बड़े पैमाने पर हो सकेले। एहलिए हो सकेले कि कंद वाली फसल है, एहलिए एकर ये जमीन जौन है फूफर हो। अच्छा, ये बताएं कि माटी तो आप बता देने कि भाई एकर बलुई दोमट हो या दोमट हो, तो फिर एकर तैयारी भी करे ना बात आवत हो, तैयारी कैले में का सावधानी बरते पड़ी?
8: इसकी बुआई का जो समय है वो अप्रैल से जून के मध्य होता है। इसके प्रकंद को बोने से पहले 0.5% एगलाल या डाइथेन M45, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इसकी खेती के लिए उचित जल निकास वाली दोमट व बलुई दोमट मृदा उपयुक्त होती है। तो इस मृदा की तैयारी के लिए हम 2 से 3 गहरी जुताई करके उसमें कम से कम 10 से 15 टन गोबर सड़ी खाद मिला के 2 से 3 जब गहरी जुताई कर लेते हैं तो उसके बाद पाटा लगा के ये खेत हमारे बोने के लिए तैयार हो जाता है।
7: अब बात आवेले प्रजाति के और ओकरे बोले के समय, ये दो चीज़ है। तो अदरक के कौन अपने यहाँ उन्नतशील प्रजाति आती, ओकर बोले के समय का हुई, और हल्दी के उन्नत प्रजाति का बाटिन ओकर बोले का समय हुई, एके बताओ जा।
8: हल्दी की जो प्रजाति हैं उसमें सुवर्णा, सुगना, सुदर्शन, IISR प्रभा, IISR प्रतिभा, रोमा, रश्मि, सुरोमा, राजेंद्र, सोनिया नामक प्रजाति जो हैं हल्दी के लिए उपयुक्त हैं। इसके अलावा जो अदरक है, अदरक के लिए नाडिया, समस्तीपुर, बरुआ सागर व करक्कल नाम की जो प्रजाति है, इसके साथ साथ सुप्रभा, सुरुचि, सुरभि, वर्दा और रजता नामक प्रजातियां उपयुक्त हैं।
7: यह पूर्वांचल में ही हो सकेली सब प्रजाति
8: जी,
7: बोल जा सकेली?
8: हाँ,
7: एकर उचित समय का होई?
8: इन दोनों ही फसलों के बोने का जो उचित समय है वह अप्रैल से लेके जून के मध्य तक बो सकते हैं।
7: अगर केहू किसान भाई एक हेक्टेयर खेती कैल चाहत हो के अदरक या हल्दी के, तो फिर हमें बिया ओके कितना लगी और ओकर कुछ माप हुई ना कि कितना वजन के बिया जो है वो हमें लगावल जाए?
8: जी,
7: एक बताओ जा।
8: जी, जैसा कि हम बताना चाहेंगे कि अदरक और हल्दी के लिए जो, जैसा कि आपने पूछा कि कंद का वजन, तो इसके लिए हम 20 से 25 ग्राम का जो है वो कंद का वजन उपयुक्त होता है, और उसमें कम से कम 2-3 आँखें होनी चाहिए, और बुआई से पूर्व इन कंदों को बोरों में लपेट कर 16 से 24 घंटे तक रखने से अंकुरण शीघ्र होता है। इसके साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि जैसे हल्दी की बात करें तो इसके लिए कम से कम 15 से 20 कुंतल राइजोम या उसके बीज की आवश्यकता होती है, और इसी तरह अदरक की बात करें तो इसके लिए लगभग 16 से 18 कुंतल बीज चाहिए।
7: एकर उपचारण भी करे पड़े?
8: जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। बीज का जो है वो उपचार बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम जो खेत जनित, मिट्टी जनित बीमारियां हैं और बीज जनित बीमारियां हैं उनका हम बचाव समय से कर लेते हैं, समय पूर्व कर लेते हैं। इसके लिए हम एगलाल नाम की दवा है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उसका 0.5% यानी कि 5 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी में मिलाकर उसका घोल तैयार कर लेते हैं, या हम एक डाइथन M45 नामक दवा आती है उसका 0.2% लेके, मतलब कि 2 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी में घोल बना के तैयार करते हैं, इसको डुबो देते हैं, डुबोने के बाद छायादार स्थान में रख के सुखा लेते हैं, इसके बाद हम इसकी बुआई करते हैं।
7: अब बात आवेले कंध से कंध के दूरी और लाइन से लाइन के दूरी,
8: जी
7: कितना अपन किसान भाई लोग रखे।
8: बिल्कुल, अदरक और हल्दी की बुआई का 2 तरीका है, या तो इसको समतल खेत में बोते हैं अथवा इसको मेड़ पे बोते हैं।
7: अच्छा।
8: तो अगर समतल भूमि में पंक्ति से बो रहे हैं तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर व कंध से कंध की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हैं, जबकि यदि हम मेड़ों पे इसकी बुआई कर रहे हैं तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर व कंध से कंध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं।
7: ये जौन उपचार के आप विधि बतौली हैं, दवा बतौली हैं, का हल्दी और अदरक दोनों के लिए एक चीज़ काम करी?
8: जी बिल्कुल, ये दोनों के लिए एगलाल और डाइथन M45 दोनों ही, अदरक और हल्दी दोनों ही फसल के लिए उपयुक्त हैं।
7: खाद और उर्वरक के बारे में थोड़े बताओ।
8: अदरक और हल्दी जैसे कि हम बो देते हैं, इसमें बोने के बाद ही जो है हम एक बिछावन का प्रयोग करते हैं सूखी पत्तियों का।
7: अच्छा, अच्छा, अच्छा।
8: जी जी, इसके बिछावन का हम प्रयोग करते हैं जो कि बड़ा लाभप्रद है। प्रथम बिछावन जो है हम हरी पत्तियां या घास फूस की पत्ती की एक परत बिछाकर बुआई के तुरंत बाद कर देते हैं।
7: अच्छा।
8: तथा दूसरी जो है बिछावन गोबर की खाद की पतली परत बुआई के लगभग 35 से 40 दिन के पश्चात करते हैं।
7: ये बिछावन जौन होई, वो बिछावन का मतलब ये लिए कि जौन होकर अंकुरण अच्छे ढंग से हो।
8: जी
7: ये ना
8: जी।
7: अच्छा, एक मतलब जौन बिया गाड़ल जाए, कंद गाड़ल जाए, ओकर गहराई भी कुछ हो ना, ये लिए क्योंकि बहुत या तो उथली हो या तो गहरी हो, कितना होकर रखल जा गहराई?
8: गहराई जो है लगभग 5 सेंटीमीटर रखते हैं।
7: अच्छा।
8: हाँ, और जो है बहुत गहरा नहीं बोते हैं। और ये जो हम बिछावन की बात कर रहे हैं, बिछावन से आपके 2 तरह के फायदे हैं।
7: हाँ।
8: एक तो इसमें जो हमारे खेत की नमी है
7: वो
8: नमी भी बनी रहती
7: है, सूर्य की रोशनी भी नहीं लगेगी।
8: जी, सूर्य की रोशनी नहीं आएगी। हाँ। दूसरा क्या है कि ये जब पत्तियां सड़ेंगी तो उसमें पर्याप्त मात्रा में जीवाश्म खाद भी,
7: जैविक खाद
8: भी मिलेगी जो कि पौधों की बढ़वार के लिए आवश्यक है। और इसके साथ साथ जब ये पत्तियां और गोबर की खाद पड़े रहेगी तो हमारे खरपतवार जो है, जो आवश्यक पौधे हैं,
7: वो
8: अपने आप नहीं जम पाएंगे।
7: अच्छा, एक अलावा भी कुछ रासायनिक उर्वरक इनके देवे पड़ी?
8: जी, रासायनिक उर्वरक भी देते हैं जो कि 120 60-60 की दर से देते हैं।
7: अच्छा, एक बार नंबर आवेले सिंचाई के,
8: क्योंकि
7: गर्मी का मौसम होला।
8: जी,
7: सिंचाई कैसे और कब करें और कितना सिंचाई हमें करे पड़ी उनके?
8: शुरुआत में तो हम इसकी सिंचाई जो है लगाने के बाद इसको जो है 4 से 5 सिंचाई गर्मी के मौसम में देते हैं, और वर्षा ऋतु आने के बाद हमें इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है।
7: कुछ कीट और व्याध भी ऐसा बात है जौन की फसल के प्रभावित करते हुए?
8: जी।
7: तो कौन कीट और कौन व्याध है जौन की अदरक और हल्दी के फसल के प्रभावित करेले और ओकर निदान का हो सकला?
8: इसमें जो है मुख्य रूप से जो है एक छेदक कीट है वो लगता है, जिसके लिए प्रोफेनोफास नामक दवा जो है हम स्प्रे करते हैं।
7: तो पत्ती में लगाला कि कंद में लगा?
8: कंद में लगता है।
5: हाँ भाई, जानकारी सुने के मिलल, हल्दी आ अदरक का खेती कैसे कल जाए ए बारे में जानकारी देते रहे डॉक्टर अजीत कुमार श्रीवास्तव, इनसे बत कही कलम भैया देवता प्रसाद पांडे। उम्मीद बा कि यह जानकारी के अपन किसान भाई ध्यान से सुन ले हुई हैं और पूरा लाभ भी उठाई हैं। जानकारी तो हो गई, पंच भाई अगोरत रहें, जोहत रहें कि भैया जानकारी के बाद कुछ मन मनसाइन हुई, तो अब देर कैले के जरूरत नहीं बा, पंच भाई मन मनसाइन करें, फिर हमन के बत कही कैल जाए।

0: और यह विषय पर जानकारी सुनाओ हूँ डॉक्टर मनबोध प्रसाद।
1: किसान भाइयों, कहते हैं कि पुत्रो हम पृथिव्या, अर्थात भूमि सभी जिंसों का उत्पादक होने के कारण मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। मिट्टी ही पृथ्वी की आत्मा है और माँ की तरह सभी का पालन पोषण करती है। कृषि वैज्ञानिकों और किसानों की कड़ी मेहनत के साथ सरकार की सकारात्मक नीति के फलस्वरूप पिछले 6 दशकों में जहां एक ओर कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वहीं फसलों को पोषक तत्वों की अपर्याप्त और असंतुलित खुराक मिलने के कारण भूमि के पोषक तत्व भंडार का दोहन होता रहा और मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती गई। हरित क्रांति के शुरुआती दौर में हमारी भूमि में केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्व की कमी थी, अतः उन्नत बीज, सिंचाई जल और नाइट्रोजन व फास्फोरस युक्त उर्वरकों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। परंतु अन्य पोषक तत्वों का अनवरत दोहन होते रहने से मिट्टी में खासकर पोटेशियम, जिंक और गंधक की कमी हो गई। अब तो बड़े पैमाने पर बोरान, लोहा और मैग्नीज आदि के कमी की पुष्टि हो रही है। सघन कृषि में गंधक की व्यापक कमी भी कृषि उत्पादकता में ठहराव के लिए उत्तरदायी साबित हो रही है। केवल नाइट्रोजन व फास्फोरस धारी उर्वरकों का सीमित उपयोग मृदा स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हुआ है। महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा था कि हमारी जमीन में सभी की आवश्यकता को पूरा करने का सामर्थ्य है, परंतु उनकी लालच को पूरा करना संभव नहीं है। मिट्टी में विभिन्न पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए किसानों को देसी तकनीकों को अपनाने के लिए मृदा स्वास्थ्य संवर्धन, उत्पादकता वृद्धि और आर्थिक लाभ हेतु कुछ उपाय अपनाने चाहिए। जैसे सबसे पहला प्रथम दायित्व है कि हम अपने मिट्टी का समय समय से जांच कराते रहें। अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए फसल को पोषक तत्वों की सही खुराक मिलनी चाहिए, जिसका निर्धारण मिट्टी की जांच कराकर किया जाता है, ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति के अनुरूप पोषक तत्वों का इस्तेमाल किया जा सके। इसलिए यह हमारा सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है। मिट्टी की जांच से मिट्टी की क्षारीयता या अम्लीयता या किसी तरह की समस्या है तो उसकी जानकारी होती है। इसके साथ ही मिट्टी में प्रमुख गौण व सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता की जानकारी होती है। संतुलित फसल पोषण से कीट एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मिट्टी की जांच कृषि प्रबंधन का ऐसा तरीका है जिससे फसलों की पैदावार और लाभ में सार्थक वृद्धि होती है। इसी के साथ ही हमको अपने जमीन में कार्बनिक पदार्थों की भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहला उपाय है हरी खाद का प्रयोग। हरी खाद सनई, ढैंचा, मूंग आदि के 6 सप्ताह की फसलों को खेत में पलटकर तैयार की जाती है, जो मिट्टी की सेहत सुधारने में मदद करती है। हरी खाद के प्रयोग से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है, पोषक तत्वों की उपलब्धता तथा कार्बन पदार्थ में वृद्धि से मिट्टी की उर्वरता एवं उत्पादकता में सुधार होता है, मिट्टी की संरचना एवं वायु संचार में सुधार होता है, कीटों, रोगों एवं खरपतवारों के नियंत्रण में सहायता मिलती है। इसके साथ ही सूक्ष्म जीवों तथा अन्य मृदा जीवों की वृद्धि होती है, जिससे मिट्टी में जैव उर्वरता एवं जैव विविधता बढ़ती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके साथ ही कंपोस्ट खाद, जो कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में बढ़ाने का काम करता है, तो उसके लिए हम सघन कृषि में न केवल जैविक खादों का प्रयोग घटा है, बल्कि मिट्टी के उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाले परंपरागत उपायों के प्रति भी लापरवाही हुई है। गुणवत्ता युक्त कंपोस्ट, गोबर की खाद, विभिन्न प्रकार के कंपोस्ट जैसे फास्फो सल्फो नाइट्रो कंपोस्ट, नाडेप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, सिटी कंपोस्ट, मुर्गियों की खाद, फसल अवशेष प्रबंधन तथा चीनी मिलों से निकलने वाली फ्रेशमट का प्रयोग करके हम भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही बायो फर्टिलाइजर,

0: यानी जैव उर्वरकों का इस्तेमाल। जैव उर्वरक ऐसे पदार्थ हैं जिसमें जीवित सूक्ष्म जीवाणु यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जब इनसे बीज, कंद, जड़ या भूमि को उपचारित किया जाता है तो पौधे को आवश्यक तत्वों की आपूर्ति में वृद्धि होती है। जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से नाइट्रोजन यौगिकीकरण, फास्फोरस एवं जिंक की घुलनशीलता तथा पोटाश की गतिशीलता में वृद्धि होती है। पौधों का तेजी से विकास होता है। रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल में कमी आती है। जैव उर्वरक पर्यावरण हितैषी है, इनसे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, साथ ही इन पर लागत भी कम आती है। इसके साथ ही भूमि में फसल चक्र का अपनाना ये बहुत ही आवश्यक है। एक ही खेत में विभिन्न फसलें क्रमिक रूप से लगाना फसल चक्र कहलाता है। ज्यादातर हम देखें तो हम लोग जैसे धान गेहूं या ज्वार गेहूं, बाजरा गेहूं, मक्का गेहूं या धान गन्ना आदि फसल उगाते हैं। इन फसल चक्र में भूमि से काफी मात्रा में पोषक तत्वों का ह्रास होता है। ये फसलें ज्यादा मात्रा में पोषक तत्वों को भूमि से ग्रहण करती हैं, जिसके कारण भूमि का स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि फसल चक्र में दलहनी फसलों को शामिल किया जाए तथा इनको निश्चित रूप से एक निश्चित अंतराल पर इन दलहनी फसलों को, जैसे कभी गहरी जलवाड़ी, कभी उथली जलवाड़ी, झकड़ा जलवाड़ी फसलों को उगाना, जैसे धान गेहूं के बाद मूंग या बाजरा गेहूं के बाद मूंग या मक्का आलू के बाद मूंग की खेती करने से जमीन में उर्वरा शक्ति बनी रहेगी, उसको ताकत मिलेगी, उसमें पौधों को ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व मिलेंगे। इसके साथ ही हम जैविक के साथ साथ रासायनिक उर्वरकों का भी इस्तेमाल करते हैं। बिना उसके तो उर्वरक के तो खेती संभव नहीं लगती। इसलिए मिट्टी परीक्षण के परिणाम के अनुसार मिट्टी में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए किसानों को संतुलित उर्वरक प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति के अनुसार पोषक तत्वों की सही खुराक से मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है और संतुलित फसल पोषण से फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, फसल का उत्पादन बढ़ता है तथा जो भी हमें उत्पाद प्राप्त होता है उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है। नई तकनीकी जैसे नैनो उर्वरकों के इस्तेमाल के द्वारा भी हम अपने भूमि और फसल को बचा सकते हैं, उनको अच्छा पोषण दे सकते हैं, साथ ही पर्यावरण प्रदूषण को भी कम कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारी हमारी जमीन है जो समस्याग्रस्त है, कहीं कहीं ऊसर है, कहीं कहीं पर क्षारीय है, कहीं कहीं पर अम्लीय है, तो मिट्टी परीक्षण के आधार पर जो इन भूमियों के लिए जो संस्तुति मिलती है, जैसे अगर ऊसर है तो उसके लिए जिप्सम या पाइराइट, और अगर अम्लीय है तो उसके लिए चूने के प्रयोग द्वारा इस भूमि का सुधार करके भी हम भूमि स्वास्थ्य प्रबंधन तथा उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं।
1: हाँ भैया, देखो वार्ता सुनल गए मृदा स्वास्थ्य संवर्धन के उपाय, जानकारी देते हैं डॉक्टर मनबोध प्रसाद, इनके दिया धन्यवाद भैया। अब भैया देखो जौन बा अपने जो स्टूडियो घड़ी बा इशारा कर दिया कि अपने बैठकी का समय पूरा होता तो चल जा।
2: पंचों जय जवान जय किसान।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं, ग्राम पांडेपुर जनाड़ी, जनपद बलिया से सविता पुत्री रमा शंकर राम के लापता होने की सूचना है। 13 सितंबर 2025 से लापता सविता की उम्र 17 वर्ष और कद 4 फीट है। सविता राम के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया मोबाइल नंबर 8081647608 पर सूचित करें। एक अन्य मोबाइल नंबर नोट करें 8468072689। ग्राम बरगहा थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर से विद्या कुमारी पुत्री राम किशोर यादव के गायब होने की सूचना है। 14 जनवरी 2026 से गायब विद्या कुमारी की उम्र 14 वर्ष है, रंग सांवला और कद 5 फीट है। इनके बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने पर कृपया मोबाइल नंबर 8957589031 पर सूचित करें। मोबाइल नंबर एक बार फिर नोट करें 8957589301। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुईं। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। इसमें आज कलाकार हैं ब्रज बिहारी दुबे।

0: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
1: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।

0: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
1: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
0: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
1: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
0: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
1: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
0: For details, log on to www.ddindia.com।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
3: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
4: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

लोकगीत के कार्यक्रम लोकधारा में आज कलाकार हैं ब्रज बिहारी दुबे।

0: लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में आज कलाकार थे बृज बिहारी दुबे। आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र इस समय आपकी सेवा में है। प्रस्तुत है भोजपुरी भाषा का कार्यक्रम देस हमार। इसमें लीजिए सुनिए वार्ता भोजपुरी क्षेत्र का लोक कला। वार्ताकार हैं जयप्रकाश मिश्र।
1: भोजपुरी क्षेत्र का लोक कला लोक संस्कृति का अंग है। अभिजात्य कला ऐसन शास्त्री और खालिश सौंदर्य बोध से बदल नहीं रहेला। सहजता संदेश और उपदेश का प्रवृत्ति लोक कला में खास तौर से मिलेले। लोक कला का आधार लोक विश्वास लोक रुचि और लोक मत होला। कौनो समाज के सभ्यता संस्कृति अभ्युदय आकांक्षा और विकास के समझे खातिर वहाँ के लोक कला के जानल समझल जरूरी होला। लोक कला समाज का सही आईना होला। लोक कला सामान्यतः भोजपुरी लोक कला के विभिन्न रूप के भोजपुरी लोक साहित्य के अंतर्गत रखल जाला। बाकी अपने ध्यान से देखल जा तब पायल जाई कि भोजपुरी कला का अधिकांश रूप एक दूसरे से जुड़ल बाटे। जौना रूप के लोक साहित्य मानल जाला ओके बिना गवले बजौले नचौले कुदले प्रस्तुत नहीं कई जा सकेला। कोनो भोजपुरी लोकगीत का कल्पना बिना गवले नहीं कई जा सकेला। भोजपुरी लोकगीतन का हर भेद और रूप के राग अलग अलग बा। कौनो कौनो लोकगीत इतना मार्मिक और राग सम्मत बा कि ओके जस के तस शास्त्रीय संगीत में रख लिहल बा। इतने नाई कई गो भोजपुरी कथनों गा के कहल जाला। भोजपुरी चित्रांकन का अलग समृद्ध रूप बा। एकरा अलावा अनेक ऐसन कला रूप भोजपुरी समाज में बाटे कि ओके छोड़ के भोजपुरी समाज का पूरा तस्वीर सामने नाई आ सकेला। एमे सबके समाहित कह के सबकर संक्षिप्त विवरण कई जा सकेला। भोजपुरी लोक कला भोजपुरी माटी के अकृत्रिम अकुंठ अभिव्यक्ति है। भोजपुरी माटी के स्वभाव सुख दुख जीवन शैली सबके झांकी भोजपुरी लोक कला में मिली। अपना समाज के साथे भोजपुरी लोक कला हमेशा से जुड़ल बा। भोजपुरी समाज नेह छोह वाला समाज है, रिश्ता जोड़े वाला समाज है। भोजपुरिया आदमी अपने आप में कब्बो नहीं रह सकेला। वो अपन समाज और परिवेश से गहराई से जुड़ल रहेला। यहाँ एगो बात कहल जरूरी बा कि भोजपुरिया समाज में आदमी के साथे साथे प्रकृति भी रहेले। परिवेश के छोट से छोट चीज रहेला। आदमी जीव जंतु निर्जीव सजीव सब मिल के भोजपुरिया समाज बनावेला। यह से भोजपुरी लोक कला में पेड़ नदी नाला पशु पक्षी अड़ोसी पड़ोसी सब कौनो न कौनो रूप में आपके उपस्थित मिली। भोजपुरी लोक कला के विषय वस्तु का व्यापकता बहुत अधिक बा। एगो बात और कला के शायदे कौनो रूप होई जौना का नमूना भोजपुरी लोक कला में नहीं मिली। कहल जा सकेला कि भोजपुरी लोक कला व्यापकता और विविधता के लिहाज से अत्यंत संपन्न बा। भोजपुरी लोक कला के मूल स्वर लोक मंगल कहवे। भोजपुरी आदमी अपना से अधिक महत्व दूसरा के देला। वो अपने दुख सहल पसंद करेला और दूसरा के दुख नहीं दिहल चाहेला। भोजपुरी आदमी करीब स्वभाव भोजपुरी लोक कला में पग पग पर झलकेला। भोजपुरी लोक कला सबके साथे लेके सबके मंगल कामना का बात करेला। भोजपुरी संस्कृति उत्सव धर्मी संस्कृति हवे। भोजपुरी समाज खेतीहर समाज है, यही से एकर अधिकांश उत्सव खेती से जुड़ल होला। भोजपुरी समाज का रिश्ता प्रकृति से बहुते गहराई से भी जुड़ल अनेक उत्सव खेती में जुड़ल होला। भोजपुरी समाज का रिश्ता यह तरह से प्रकृति में बहुते गहराई से जुड़ल अनेक उत्सव भोजपुरी समाज में मनावल जाला। इतने नहीं, यहाँ खेती का काम धाम पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर करेला। बरखा ना होई तो फसल सूखी जाई। भोजपुरी लोक कला में कब्बो फसल प्रकृति के मनावल जाला आ कब्बो ओकरा प्रशंसा में कसीदा काढ़ल जाला। वैसे तो भोजपुरी कला में जीवन का हर छवि के उतारल गईल बा। बाकिर श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य, रस का प्रधानता यहाँ मिले ले। लोकगीत, कथा, चित्रांकन आदि में भोजपुरी लोक कला का विशेषता देखल जा सकेला। भोजपुरी लोक कला में एगो बहुत बढ़न खासियत ई है कि बहुत कलात्मक ढंग से कलाकार पहले उपयोगी चीजन के बनावेलन, फिर ओकरे छवि के कला विविध रूप में उतार लेलन। एगो उदाहरण से बात आसानी से समझ में आ जाई। कुदारी खेती के काम में आवे वाला उपकरण है। एके तैयार करे में भोजपुरी कलाकार अपन हुनर दिखावेलन। आषाढ़ महीना में खेती के समहुत करे समय बनावल जाला जाए वाला चौक में एकर चित्रांकन होला और कुदारी पर हाथे का चपो मराला। यह तरह एगो उपकरण कुदार भोजपुरी लोक कला में अभिव्यक्ति के माध्यम से उपयोग ओकर नैसर्गिकता रूप में कई जाला। यानी माध्यम में कोनो तरह से काट छांट बनाओ।

0: खाल मेल ना कही जाला। अगर अभिव्यक्ति के हिसाब से भाषा तो उसमें बिना कोनो हेर फेर के मूल रूप में ही प्रयोग में ले लिहल जाई, प्राकृतिक रूप में उपयोग में एके लिहल जाला। चौक पूरे खातिर चौरठ तो खाली चौरठ, आटा तो खाली आटा, हरदी तो खाली हरदी, नवग्रह के पूजा में चावल के अलग अलग रंग के रंगल जाला। भोजपुरी लोक कला यथार्थ अंकन के पक्षधर है, आरोपित आदर्श एकरा ना भावे। भोजपुरी लोकगीत यह तथ्य के भली बात उजागर करेले कि आदमी के मन का दुर्बलता, समाज में व्याप्त अत्याचार अनाचार का यथार्थ चित्रण करत उपदेश का प्रविष्टि भोजपुरी लोक कला में मिली। आदर्श यहाँ ऊपर से रोपल नहीं जाला, आगे भोजपुरी लोक कला का विविध रूप का वर्णन कैले में पीढ़ी दर पीढ़ी से जन जन के कंठ में रचल बसल भोजपुरी गीत जौना में जनजीवन का पुरहर छवि झिलमिला उठेले। भोजपुरी लोकगीत कहाला, भोजपुरी लोकगीत में मनोरंजन का भरपूर क्षमता होला। भोजपुरी सैकड़न बरिस में अनगिनत लोकगीत जनजीवन में प्रचलित बा। स्त्री पुरुष सब एके गावेलन, आनंद लेलन। ये सबके रचनाकार रचनाकाल के बारे में पता नहीं चलेला, हालांकि अब कुछ लोकगीतन में रचनाकार अपन नाव का उल्लेख करत बाटा। लोकगीत के पढ़ के ई पावल जाला कि यह में भाव और अनुभूति पर ज्यादा जोर दिहल गईल बा। अलंकार चमत्कार यहाँ ओढ़ले मिली, जितना बाकी खातिर जरूरी बा। सुंदर सुंदर उपमा वक्रोक्ति यहाँ मिली, लेकिन प्रयोग में सहजता मिली। ये शब्द प्रयोग के लिहाज से यहाँ ऐसा शब्द मिली है जौन लोक व्यवहार में आवेला, भले उस शब्द घिसल पीटल होखे। भाषा में कौनो बनावट काट छाट लोकगीत बर्दाश्त नहीं करेले। यहाँ एगो ध्यान देवे वाली बात बा कि लोकगीत गावे खातिर लोकगीत में गायता जरूरी होला। भोजपुरी लोकगीत में भोजपुरी समाज का तस्वीर पग पग पर मिली। जब से खेती बारी शुरू भई, स्त्री पुरुष रिश्ता के डोर में वहाँ बध गई। ये सबसे जुड़ल भोजपुरी लोकगीत एक ओर से दूसरे ओर पहुँचे लगल। औद्योगिकरण के जमाना में पुरुष जब कमाए खातिर बहरा निकलेला तो भोजपुरी लोकगीत वियोग के वेदना में गावल जाला। जब या अंत में भोजपुरी लोकगीत अपन समाज के सावधान करे के रूप में अख्तियार कैल गईल बा। इतिहास के पन्ना में ई देखल जा सकेला कि भोजपुरी लोकगीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम से हरदम अगुवाई चलल बा। भोजपुरी लोकगीत का खासियत है कि समय और समाज हर दौर के गूंज यहाँ मिली। भोजपुरी लोकगीत बहुत प्रकार का होला, ऋतु संबंधी गीत, संस्कार संबंधी गीत, पर्व संबंधी गीत और व्रत संबंधी गीत, श्रम संबंधी गीत, भक्ति संबंधी गीत, ऋतु संबंधी गीत। भोजपुरिया मन अति संवेदनशील होला, वो उन्मुक्त होके प्रकृति के आंगन में खेलेला। ऋतु परिवर्तन के साथे प्रकृति में जौन बदलाव आवेला ओकर जमन रूप निखरेला। भोजपुरिया मन प्रकृति के रूप में उ सुघराई भर के निहारेला, प्रकृति के राग में राग मिलावेला। भोजपुरी लोकगीत के खजाना अनेक गीत ऐसन बा जमन ऋतु से जुड़ल बाटे, जैसे फगुआ फागुन में गावल जाला। फगुआ गीत में फगुआ त्योहार के जिक्र होला, एमे श्रृंगार रस का प्रधानता होला। भोजपुरी लोक चित्रांकन में ई देखल जाला कि ओमे चित्र बनावल जाला, ओके उठावल जाला, फिर बनावल जाला। आपन कला के प्रति कलाकार के ऐसा निर्लिप्तता का प्रणाम करे के चाही। यहाँ एगो ध्यान देवे के चाही कि कला खत्म नहीं होला, उठेले बनेले वैसे ही जैसे जीवन खत्म नहीं होला।
1: भोजपुरी क्षेत्र का लोक कला, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे जयप्रकाश मिश्र से ये वार्ता। इसके साथ ही भोजपुरी भाषा का कार्यक्रम देह समारोह समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत लीजिए सुनिए बांग्ला लोकगीत।

0: পারলেম না, কোন সাধনি তোমায় পাবো আমায় বলো না, কোন সাধনি তোমায় পাবো আমায় বলো না।
1: प्रादेशिक संगीत में भी आप सुन रहे थे बांग्ला लोकगीत। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए आपको आज के प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी दे दें।

हिंदी कार्यक्रम में रात्रि 8:15 पर सुनिएगा डॉक्टर ओपी सिंह से मनीष कुमार द्विवेदी की भेंटवार्ता। विषय रहेगा भारतीय शिक्षा एवं नैतिक आयाम।

0: यूरिया प्लस की बात है निराली, गुड़ है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली।
1: 30% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।

0: कार्यक्रम के प्रायोजक थे नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी के निर्माता इफको। अभी आप सुन रहे थे किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से बुरा हाल, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश, अगले 3 दिन तक जबरदस्त गर्मी की चेतावनी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ की अहम बैठक, गलत सूचनाएं फैलाने वाले नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। प्रदेश के 44 जिलों में कल होगी लेखपाल भर्ती परीक्षा, 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल, परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें। और प्रदेश में जारी स्वगणना का कल अंतिम दिन, 22 मई से शुरू होगी मकानों की गिनती। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आज 48 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा प्रदेश में सबसे गर्म जनपद रहा, जबकि हमीरपुर और प्रयागराज में पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के लिए लू चलने को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसी क्रम में प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने प्रदेश के सभी मंडलीय, जिला, संयुक्त शहरी और ग्रामीण चिकित्सा स्थानों में गर्मी से पीड़ितों को समुचित इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अस्पतालों में अतिरिक्त बेड, जीवन रक्षक दवाओं और आवश्यक औषधियों का पर्याप्त भंडार रखने के निर्देश दिए हैं। तेज गर्मी से वन्य जीवों को बचाने के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इटावा सफारी पार्क के उपनिदेशक विनय सिंह ने बताया कि सफारी में शेरों के लिए एसी और खस की चटाई का प्रबंध किया गया है।
5: सफारी पार्क में जो भी वन्य जीव हैं उनको गर्मी और लू से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं, जिनके अंतर्गत जो हमारे हाउस हैं उनमें खस की चटाई लगाना, इसके साथ कूलर को लगाते हैं ताकि कमरे का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। जो भी ब्रीडिंग वाली शेरनी है, उसके नवजात बच्चे रहते हैं, शावक रहते हैं साथ में, उनको एसी के माध्यम से उनके कमरे का तापमान मेंटेन किया जाता है।
4: गर्मी और लू से बचाव के लिए विभिन्न जनपदों में स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। फतेहपुर में जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं मिर्जापुर में भी 15 जून तक स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। कानपुर में जिलाधिकारी ने कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों को 31 मई तक बंद रखने का आदेश दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में आगामी नीट यूजी 2026 की दोबारा होने वाली परीक्षा के मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में श्री प्रधान ने परीक्षा को सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। प्रधान ने ऐसे नेटवर्कों पर कार्रवाई के निर्देश दिए जिसमें फर्जी जानकारी फैलाने वाले चैनलों की सक्रिय पहचान, उन्हें ब्लॉक करना और हटाना शामिल है। शिक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि गलत सूचना पर तुरंत रोक लगाई जा सके और परीक्षा प्रणाली की अखंडता की रक्षा की जा सके। प्रदेश में लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा कल 44 जिलों के 861 केंद्रों पर होगी। करीब 8,000 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में लगभग 366,700 अभ्यर्थी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
6: लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार ने तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि परीक्षा को शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिन जिलों में सर्वाधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे वहां विशेष सतर्कता बरती जाए। रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर अभ्यर्थियों और उनके परिजनों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए जाएं और होल्डिंग एरिया बनाए जाएं। उन्होंने सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने के साथ ही लोकल इंटेलिजेंस को भी सक्रिय रखने के निर्देश दिए। गर्मी के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों पर विद्युत आपूर्ति, पीने का पानी की व्यवस्था के अलावा नजदीकी अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखने को कहा गया है। परीक्षा की जिला और राज्य स्तर के कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी की जाएगी। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
4: परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने बरेली जंक्शन और मथुरा जंक्शन के बीच दो स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने की घोषणा की है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर लखनऊ परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है, जो 21 मई की रात 12:30 बजे गोरखपुर से रवाना होगी और सुबह 6:40 पर लखनऊ पहुंचेगी। वापसी में लखनऊ गोरखपुर अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 6:15 बजे लखनऊ से चलकर 11:55 पर गोरखपुर पहुंचेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर क्लस्टर, प्रोजेक्ट गंगा और गेहूं के इनहाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मंडी शुल्क में छूट जैसे विषयों की समीक्षा की। इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एक रिपोर्ट।
7: यूपी डेटा सेंटर क्लस्टर की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश के एआई मिशन की बुनियादी संरचना तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर क्लस्टर केवल एनसीआर क्षेत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों को भी इससे जोड़ा जाए। प्रोजेक्ट गंगा की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन युवाओं को डिजिटल उद्यमी के रूप में चुना जाए, उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तेजी से विस्तार और कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने गेहूं के इन हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की रणनीति की समीक्षा के दौरान मंडी टैक्स और मंडी शुल्क व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश की मंडियों को आधुनिक, स्वच्छ और आकर्षक बनाया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में जारी स्वगणना का कल अंतिम दिन है। राज्य के जनगणना निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि नागरिकों को स्वगणना के लिए census.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपने राज्य को चुनना होगा और फिर परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर या ईमेल के जरिए लॉगिन कर जानकारी भरनी होगी। मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी ने बताया कि गणना पर 11 अंकों का एक कोड प्राप्त होगा, जिसे प्रगणक के घर आने पर देना होगा, जिससे जानकारी का सत्यापन होगा। उन्होंने लोगों से स्वगणना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश में 22 मई से मकानों की गणना शुरू होगी, जो 22 जून तक चलेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट मंत्री बने भूपेंद्र चौधरी ने आज सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री के तौर पर कामकाज संभाल लिया है। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोगों को इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त हो।
8: और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के विकास में जिस प्रकार से एमएसएमई विभाग की भूमिका है और उस भूमिका में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो, इसका प्रयास और इस लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 46% निर्यात इन्हीं इकाइयों के द्वारा उत्पादित सामानों का होता है, तो इसे आगे बढ़ाएं, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। और उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है, हमारा विभाग उसमें एक महती भूमिका निभाए, इसका प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे।
4: प्रयागराज से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने को नागर विमानन महानिदेशालय ने मंजूरी दे दी है। प्रयागराज एयरपोर्ट के निदेशक राजेश चावला ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने के बाद प्रयागराज जेवर फ्लाइट की समय सारणी जारी की जाएगी। नई उड़ान सेवा शुरू होने से प्रयागराज से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी।
9: प्रयागराज एयरपोर्ट के ऊपर एक हफ्ते में 60 फ्लाइटों का आना जाना है, और अभी ये जो जेवर एयरपोर्ट जून से शुरू हो रहा है, इसमें अभी जैसे ही ये थोड़ा अभी तो कुछ कम फ्लाइटों से वहाँ से आना जाना शुरू होगा। इंडिगो की एक फ्लाइट शेड्यूल्ड है जो कि जेवर से प्रयागराज और प्रयागराज से जेवर जाएगी, क्योंकि अभी उसका पूर्णतः वो नहीं हुआ, शुरुआत नहीं हुई। जैसे ही वो जैसे जैसे फ्लाइट की संख्या वहाँ बढ़ती जाएगी तो हमारे यहाँ भी एक फ्लाइट आने का समर शेड्यूल में प्रोग्राम है।
4: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से बुरा हाल, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश। अगले 3 दिन तक जबरदस्त गर्मी की चेतावनी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ की अहम बैठक। गलत सूचनाएं फैलाने वाले नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। प्रदेश के 44 जिलों में कल होगी लेखपाल भर्ती परीक्षा। 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें। और प्रदेश में जारी स्वगणना का कल अंतिम दिन। 22 मई से शुरू होंगी मकानों की गिनती। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
10: मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आज इसमें आप सुनेंगे एक ही कलाकार के गाए कुछ गाने।

पहला गाना फिल्म जन्नत से। गाने के बोल लिखे हैं सईद कादरी ने और संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

गैंगस्टर इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं। बोल सईद कादरी के और संगीत प्रीतम चक्रवर्ती का।

0: पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700001424।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700001424।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details log on to www.ddindia.com।

आकाशवाणी गोरखपुर से, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। इसमें आज आप सुन रहे हैं गायक के गाए हुए कुछ फिल्मों से लिए गए गाने।

0: रोग, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं।
1: मैंने दिल से
0: गीतकार हैं नीलेश मिश्रा और संगीतकार एमएम क्रीम।

जिस्म फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म संगीत के आखिर में लीजिए सुनिए राज, द मिस्ट्री कंटिन्यूज़, इस फिल्म का ये गाना।

0: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। पहले इसमें लीजिए सुनिए रामनगीना यादव से वार्ता। विषय है लोक साहित्य और समाज।
1: लोक साहित्य का कार्य महज लोकगीत, लोक कथा और लोक कहावतों के संकलन का कार्य नहीं है, वरन यह जो आदिकाल से अनंत काल तक मानव की जीवन यात्रा प्रवाहमान है, उसमें यह कहाँ उठा, कहाँ गिरा और कहाँ आगे बढ़ा, इन सब की खोज, शोध और अध्ययन का कार्य है। लोक साहित्य की दूसरी विशेषता यह रही है कि यह भाषागत विभिन्नता लिए होने पर भी भावों की दृष्टि से एक और अभिन्न रहा है। चाहे कन्या गुजरात की हो या राजस्थान की, निमाड़ की हो या मालवा की, बेटी की समय की सारे गीतों में एक जैसा दर्द मिलेगा। इसमें पिता के रोने से गंगा में बाढ़ आ जाती है, माँ के रोने से धरती पर अंधेरा छा जाता है, भाई के रोने से उसकी धोती पांव तक भीग जाती है, लेकिन भौजाई की आँख से आंसू तक नहीं आते। जैसे चिड़िया तिनके से घोंसला बुनती है, ऐसे लोक भाषाएं सहायक नदी की तरह अपने दोनों कूल किनारों विपुल शब्द संपदा, गीत कथा, कहावतें लेकर राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता को संपन्न बनाने में अपना योगदान देती आई हैं। लोक साहित्य में व्यक्ति से तब तक नहीं गाया जाता जब तक कि वह समस्त की किसी उदात्त कल्पना का मूलाधार न बने। इसमें राम, सीता, शिव, पार्वती, दशरथ, कौशल्या और नंद यशोदा भी तभी स्थान पाते हैं जब वे अपने देवत्व को मूल मानवीय स्वरूप में अवतीर्ण होकर मनुष्य के सुख दुख में साथ उठते बैठते हैं। इनमें किसी के भी घर पुत्र के जन्म लेने पर बधाई बाबा नंद के घर ही भेजी जाती है। लोक साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता रही है कि उसमें असुंदर अमंगल के लिए स्थान नहीं होता। उसमें किसी के भी आंगन में चंदन से चौक पूरे जाते हैं, वर वधू को सवा घड़े दूध में स्नान कराया जाता है और हीरे तथा मोतियों के थाल में बधावा जाता है। उसमें मक्खन की पाल से बंधे तालाब होते हैं और रेशम की डोर से बंधे सोने और रुपए के घड़ों से पानी भरने वाली अनित्य सुंदरियों का वर्णन पाया जाता है। मनुष्य ने जो कुछ किया उसका वर्णन तो इतिहास में आता है, लेकिन अपने मनोजगत में जो कुछ सोचा, विचारा, रंगीन कल्पनाएँ बुनी, सुंदर सपने सजोए, उन सब का लेखा जोखा लोक साहित्य में सुरक्षित रहा है। लोक साहित्य को डांक छांटने की तरह नए और पुराने के खाने में बांटा नहीं जा सकता। वह वेद और लोक की तरह अपौरुष रहा है। वह समय की सीमा से बंधा होकर भी समयातीत होता है। जिस तरह नदी अपने एक हाथ से उद्गम को प्रणाम करती है और दूसरे हाथ से समुद्र से जा मिलती है, उसी तरह लोक साहित्य भूत से प्रेरणा लेकर वर्तमान को संवारते हुए भविष्य में आगे बढ़ने की ऊर्जा प्रदान करता है। लोक साहित्य की कुछ विशिष्ट समस्याएं, सुझाव एवं विचार लोक साहित्य में हमारी संस्कृत को अक्षुण रखने वाली निधान कलश सामग्री विद्यमान है। किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक तथा जीवन निर्माण संबंधी संजीवनी उसका लोक साहित्य ही होता है और इस निसर्ग प्रसूत पवित्र साहित्य ने शताब्दियों से हमारे देश की संस्कृति को समस्त विश्व में उजागर कर रखा है। लोक धरोहर ही हमारे संस्कारों और सामाजिक प्रवृत्तियों का सच्चा इतिहास है, इसीलिए भारतीय संस्कृति अमर है। लोक शब्द सामान्य जन की समष्टि मूलक चेतना एवं अनिति का द्योतक है। व्यष्टि, समष्टि और प्रकृति जैसे उदात्त सामाजिक तत्वों से निर्मित लोक साहित्य शाश्वत एवं विश्वजनीन होता है। यही नहीं, वह देश, काल और पात्र की सीमाओं से मुक्त होकर जीवन को शाश्वत चिंतन और जीवंतता से अभिषिक्त कर गरिमा के साथ प्रतिष्ठित करने में सहज सक्षम है। अतः लोक साहित्य को वक्त या घड़ी की सुई समाप्त नहीं कर पाती। हमारे देश में लोक साहित्य के विद्यार्थियों और अनुसंधित सुओं के समक्ष सबसे विकट समस्या लोक साहित्य के संग्रह की है। इस दिशा में लोकवार्ता, कथा, गीत, मुहावरे, लोकोक्तियाँ तथा सुभाषितों के अंबार लगे हैं। इनका संग्रह नितांत वांछनीय है। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में जो भी थोड़ा बहुत संग्रह कार्य हुआ है उससे हमें असाधारण सांस्कृतिक उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं। इस संदर्भ में हम राजस्थान के ठाकुर राम सिंह और स्वर्गीय सूर्यकर्ण पारीक, गुजरात के स्वर्गीय झवेर सिंह चंद मेघाड़ी, पंजाब के श्री देवेंद्र सत्यार्थी, उत्तर प्रदेश के स्वर्गीय पंडित राम नरेश त्रिपाठी, उदयपुर के श्री देवीलाल सागर आदि विद्वानों का नाम लेना चाहेंगे जिनके अथक प्रयत्नों से लोक साहित्य के कुछ श्रेष्ठ प्रकाशन हमें उपलब्ध हो सके। फिर भी अभी मध्य प्रदेश का विशाल लोक साहित्य वनस्पति के वैविध्य की भांति प्रसारित है। उसका संग्रह अत्यंत वांछनीय है। समस्या का दूसरा चरण लोक प्रबंधों के अंतर्धान होने का है। उत्तर प्रदेश की लोर कथा कहा तथा राजस्थान ढोला मारू की भांति हमारे देश के प्रत्येक प्रांत में लोक देवताओं, लोक नायकों, वीर नारियों और अन्य विविध विषयों पर उपलब्ध अनेक लोक प्रबंध मिलते हैं। यूं तो ये युगों सदियों से अनुश्रुतिबद्ध परंपरा से मौखिक रूप से पाए जाते हैं। इनके जो गायक हैं धीरे धीरे काल कौलित हो रहे हैं और उनके साथ ये लोक प्रबंध भी समाप्त हो जा रहे हैं। उदाहरण के लिए हम राजस्थान के अनेक प्रेम और युद्ध संबंधी लोक प्रबंधों को ले सकते हैं। बगड़ावत राजस्थान का वीरतापूर्ण लोक प्रबंध है। यह 6 महीने तक लगातार गाया जाता है पर अद्यावधि इसकी रक्षा की ओर से हम बेखबर हैं। इसी तरह बापू जी, नेताजी, घोंगा जी, रामदेव जी आदि लोक नायकों के चरित्र प्रबंध केवल मौखिक परंपरा में जीवित है। अतः मैं विद्वान शोधकों को इस ओर विनम्रता से आह्वान करता हूँ इन लोक प्रबंधों के टेप करने की दिशा में सक्रिय तथा सशक्त अभियानों की आवश्यकता है।
0: लोक साहित्य और समाज, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे राम नगीना यादव से ये वार्ता। हिंदी कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए डॉक्टर ओपी सिंह से मनीष कुमार द्विवेदी की भेंट वार्ता। विषय है भारतीय शिक्षा एवं नैतिक आयाम।
2: नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष द्विवेदी और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ओपी सिंह जी, जो शिक्षाविद होने के साथ साथ डॉक्टर भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार
2: सर, हम जानना चाहेंगे चूंकि एजुकेशन का माहौल चल रहा है, अभी लोग एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तमाम विद्यालयों में, लेकिन गार्जियन और बच्चे किसी स्कूल में जाते हैं जिससे उनका फ्यूचर पूरी तरीके से डिपेंड करता है, तो क्या क्या एक विद्यालय में आदर्श स्थिति होनी चाहिए और क्या क्या देखना चाहिए एट अ टाइम ऑफ एडमिशन।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर ओपी सिंह, चिकित्सक के साथ साथ मैं एक शिक्षाविद भी हूँ। आपको ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि भारत देश में हमारा जो प्रतिनिधित्व करते हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है एक नए शिक्षा नीति जिसको NEP 2020 कहते हैं वह देश में लागू हो चुका है। अभी तक स्वतंत्र भारत में कोई शिक्षा पद्धति न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं बन पाई थी। अभी तक हम मैकाले की शिक्षा नीति का ही अनुसरण करते थे। हम मानसिक रूप से गुलाम थे और अपने बच्चों को भी गुलामी के जंजीरों में जकड़े जा रहे थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की अच्छी योजना और अच्छी सूझबूझ के कारण आज जो है हमारे देश में NEP लागू हो गया। आप बहुत सारे बंधु या बहुत सारे पेरेंट्स जो है इसके विषय में जानना चाहते हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि NEP के तहत हर स्कूलों को भारत सरकार ने एक UDAS नंबर दिया है, यानी कि उस विद्यालय की जो एक्टिविटीज है, उस विद्यालय की जो पहचान है वह UDAS नंबर से ही इंगित होगी। और आपका बच्चा जहां पढ़ता है तो उसको वह विद्यालय एक अपार ID जनरेट करके आपके बच्चे का एक परमानेंट एजुकेशन नंबर वह डेवलप करता है। तो आप कभी भी किसी विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए अगर जाते हैं तो कृपया ये ध्यान दें कि उस विद्यालय का UDAS नंबर क्या है और जिस विद्यालय से आप जाते हैं वहां से पिन या अपार ID जनरेट होता है या नहीं, इस बात की आप जानकारी रखें। और साथ में ये जानकारी रखें कि इस विद्यालय ने अपने यहाँ एफिलिएशन कितने तक का लिया है। बहुत सारे विद्यालय क्लास 5th तक, क्लास 8th तक के एफिलिएशन लेके और इंटर तक की जो है क्लासेस चलाते हैं, तो आप सदैव जो है इस बात की जानकारी लें।
2: भारत के प्रधानमंत्री जी हमेशा आदर्श शिक्षा पद्धति पे जोर देते हैं, जिसमें आपका व्यायाम भी हो गया, शिक्षा भी हो गया, सर्वांगीण विकास जिसको कहते हैं। उन्होंने खुद परीक्षा पे चर्चा नामक कार्यक्रम रेडियो के माध्यम से शुरुआत की। मन की बात में कहते हैं, हर जगह कहते हैं कि शिक्षा ही बदलाव का आधार है। आप चूंकि स्कूल के प्रबंधक भी हैं, जिसका नाम मैक्स PC चिल्ड्रेन अकेडमी है, उसके प्रबंधक हैं, तो जब आप बच्चों को देखते हैं कि बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं, तो उनमें एज प्रबंधक या टीचर आप क्या क्या देखना चाहते हैं कि बच्चों में घर से क्या क्या मतलब गुण उनको साथ लाना चाहिए, घर पे कैसा माहौल होना चाहिए बच्चों के साथ, आपका क्या मानना है? चूंकि आपका अनुभव विशाल है तो आप बताइए, साथ में डॉक्टर भी हैं।
3: NEP जो मैंने अभी चर्चा की, तो NEP के अंतर्गत अब स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है। अब हर बच्चे के अंदर एक स्किल डेवलप करना होगा। अभी तक जो हमारी शिक्षा नीति थी उसके अनुसार हमारे बच्चे BA MA करके बेरोजगारी की तरफ जाते थे, लेकिन अब नहीं, अब उनको शुरू से ही एक स्किल की बात हो रही है कि उनके अंदर 17-18 इस तरह के स्किल जो दिए हुए हैं जो हाई स्कूल इंटर में, तो वह जो है उन बच्चों को कहीं ना कहीं उसकी स्किल से जोड़ना, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का जो है उनकी अनुशंसा है। और दूसरी बात ये है कि मैं हमेशा अपने बच्चों में शिक्षा और स्वास्थ्य और संस्कार की तरफ जो है प्रेरित करता हूँ। मेरे सारे वक्तव्य में जो है तीनों चीज समाहित रहती है, इसलिए जो है मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के बच्चे जो है वह जो हमारे संस्कार विहीन जो बच्चे हो रहे थे, जो हमारी जो शिक्षा पद्धति चली आ रही थी पहले से जिसमें संस्कार अभाव ग्रहित था, तो उसको फुलफिल किया जाए। क्योंकि जो हम अपने बच्चों को आधुनिक तो बना रहे थे लेकिन उसके अंदर जो है अंग्रेजी सिखा रहे थे, लेकिन अंग्रेजियत वो सीख रहा था, अंग्रेजी तो नहीं सीख पा रहा था लेकिन उसके अंदर अंग्रेजियत ज्यादा आ जा रही थी, और उससे उसकी वजह से जो है वो अपने समाज में, परिवार में, अपने देश के लिए वह अच्छा काम नहीं कर पा रहा था। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री ने इस तरह की योजना बनाई कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत हमारे बच्चों में इस तरह का भाव डेवलप हो कि वह अपने परिवार के प्रति, वो अपने समाज के प्रति, वो अपने राष्ट्र के प्रति, वो अपने देश के प्रति उत्तरदायित्व या उत्तरदायी नागरिक बन सकें। इसी बीच में मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले केवल आधुनिक भारत में जो है एक 1930 में CBSE की रचना हुई, उसके बाद ICSE जो एक प्राइवेट बोर्ड होता है, और अभी भारत सरकार ने NEP के साथ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ एक और बोर्ड का गठन किया है जिसका नाम है BSB, भारतीय शिक्षा बोर्ड। भारतीय शिक्षा बोर्ड के द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे के अंदर संस्कार और राष्ट्रीयता, सामाजिकता, सारा चीज जो है उसके अंदर बिल्कुल ओतप्रोत या उसके अंदर जो है भरा जाता है। तो हमारा ये निवेदन है कि आप CBSE, ICSE के साथ साथ BSB या भारतीय शिक्षा बोर्ड के विषय में भी जानना चाहिए। आप इसको गूगल पर देख सकते हैं, ये काफी अच्छा बोर्ड है और आपके बच्चों के अंदर जो है चतुर्मुखी विकास की तरफ प्रेरित करेगा।
2: मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आकाशवाणी दरअसल 90 साल पूरा करने जा रहा है, सेलिब्रेट करने जा रहा है, तो तमाम ऐसे कार्यक्रम जो 90 सालों में 3-4 पीढ़ी ने देखा है, सुना है, समझा है, उसे सीखा है, आपका अनुभव कैसा रहा? चूंकि शिक्षा, सामाजिकता, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, इसका मूल मोटो रहा है कि हम लोग एंटरटेनमेंट करेंगे लेकिन शिक्षा के साथ। तो जब आप 90 साल या मान लीजिए 50 साल पीछे जब घूम के देखते हैं, रेडियो को पीछे देखते हैं, तो आप क्या पाते हैं कि क्या क्या बदला है रेडियो ने?
3: बड़ा अच्छा लगा ये क्वेश्चन सुन के, क्योंकि हम लोग अपने बचपन के दिनों से आज तक रेडियो का साथ रहा, और रेडियो ने हमारे जीवन को उत्कृष्ट जीवन बनाया। हमें मनोरंजन से लेके तमाम तरह की देश विदेश की जानकारियां हमें रेडियो से ही मिलती रही, और हमारे बच्चे जो हम लोग आईएएस पीसीएस या सिविल सर्विसेज की तैयारियां करते थे वो सब रेडियो की देन थी। उस समय रेडियो का ही समाचार सुनते थे। आज भी बिना रेडियो के जो है हमको नहीं लगता है कि देश का कोई व्यक्ति रह सकता है, और वो चाहे अपने मोबाइल में ही रेडियो देखता हो, क्योंकि रेडियो द्वारा ही हमें जो है अपने दूसरे कार्यों के साथ साथ हम अपना मनोरंजन और अपने मन की शांति, अपने आध्यात्मिक शांति, नए नए विचार सुन सकते हैं और अपने अंदर जो है नए नए विचार ला सकते हैं और लोगों के विचार बदल सकते हैं, राष्ट्र को जो है विश्व गुरु की तरफ उत्प्रेरित कर सकते हैं। आकाशवाणी दिवस के अवसर पर जो है जो 90 साल हमने पूरा किए, इस पे हमारी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत जो है साधुवाद है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप स्टूडियो में आए और बताया कि रेडियो का रेलिवेंस क्या है। स्कूलों के बाद से अगर सबसे ज्यादा समाज में बदलाव हुआ है तो रेडियो के माध्यम से। हम लोग हमेशा पढ़ते आए कि हरित क्रांति हुई, लेकिन हमारा ये मानना है कि रेडियो ने भी समाज में क्रांति लाया है। जब कहीं कोई माध्यम नहीं था तो रेडियो था, रेडियो आज भी प्रासंगिक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: भारतीय शिक्षा एवं नैतिक आयाम, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर ओपी सिंह से मनीष कुमार द्विवेदी की ये भेंटवार्ता। इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं।
5: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं।
4: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
5: स्वच्छता की आदत, स्वस्थ जीवन की शुरुआत।

आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। पेश है सुगम संगीत, कलाकार हैं मेहंदी हसन।

0: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमे ना जानवरों को घूमने दें।
1: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
2: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं मेहंदी हसन से चंद गजलें।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे मेहंदी हसन से चंद गजलें। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
2: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है, और मेरा भी ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा, और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
1: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 96.83 रुपए पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and Italy agreed to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
5: पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
4: Mr. Modi said India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-29 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working towards establishing an India-Italy

0: बीते कुछ वर्षों में दुनिया ने एक बदलाव महसूस किया है, एक ऐसा बदलाव जहां भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक निर्णायक आवाज बनकर उभरा है। कूटनीति के नए आयाम, विश्व मंच पर बढ़ती भागीदारी और हर बड़े वैश्विक मुद्दे पर भारत की स्पष्ट और सशक्त उपस्थिति, इन सब ने मिलकर रचा है एक नए भारत का आत्मविश्वास। और इसी बदलती तस्वीर का एक महत्वपूर्ण पहलू है दुनिया भर से मिल रहे वो सम्मान जो भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की गवाही देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले ये वैश्विक अलंकरण सिर्फ एक नेता की उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की साख, सामर्थ्य और विश्वसनीयता का प्रतीक हैं। स्वीडन और नॉर्वे से लेकर दुनिया के कई देशों तक हर सम्मान एक कहानी कहता है, भारत के बढ़ते कद की कहानी। चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है, मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक सम्मान, भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। शुरुआत करते हैं बिल्कुल हालिया और ऐतिहासिक लम्हे से। मई 2026 का महीना भारत के राजनयिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्डिक देशों की यात्रा पर थे, तारीख थी 17 मई 2026 और जगह थी स्वीडन का गोथेनबर्ग शहर। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजा गया। साल 1748 में स्थापित हुआ ये ऐतिहासिक सम्मान किसी विदेशी शासनाध्यक्ष को मिलना ये दर्शाता है कि आज यूरोप की नजरों में भारत का स्थान क्या है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था।
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
0: कहानी यही नहीं रुकी, इसके ठीक अगले ही दिन यानी 18 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का शाही महल एक और इतिहास का गवाह बना। नॉर्वे

ये कूटनीतिक सफर साल 2016 में सम्मानों की एक ऐसी श्रृंखला में बदल गया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। साल 2016 में खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ा। सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज सैश से नवाजा। इसी साल पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने उन्हें स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्ला खान प्रदान किया। वर्ष 2018 में भारत की पर्यावरण नीतियों को वैश्विक पहचान मिली जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण के क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया। इसी साल फिलिस्तीन ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन दिया। दक्षिण कोरिया ने वैश्विक शांति और आर्थिक विकास के लिए सियोल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया। वर्ष 2019 तो जैसे वैश्विक पुरस्कारों का वर्ष बन गया। दुनिया के नक्शे पर भारत की दोस्ती का दायरा कितना बड़ा था ये इन पुरस्कारों की सूची देखकर समझ आता है। संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद, रूस का सबसे प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, मालदीव का ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इज्जुद्दीन और बहरीन का किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा शामिल रहा। 2019 में ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए उन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया। जब साल 2020 में पूरी दुनिया सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही थी तब भारत की वैक्सीन मैत्री ने दुनिया का दिल जीता। इसी दौरान अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने बेहद प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। 2021 में हमारे पड़ोसी देश भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग से भारत के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त की। साल 2023 में जब भारत G20 की मेजबानी कर रहा था और उसी वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो वहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर पैर छूकर उनका स्वागत किया और उन्हें ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नवाजा। इसी तरह फिजी ने कमियान ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और मिस्र ने अपना ऐतिहासिक ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया। वर्ष 2023 में ही फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसके बाद ग्रीस ने भी उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया। साल 2024 और 25 में तो ये फहरिस्त और लंबी हो गई। नाइजीरिया का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, गयाना का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान और कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर उन्हें प्रदान किया गया। इसके बाद साल 2025 में बारबाडोस, श्रीलंका का मित्र विभूषण, मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन उन्हें प्रदान किया गया। घाना ने द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस, नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशियंट वेलविचिया मिराबिलिस, ट्रिनिडाद और टोबैगो ने द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो और ब्राजील ने द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से भारत के बढ़ते कदमों का स्वागत किया। इसके अलावा ओमान की तरफ से फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान और इथियोपिया की तरफ से ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया। साल 2026 की शुरुआत में ही इसराइल ने भी उन्हें मेडल ऑफ द नेसेट से सम्मानित किया। इन 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की फहरिस्त सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा बल्कि दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है का संदेश दे रहा है। चाहे वो पर्यावरण संकट हो, वैश्विक शांति की बात हो या आपदा के समय मदद का हाथ बढ़ाना हो, दुनिया आज भारत के नेतृत्व की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष दर वर्ष मिले ये सम्मान असल में भारत की 140 करोड़ जनता के कड़े परिश्रम, हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारे बढ़ते आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य का वैश्विक उत्सव है।

0: विदेशी कूटनीति में क्या 2014 के बाद भारत ने विशेष हासिल किया है जिसे भारत अब दुनिया के मानचित्र में अब एक मजबूत स्तंभ बन गया है। इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत
1: जी। धन्यवाद।
2: धन्यवाद आनंद जी।
0: अशोक जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा चल रही है, इसमें वो यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 5 देशों की यात्रा पर हैं। नॉर्वे में हुए तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सहमति बनी है। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा के चलते जो वैश्विक परिदृश्य है और वैश्विक परिदृश्य में भारत की जो नॉर्थ वर्ड टर्न है यानी उत्तर की ओर जो रुख है, उस लिहाज से कितना अहम मानते हैं इस यात्रा को आप?
3: हम अभी देख रहे हैं जो ये जो यात्रा है वो उनकी नॉर्डिक देशों में है, तो इसमें कहा जाए जो ये नॉर्थवर्ड हम टर्न देख रहे हैं, परंतु ये तो हम जानते ही हैं जो भारत तो एक जिसे कहा जाए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स किए हैं जब भारत G20 की चेयर हमने संभाली थी 2023 में। परंतु इसको छोड़ते हुए मैं कहूँगा जो भारत की जो की कूटनीति है, अगर हम 2014 के बाद से देखें तो हमारी कूटनीति पूरे विश्व के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने में लगी है और हम इसमें बहुत ही तीव्र गति से काम कर रहे हैं। परंतु जहां तक ये नॉर्डिक देशों का संबंध है, आपने ठीक कहा है, इसको अभी करीब 8 साल हुए हैं। 2018 में जैसे कहा जाए पहला नॉर्डिक समिट हुआ था स्वीडन में, दूसरा डेनमार्क का हुआ 2022 में कोपेनहेगन में, और अब तीसरा पिछले साल होने वाला था परंतु पहलगाम के इंसिडेंट के होते हुए तो ये नहीं हुआ और अब हो रहा है। तो अभी जो हालात हैं पूरे विश्व में, विश्व की जो चुनौतियां हैं, जो चाहे हम जियोपॉलिटिकल स्तर पर देखें, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया का युद्ध चल रहा है, तो उसमें रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को आगे कैसे ले जाया जाए, और जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन ट्रांजिशन है, इनोवेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इन सभी जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं इनके साथ कैसे संबंध बनाया जाए और देशों के साथ मिलकर सहयोग किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू थे और इस पर बातचीत हुई। और जो बताता है जो प्रधानमंत्री मोदी की और भारत की विश्वसनीयता कितनी बढ़ रही है पूरे विश्व में।
0: चर्चा कर रहे हैं 2014 से लेकर अब तक भारत की विदेशी कूटनीति के आइकॉनिक मोमेंट्स की, और उसमें जो सबसे बड़ा मोमेंट्स था मदन जी वो G20 का जो हमने मेजबानी की। साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुआ G20 समिट नई दिल्ली डिक्लेरेशन की वजह से दुनिया भर में सराहा गया। आपको क्या लगता है कि भारत ने जिस तरह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल का काम किया, उसने वैश्विक कूटनीति में भारत का कद किस तरह बढ़ाया?
1: अगर हम G20 की बात करें, एक तो ये बहुत बड़ा सफल आयोजन था, ये तो निश्चित रूप से था। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें हुई कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ को भारत ने मजबूती के साथ बुलंद किया, और जो अफ्रीका यूनियन है, अफ्रीकी देश हैं, उनको G20 की सदस्यता दिलाने में सफलता हासिल की। भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज़ को उठा रहा था। दुनिया में एकमात्र देश है जो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ को उठा रहा था। इसमें करीब 100 से भी ज़्यादा देश आ जाते हैं, पूरा अफ्रीका रीजन इसमें आ जाता है, नॉर्थ अमेरिकी जो कंट्री हैं वो आ जाते हैं, इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे कंट्री हैं जो ग्लोबल साउथ में आते हैं, जो न तो किसी समूह के हिस्से नहीं है लेकिन उनकी आवाज़ कहीं नहीं सुनी जा रही थी। अगर मैं G20 के आयोजन की बात करूँ, भारत की कूटनीति की बात करें, तो ग्लोबल साउथ की आवाज़ को उठाना और अफ्रीकी यूनियन को G20 में सदस्यता दिलाना, तो मुझे लगता है कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी और इससे भारत की जो कूटनीति है उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि जो भारत एक ऐसे देशों की आवाज़ उठा रहा है जिसकी आवाज़ बहुत पहले उठाए जाने की ज़रूरत थी। और ये पहल कायदे से देखा जाए तो जो विकसित कंट्री है उनको इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन भारत ने, एक बहुत तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उसने इन देशों की आवाज़ को उठाकर पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जो वसुधैव कुटुंबकम, और इस G20 सम्मेलन की थीम भी यही थी, तो वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और एक भारत के नेतृत्व में विश्वास जताया।
4: Dr. Nkrumah had said, and I quote, I am not Africa because I was born in Africa, but because Africa was born in me. In the same way, India carries Africa in its heart. India and Africa share a dream where every child gets opportunities. Where every voice is heard, where nations rise together, not apart. Let us build a partnership, not only for today, but for generations.

0: relations to come.
1: अशोक जी, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारतीय विदेशी कूटनीति का एक और अहम पड़ाव है आपदा और संकट में कूटनीति, चाहे वो ऑपरेशन संकट मोचन हो, ऑपरेशन गंगा हो, या फिर युद्ध और संकट के क्षेत्रों से अपने नागरिकों को वापस बुलाना, उसमें भी भारत ने एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन एक और ऑपरेशन हुआ जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जिसमें भारत ने पूरी दुनिया को ये बताया कि अगर भारत की तरफ कोई आंखें दिखाएगा तो भारत युद्ध का जवाब और प्रबल युद्ध से देना जानता है। आतंकवाद को सिरे से ना करना और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि को भेजकर ये बताना कि भारत की मंशा क्या है, कैसे देखते हैं, क्या वो भारतीय की विदेश कूटनीति का एक मील का पत्थर था ऑपरेशन सिंदूर?
2: भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया, वो यही था जो हम अपनी संप्रभुता के लिए, अपने जो नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम पूरी तरह से उनकी रक्षा करेंगे और जो भी हद हो वो हम वहां तक जाएंगे। और यही बात हुई जो हम युद्ध को पूरा युद्ध में नहीं वैसे परिवर्तित करना चाहते, हमें जब अपना लक्ष्य मिल जाता है तो फिर हमने युद्ध उसी समय रोक दिया। परंतु पाकिस्तान ने अपनी बेवकूफी में उन्होंने सोचा जो वो भारत को ऊपर भी कुछ ऐसा नुकसान कर सकते हैं, परंतु 10 तारीख सुबह को तो उनके केवल बहुत सारे हवाई अड्डे थे, बहुत सारे ऐसे ठिकाने थे जिनको एकदम मिट्टी में मिला दिया गया, तो पाकिस्तान को अपने घुटने पर आना पड़ा। तो हमने तो उनको ये सिद्ध करके, और फिर उसके बाद हमने जब पाकिस्तान ने याचिका की जो ये युद्ध रोक दिया जाए तो हम मान गए, क्योंकि हमने ये देखा है, भारत ने ये पूरे विश्व को बताया जो हम युद्ध शुरू कर सकते हैं अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, और जब हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स लक्ष्य हम प्राप्त हो जाते हैं तो हम उसको बंद भी कर देंगे। तो हमने वहां पर से हमेशा से पाकिस्तान ये कहता रहा था जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो आप हमारे ऊपर हमला कन्वेंशनल वॉरफेयर से नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये बता दिया जो ये उनका जो ब्लैकमेल है ये हमारे विरुद्ध नहीं चलेगा।
1: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि बुद्ध की धरती युद्ध करना भी जानती है और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था।
3: आज पाकिस्तान भी भलीभांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे ये भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है। और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
1: अशोक जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विचार भारत की तरफ से दिया गया, क्या आपको लगता है कि भारत अब ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधानकर्ता के रूप में दुनिया में देखा जा रहा है?
2: 2015 में जब ये कॉप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुआ था पेरिस में, तो तब भारत ने और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उस समय के, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और अब जैसे उन्होंने बताया 100 से ज्यादा देश इसमें मिल गए हैं। देखिए, आजकल एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे बनकर उभर गए हैं पूरे विश्व के सामने। और हम देख रहे हैं जब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का मुद्दा सामने आया है तब तो ऊर्जा, एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स बहुत देशों के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि वहां से 20% एनर्जी पूरे विश्व में आती है वो मिल नहीं रही है। तो इसलिए ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसकी भारत ने शुरुआत की है और भारत ने दिल्ली के निकटतम ही यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर्स भी खोला है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें बायोफ्यूल्स अलायंस है, जो कि जब हम G20 की बात कर रहे थे तो G20 के साइडलाइंस पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे। एक तो था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अलावा एक CDRI है, दैट इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैसे जो विश्व में पर्यावरण का बदलाव हो रहा है उसके साथ कैसे जूझा जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनको कैसे जो आपदा आती है उनसे बचाया जाए। तो भारत ने विश्व पटल पर बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं और बहुत से वैश्विक देशों ने भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो इसी से भारत का कद विश्व में और भी इससे ऊंचा हुआ है।
3: दिस इज द इनॉग्रल डे ऑफ ए डिफाइनिंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। वी वॉन्ट टू ब्रिंग सोलर एनर्जी इन टू आवर लाइव्स। वी विल शेयर नॉलेज एंड एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस। वी विल कोऑपरेट ऑन ट्रेनिंग।

0: and building institutions. We will discuss regulatory issues and promote common standards. We will attract investment in the solar sector, encourage joint ventures, and develop innovative financing mechanisms. We will partner with other international initiatives on renewable energy. There is already a revolution in solar energy. Technology is evolving, costs are coming down, and grid connectivity is improving. It is making the dream of universal access to clean energy become more real.
1: मदन जी, अब बात थोड़ी वैक्सीन डिप्लोमेसी की भी कर लेते हैं। कोविड 19 और वैक्सीन मैत्री की भी चर्चा काफी रही। जब कोविड 19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के 100 से अधिक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाई, वो भी दौर था जब दुनिया के कई देश अपनी वैक्सीन जमा कर रहे थे, तब भारत की इस मानवतावादी कूटनीति ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति जो विश्वास पैदा किया, उसका लॉन्ग टर्म लाभ आप कैसे देखते हैं?
2: जब कोविड काल चल रहा था तो 100 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन की सप्लाई की थी, और उस समय वैक्सीन की हमारे पास भी कमी थी। हम दूसरे कंट्री से कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव है उनसे हम वैक्सीन ले भी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हम वैक्सीन दूसरे कंट्री को भी दे रहे थे और 100 से ज़्यादा देशों को हमने वैक्सीन की सप्लाई की थी, और उसमें से ज़्यादातर देश या तो हमारे पड़ोसी देश थे या फिर वो ग्लोबल साउथ के देश थे जिनको हमने वैक्सीन की आपूर्ति की थी। तो इस इनिशिएटिव से भारत का, जैसे मैंने माना कि एक डिप्लोमेसी है, ये भी एक डिप्लोमेसी है कि अगर आप अपने सहयोगी देशों को, अपने मित्र देशों को किसी प्रकार की मदद करते हैं, तो ये भी एक डिप्लोमेसी का ही मैं इसे एक पार्ट कहूँगा। और इससे एक जो लॉन्ग टर्म में भारत पर भरोसा बढ़ा है, चाहे वो छोटा कंट्री हो, चाहे वो एक अफ्रीका का कोई देश हो, भारत पर उन लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है। और लॉन्ग टर्म में अगर इसकी बात करें, जब एक बार भरोसा बढ़ता है और लगातार भारत उनके किसी न किसी रूप में मदद करता है या उनकी आवाज़ को बुलंद करता है, या जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ भारत ने उठाई, उसके बाद यूएन सुधारों में भारत लगातार बोल रहा है, तो इसका भी फायदा दूसरे देशों को होने वाला है। भारत को उतना फायदा नहीं होने वाला, दूसरे देशों को ज़्यादा होगा अगर यूएन में सुधार होते हैं। ऐसे में जो भारत पर दूसरे देशों का भरोसा है वो लगातार बढ़ रहा है, और जब ये भरोसा बढ़ता है, और जैसे हम कह रहे हैं कि जो दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है वो मल्टीपोलर दुनिया हो रही है, बहुध्रुवीय दुनिया हो रही है, तो भारत उसमें एक मजबूत ध्रुव के रूप में उभर रहा है, एक मजबूत पक्ष के रूप में उभर रहा है।
1: अशोक जी, एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, काफ़ी अहम पक्ष रहा है 2014 के बाद भारत की विदेश कूटनीति का, वो है मुक्त व्यापार समझौते। भारत ने हाल में यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते किए, जिसे हम सब एफटीए के नाम से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि ये समझौते भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं?
3: जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बहुत ही ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौते जो हैं वो किए हैं, और अपने महत्वपूर्ण जो साझेदार हैं, जो व्यापारिक साझेदार हैं जिनके साथ हमारे व्यापारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग बड़ा अच्छा है, उनके साथ किए हैं। अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देखा जाए तो वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ऐसा डेस्टिनेशन है जहां हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं, जहां हमारे निर्यात जाते हैं। वो तीसरे नंबर पर है जो कि सबसे बड़ा हमारा आर्थिक साझेदार है, सहयोगी है। और इसके अलावा हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ भी किया है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है और आर्थिक सहयोग उनके साथ हमारा बहुत बड़ा है। यूरोपियन यूनियन, तो जिनके साथ 2007 में ये बातचीत शुरू हुई थी, मुझे याद है जब मैं ब्रसल्स में था तब हमने ये बातचीत शुरू की थी, नेगोशिएशन शुरू किए थे, और ये 17-18 साल के बाद हम देख रहे हैं, जो इस साल के शुरू में फरवरी में हमने देखा, 19 साल के बाद ये वाला समझौता हुआ है, और इसको वहाँ की जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेन, उन्होंने इसको मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया था, इसका इतना व्यापक रूप है। ऐसे ही हमने एफ्टा के साथ जो चार देश हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के, जैसे मैं पहले बोल रहा था, आइसलैंड और नॉर्वे तो उसके सदस्य नहीं हैं और ये एफ्टा के सदस्य हैं, और उसके अलावा स्विट्जरलैंड और लिख्टेनस्टाइन, उनके साथ भी बहुत महत्वपूर्ण ये एक सहयोग किया है, जिसमें $100 बिलियन भारत में वो निवेश करेंगे अगले 15 साल में, जिससे 10 लाख जॉब्स यहाँ पर क्रिएट होंगे। इसके अलावा हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ, ये सब हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स किए हैं जो कि मेरे विचार से विन विन अग्रीमेंट्स होंगे, ये इन सभी देशों के लिए भी और भारत के लिए भी।
0: आज भारत ने अपने इतिहास का, अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है।
1: अशोक जी, फॉरेन डिप्लोमेसी के क्षेत्र में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्टैंड भी काफी चर्चा में रहा। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान कि ये युद्ध का युग नहीं है, पूरी दुनिया में ये गूंजा। बिना किसी दबाव में आए भारत का अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर टिके रहना और दोनों पक्षों से बातचीत की वकालत करना भारत की परिपक्व होती कूटनीति का कितना बड़ा प्रमाण रहा।
3: डिप्लोमेटिक पार्लेंस में कहें तो इसको हम स्ट्रेटेजिक अटोनमी कहते हैं, जो जिससे कि हम अपने हितों की रक्षा स्वयं करेंगे और हम किसी और को दखल अंदाजी नहीं करने देंगे, जो वो हमें बताए, भारत को बताए, जो आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या ठीक है, आप इसमें क्या करिए। तो इसीलिए जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो बहुत दबाव पड़ा पहले भारत के ऊपर, जो आप तेल मत खरीदिए रूस से, परंतु भारत ने ये बता दिया, भारत करीब अपने जो जरूरतों का 80-85% तेल है वो आयात करता है, तो इसको हम जहां से भी हमारी कंपनियों को सभी ठीक दाम में तेल मिलेगा हम वहां से वो लेंगे। तो हमने अपने संबंध भी बनाए रखे और ये भी बनाए रखा, परंतु ऐसा नहीं किया जो हमने अपने संबंध और जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ खराब कर दिए। और उन देशों को भी फिर बाद में समझ आ गया, जो अगर रूस का तेल वैश्विक बाजार में नहीं आता तो तेल के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता था। तो इसीलिए भारत ने ये बता दिया है, भारत वैश्विक फायदे के लिए, ग्लोबल गुड के लिए काम करेगा सबके साथ, परंतु अपने हितों को वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा। और हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो केवल वो ट्रांजैक्शनल नहीं है जो केवल अपने हितों की हम रक्षा करें, हम और देशों के हितों के लिए भी हम उनके साथ बराबर परस्पर सहयोग बनाते रहेंगे और काम करते रहेंगे।
0: विद द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, वॉर हैज रिटर्न टू यूरोप, इट इज कॉजिंग ग्रेट पेन इन द रीजन, सिंस इट इन्वॉल्व्स मेजर पावर्स, द आउटकम्स are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity. As I have said directly and publicly, this is not an era of war, but it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering.
1: अशोक जी, कार्यक्रम के अंत में एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि 2047 तक भारत का लक्ष्य है विकसित भारत बनने का, हमारी विदेश नीति और विदेश कूटनीति इस लक्ष्य को हासिल करने में किस तरह की भूमिका निभा रही है, कैसे देखते हैं आप?
3: भारत की जो कूटनीति है बहुत ही एक महत्वपूर्ण इसमें योगदान कर रही है, भारत को अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचाने में, विकसित भारत 2047 तक पहुंचाने में, क्योंकि सामने हमारे चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए हमको देखना है जो किन देशों के साथ हमको अपना परस्पर सहयोग बढ़ाना है, हमारे अपने संबंधों को और तेज करना है, और वही हम कर रहे हैं। चाहे पहले हमारे अमेरिका के साथ, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, परंतु अब हम देखते हैं जो अमेरिका का रवैया काफी ट्रांजैक्शनल हो गया है, परंतु फिर भी हमारे संबंध चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, उनके साथ बड़े अच्छे रहेंगे, परंतु फिर भी हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तो हर तरीके से लेकर अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए और अपने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि अपनी संप्रभुता की हम रक्षा कर सके, इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए भारत की कूटनीति उसमें एक बहुत ही अहम योगदान करेगी।
0: एक तो हमारा लक्ष्य है 2047, हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे, आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा।
4: आदे, आदे, आदे, आदे, आदे, आदे, आदे, आदे। कभी दुनिया के मंच पर भारत को सिर्फ एक बड़ा देश माना जाता था, लेकिन आज भारत एक बड़ी सोच बन चुका है। चाहे G20 की मेज हो या संकट में फंसे देशों तक मदद पहुंचाने का संकल्प, भारत ने हर बार यह साबित किया है कि नई सदी की कूटनीति केवल ताकत से नहीं, विश्वास से चलती है। आज जब दुनिया नए संतुलन की तलाश में है, तो उसकी निगाहें हिंद महासागर के उस किनारे पर टिकती हैं जहां एक लोकतंत्र 140 करोड़ सपनों के साथ विश्व मंच पर आत्मविश्वास से कह रहा है, यह नया भारत है जो मित्रता भी निभाना जानता है और नेतृत्व करना भी जानता है। इसी विश्वास, इसी बढ़ते वैश्विक सम्मान और इसी नई कूटनीतिक यात्रा के साथ मदन जी आपका और अशोक जी आपका कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आभार।
3: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
1: थैंक यू सर।
4: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
5: चर्चा का विषय है।

मीडियम वेव 330.9 शून्य 3 मीटर अर्थात 909 किलो हर्ट्ज और एफएम 14.1 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म थी माया। बोल मजरूह के थे और संगीत सलील चौधरी का।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: शास्त्रीय संगीत नृत्य साहित्य नाट्य विधाएं धारावाहिक वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अब सुनिए तलत महमूद की आवाज में छाया फिल्म का ये गाना।

छोटी सी बात, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं, आवाज़ लता मंगेशकर की है। शब्द रचना योगेश के और संगीत सलील चौधरी का।

फिल्म संगीत के आखिर में लीजिए सुनिए मुकेश की आवाज़ में आनंद फिल्म का ये गाना। गाने के बोल योगेश ने लिखे हैं और संगीत से सजाया है सलील चौधरी ने।

मुकेश के गाए आनंद फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब समय हो चला है शास्त्रीय संगीत का। इसमें आज आप सुनेंगे श्रुति सडोलिकर से राग नायकी कान्हड़ा में गायन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्रुति सडोलिकर से राग नायकी कान्हड़ा में गायन। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही क्षणों में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज चैट बाय अपराजिता नायर। India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025 to 2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Centre and noted that the India-Italy Defence Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defence sector. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Ki Dongyu. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
2: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
3: Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal has congratulated Prime Minister Narendra Modi for being honored with the Food and Agriculture Organization's Agricola Medal. In a social media post, Mr. Goyal said, "This is an acknowledgement of the immense contributions of India's farmers, fisherfolk, scientists and other workers in the agriculture sector." Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has also expressed happiness over the conferment of FAO's honor to Prime Minister Modi. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today announced immediate initiation of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under the Citizenship Amendment Act or CAA. The Chief Minister made the announcement at State Secretariat Nabanna during a handover ceremony to the Border Security Force for border fencing. He said infiltrators identified in the state would now be directly handed over to the BSF for further action and coordination with the Border Guards Bangladesh. Mr. Adhikari clarified that no action would be taken against members of the seven communities protected under the CAA, provided they had entered India before 31st of December 2024. India is said to remain the world's fastest growing major economy as the United Nations in its report projected a growth rate of 6.4% this year for the country despite global uncertainty caused by the West Asia conflict. UN senior economist Ingo Pitelli, briefing reporters on the mid-year update to the World Economic Situation and Prospects report yesterday, said India's strong consumer demand, public investment and growth in services exports